सुप्रभात, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम एफ के 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की पहली तिथि, तदनुसार 22 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 होने वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने SIT को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। खेती किसानी कार्यक्रम में सुनिए किसान कॉल सेंटर।
3: सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर कृषि संबंधी सूचना टेलीफोन और मोबाइल के माध्यम से पहुंचाने का केंद्र है। इसे कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। झारखंड राज्य में भी यह सुविधा है। यह सुविधा देश के अन्य राज्यों के किसानों के साथ साथ झारखंड के किसानों के लिए भी है। किसान कॉल सेंटर त्रिस्तरीय संरचना के आधार पर कार्य करता है। प्रथम स्तर पर कृषि स्नातक हैं, इन्हें टेलीफोन, कंप्यूटर तथा कॉल कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्राप्त रहती है। जब कोई किसान प्रश्न पूछते हैं तो ये व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर कंप्यूटर में खोजते हैं और जो भी संग्रहित उत्तर और अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर किसानों के प्रश्न का जवाब देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्तर एक के व्यक्ति किसानों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, तब यह प्रश्न कॉल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के पास भेज दिया जाता है, जो किसानों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यह स्तर दो की संरचना है। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो प्रबंधन और नीति से संबंधित होते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर स्तर तीन के पदाधिकारी देते हैं। नोडल केंद्र का यह दायित्व है कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर किसानों को 72 घंटे के अंदर मिल जाए। किसान कॉल सेंटर से किसान भाई लाभ उठा सकते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए टेलीफोन संख्या 1551 डायल करना होगा। किसान भाई, यदि आप किसान कॉल सेंटर का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए टेलीफोन संख्या 1551 डायल करना होगा। उसके बाद मन में जो भी प्रश्न है वे इस प्रश्न को रिसीवर उठाने वाले व्यक्ति से पूछे। वह व्यक्ति आपके इन प्रश्नों का जवाब देगा, उत्तर देगा। 1551 पर मोबाइल से भी प्रश्न किया जा सकता है। 1551 पर किसान भाई सिर्फ अपने लैंडलाइन फोन से ही बात कर सकते हैं। मोबाइल से उन्हें बात करने के लिए 1800-180-1551 पर डायल करना होगा। एक बार फिर से ध्यान से सुन ले किसान भाइयों, अगर आप 1551 पर फोन करते हैं तो सिर्फ इस पर लैंडलाइन से ही बात होगी, और यदि आप मोबाइल से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मोबाइल से प्रश्न पूछने के लिए आपको 1800-180-1551 पर डायल करना होगा। झारखंड राज्य के लिए किसान कॉल सेंटर वर्तमान में पटना से कार्य कर रहा है। जब कोई किसान इस पर कॉल करते हैं तो उन्हें कंप्यूटर जनरेटेड आवाज के लिए निर्देशानुसार 2 दबाना होगा, तब उनका कॉल झारखंड राज्य को सेवा देने वाले व्यक्ति उठाएंगे। संबंधित किसान भाई बहनों को यदि और भी कोई जानकारी चाहिए तो वो भी निश्चित रूप से मिल जाएगा। किसान कॉल सेंटर के व्यक्ति जब फोन उठाते हैं तो किसान भाई बहनों से उन्हें कुछ आवश्यक जानकारी मांगते हैं। किसान भाई बहनों को यह जानकारी अवश्य देनी चाहिए क्योंकि इसका डाटाबेस बनता है और इस बात का भी आंकड़ा रखता है कि किसानों को प्रश्नों की क्या जानकारी मिली। किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कार्य करता है। इस अवधि के बाद भी यदि किसान कोई प्रश्न पूछना चाहे तो वे अपना प्रश्न रिकॉर्ड करा सकते हैं, जिनका जवाब उन्हें बाद में मिल जाता है।
2: किसान कॉल सेंटर, आप सुन रहे थे खेती किसानी कार्यक्रम में। अब आप सुनिए आज का चिंतन।

0: मैत्री संबंध से संपूर्ण प्रकृति बंधी है। वृक्ष, नदी, थलचर, जलचर, नभचर और सभी जीव जंतु साहचर्य से जुड़े हैं। पृथ्वी पर मैत्री भाव से ही सभ्यता का विकास हुआ। ये मैत्री भाव ही प्रेम और स्नेह का चुंबक बनता है। वैसे तो मानव जन्म से ही मैत्री व्यवहार एवं व्यवस्था से परिचित हो जाता है, क्योंकि उसके समीप जो भी आता है वो वात्सल्य रस की धारा में अवश्य तैरता उतरता है। कोई कोई तो इसमें डूब ही जाता है। सो मैत्री भाव की उत्पत्ति शैशव काल से ही हो जाती है। दोस्ती नहीं, युग युग में आदर्शों की पताकाएं फहराई हैं। सच्ची दोस्ती का चरित्र पावन होता है। पशु पक्षी पेड़ पौधे भी मित्र तत्व के पोषक माने गए हैं। अनेक विज्ञानी इस तथ्य को सिद्ध कर चुके हैं कि जीव मात्र ही नहीं, निर्जीव निघंटु भी मैत्री प्रभाव से संलिप्त हैं। इसलिए मित्रता को नैसर्गिक संबंध स्वीकार किया जाता रहा है। समस्त संबंध ऊंचे ऊंचे तो हो सकते हैं, लेकिन वे मित्रता जैसे गहरे नहीं हो सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मित्रता को जीवन का सूत्र बनाया। श्री कृष्ण ने मित्रता को जीवन का मंत्र बनाया। मित्रता का तंत्र जो भक्ति रूप में विद्यमान है वो अवतारों की पृष्ठभूमि है। चाहे कोई व्यक्ति हो या समाज हो अथवा देश हो, मित्र भाव सभी में निर्माण एवं विकास की शक्ति को स्थापित करता है। पिता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी तथा अन्य सभी संबंधों का धागा केवल मैत्री तत्व में पिरोया गया होता है। जहां मैत्री का आधार नहीं, वहां कोई संबंध सरस एवं सरल नहीं हो सकता। जब मनुष्य पर विपत्ति आती है तब एक सच्चा मित्र ही मदद करता है। कहते हैं सच्चा प्रेम दुर्लभ है, लेकिन सच्ची मित्रता उससे भी दुर्लभ। संसार भर को ज्ञात है कि मित्र भाव ने भारत को शांति प्रिय देश बनाया है। असंभव को संभव बनाने वाली दोस्ती सदा अमर रहती है।
1: आप सुन रहे थे आज का चिंतन, संकलन और वाचन दिनेश कुमार लाल का था। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम है आराधना, और आरंभ में सुनिए देशभक्ति गीत।

श्रीराम की बारात के स्वागत में तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन पांच वाद्य यंत्रों से वेद ध्वनि, वंद्य ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि तथा हुल ध्वनि, ये पंच ध्वनि हो रही है और उसके साथ गूंज रहा है मंगल गान। ब्रह्मा समेत श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणों का वेश धारण कर ये समारोह निहार रहे हैं। समारोह की सुंदरता तथा गरिमा की उपमा के अभाव में कवि इतना ही कह पाते हैं कि इनके समान यही हैं। समाधियों के मिलन को देखकर ब्रह्मा का कहना है कि जब से उन्होंने जगत की रचना की, बहुत विवाह देखे और सुने, किंतु सभी प्रकार से समान, साज समाज और समता वाले समधि आज ही देखने को मिले।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। और साथियों, अब हम आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद हम आप सभी को कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत समाचार और 7 बजे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

हम भूलने क्यों लग गए, इसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। बताएंगे डॉक्टर सुरजीत प्रसाद और इनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल। ये कार्यक्रम होगा स्वास्थ्य चर्चा और समय होगा 7:05 पर अपने केंद्र रांची से। सुबह सुरीली ये प्रोग्राम होगा 7:15 पर, जिसमें आप सुनेंगे फिल्मी गाने। गांधी कथा आप सुनेंगे 7:45 पर और 8 बजे से आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण।

हम अपने केंद्र रांची से आप सभी को सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचार 8:30 पर। 8:45 पर आप सुनेंगे लोकरंग कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में आज हम आप सभी को सुनवाएंगे संथाली लोकगीत। रसरंजन कार्यक्रम होगा 9 बजे से, जिसमें आप सुनेंगे फिल्मी गाने।

उर्दू प्रोग्राम आप सुनेंगे 10 बजे से। 10:30 पर आप सुनेंगे सीमा सुरक्षा बल और इनकी कार्य प्रणाली पर कुछ बातें। समय होगा 10:30 और 12 बजे हमारी श्रोता बहनें अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनती हैं गृहलक्ष्मी। समय होगा 12 बजे से 12:23 पर प्रायोजित कार्यक्रम उमंग हम आप सभी को सुनवाएंगे और 1 बजे से आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण।

साथियों, हमारे आगे के जो भी कार्यक्रम होंगे हम समय समय पर आप सभी को बताते रहेंगे। फिलहाल आप इस वाद्य वादन का आनंद लीजिए और इसके बाद आप सुनेंगे समाचार बस थोड़ी ही देर में।

0: प्रायः मध्यचतुर्दशकन्दुक क्षेपणचक्रेषु चत्वारिंशदधिकैकशतं धावनाङ्कान्येव विरचयत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि पांच देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं के प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीगंज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों में संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी, इसलिए मैंने शपथ ली, लॉबी में औपचारिकताएं पूरी की और फिर मैं सीधा ऊपर चला गया और वह मेरी पहली बैठक थी। और मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: श्री रूबियो 23-26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतोगी तुशिमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। गुजरात टाइटन्स के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का

0: रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा इस कार्यक्रम में सुनिए, हम भूलने क्यों लग गए। बता रहे हैं डॉक्टर सुरजीत प्रसाद और इनसे बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
2: मित्रों, जब उम्र बढ़ती है तो याद रखने की क्षमता पर असर होने लगता है। बढ़ती उम्र में तन और मन दोनों स्तर पर बदलाव शुरू हो जाता है। कुछ नया करने या सीखने या याद रखने में अधिक समय हमें लग जाता है, या हम याद नहीं कर पाते हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी जरूरतों को भूलने लग जाते हैं, जैसे हमने अपना चश्मा कहाँ रख दिया, चाबी कहीं और रख दिया, कागजात कहीं रखकर हम भूल गए और फिर उसे खोजने लग जाते हैं। यानी चीजें रखकर भूल जाने या उन्हें खो देने की घटनाएं अक्सर बढ़ने लग जाती है। देखा जाए तो ये लक्षण उम्र बढ़ने पर बुजुर्गों में ज्यादा होती थी, परंतु अब कम उम्र के युवा में भी भूलने के लक्षण तेजी से दिखलाई पड़ने लगे हैं। जब याददाश्त कमजोर होने लगती है तो रोजमर्रा की जिंदगी काफी मुश्किल भरी हो जाती है। तो हम भूलने क्यों लग जा रहे हैं, क्या कारण है? एक समय था कि हमारे बुजुर्ग साथी भूलने लग जा रहे थे, आजकल कम उम्र के हमारे साथी भी भूलने के शिकार हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो जा रहा है? हमारी जीवन शैली कितनी हद तक जिम्मेदार है? हमारा रहन सहन और हमारा खान पान और हमारी लाइफ स्टाइल इसको किस प्रकार प्रभावित कर रहा है? इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान के सब प्राध्यापक डॉक्टर सुरजीत प्रसाद। डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, आजकल भूलने की प्रवृत्ति लोगों में क्यों बढ़ते जा रही है?
3: आजकल भूलने की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ती जा रही है, इसका मुख्य कारण अगर हम कहें तो हमारी जीवन शैली ही कहेंगे हम। ओल्ड एज में पहले भी लोगों में ये भूलने की प्रवृत्ति होती थी, जिसे हम लोग डिमेंशिया कहते हैं। उसमें भूलने के साथ साथ उनके अदर फंक्शन जो है, जैसे स्पीच में प्रॉब्लम होगा या एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो दिनचर्या के कार्य है उसमें प्रॉब्लम आने लगता है, किसी कार्य को करने में उनको कठिनाई होने लगती है, तो इसको हम लोग डिमेंशिया कहते हैं। ये कॉमन है, 60 साल की उम्र के ऊपर के लोगों में बहुत कॉमन होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे एजिंग होती है वैसे वैसे हमारे ब्रेन सेल्स के लॉस होने लगते हैं, और एक बार जो ब्रेन के सेल्स डेड हो जाते हैं वो वापस रीजनरेट नहीं कर पाते पूरी तरह, क्योंकि सेल्स कम होते जाते हैं। तो सेल्स कम है इसलिए हमें समझने के लिए कि भूलने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। भूलने की शिकायत यंग एज में जो भूलने की शिकायत है उसका मुख्य कारण एक तो भागदौड़ की जिंदगी हो गई है, और कहीं ना कहीं वो साथ उनको बहुत सारे कार्य उन्हें करना रहता है, तो उनमें बहुत सारे दिमाग में बातें चलती रहती हैं और उसी दौरान वो कार्य भी करते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो कार्य वो कर रहे हैं उसे एकाग्रता से नहीं कर पाते हैं। एकाग्रता की कमी के कारण वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन में रजिस्टर नहीं हो पाता है, प्रोसेस नहीं हो पाता है, जिसके कारण कि वो फिट हो सके, हमारे ब्रेन में किसी कोने में याद के रूप में वो संग्रहित हो सके। तो बाद में जब हम लोग रिकॉल करते कि अरे ये काम तो मैंने किया था लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो मुख्य कारण वही है कि वो एकाग्रता से उन्होंने नहीं किया था, उनके दिमाग में उस तरह तरह तरह की बातें चल रही थी और काम कुछ और कर रहे थे, तो वो बाद में उन्हें लगता है कि अरे मैं तो ये भूल जा रहा हूं, मुझे भूलने की शिकायत हो रही है। लेकिन यंग एज में जनरली जो डिमेंशिया जो कहते हैं वो बहुत ही अनकॉमन है, यूजुअली ये 60 के ऊपर होते हैं। कुछ कुछ कंडीशंस हैं जिसमें 40-45 साल में भी वो हो सकते हैं, जैसे फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया एक प्रकार का डिमेंशिया है, उसमें ये चीजें पाई जा सकती है। उसके साथ साथ कुछ कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर उनको हो रहे हैं तो उसके साथ ये चीजें होती है, लेकिन अगर उन्हें इस तरह की कोई बीमारी नहीं है और सिर्फ भूलने की शिकायत हो रही है यंग एज में, तो मेनली उसमें एकाग्रता की कमी वो एक मुख्य कारण हो सकता है, और साथ ही साथ अवसाद या डिप्रेशन या एंग्जायटी भी आप कह सकते हैं। उस कंडीशन में भी हम जो कार्य करते हैं उसे याद नहीं रख पाते, हमारा ब्रेन उसको रजिस्टर्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि ब्रेन में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं जिसके कारण उन्हें लगता है कि वो भूल गए हैं। इसे हम लोग मेडिकल टर्म में स्यूडो डिमेंशिया कहते हैं कि फॉल्स डिमेंशिया, ये डिमेंशिया है नहीं एक्चुअली, ये फॉल्स है। तो ये एक कारण अभी जो है वो हो सकता है।
2: कभी कभी हमारे बुजुर्ग साथियों में ये होता है कि वो पुरानी चीजें तो याद रखते हैं लेकिन वर्तमान की चीजें, कोई उनसे मिल कर गया, उन्होंने क्या खाना खाया, वो भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है?
3: यस सर, ये बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। इसे ही ये डिमेंशिया का प्राइमरी लक्षण है, जो रीसेंट इवेंट्स हैं उन्हें उसी में उनकी याददाश्त की कमी रहती है। क्योंकि सेल्स जो हैं, जैसे हमें, हम कोई बात कैसे याद रखते हैं, हमें वो बात हमने सुनी, उसे ब्रेन में प्रोसेस किया और ब्रेन में कुछ कुछ वायरिंग, सिनेप्स हम लोग बोलते हैं, वो बन जाते हैं जिसके कारण वो स्टोर रहता है माइंड में। अब चूंकि ओल्ड एज हो जाते हैं, ब्रेन सेल्स कम गए हैं, तो ये फंक्शन तो अब कम जाएगा, तो उसमें क्या होता है कि वो जब वो रिसेंट जो काम कर रहे हैं एकाग्रता से भी अगर कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ब्रेन सेल्स कम हैं इसलिए वो सिनेप्स नहीं बन पा रहे हैं, सिनेप्स नहीं बन रहे हैं, वो स्टोर नहीं हो पा रहा है ब्रेन में, तो अगली बार जब वो करते हैं तो उन्हें वो याद नहीं रहता, क्योंकि ब्रेन में वो स्टोर है ही नहीं इन्फॉर्मेशन। क्यों नहीं स्टोर है? ड्यू टू लेस नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स जो ब्रेन में है वो कम हो गए हैं इसके कारण से, तो इसलिए वो भूल जाते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है डिमेंशिया का, कि अगर कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से अधिक है और उन्हें रीसेंट चीजें याद नहीं रहती है, तो उन्हें तुरंत किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मिलना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, इसका इलाज किस प्रकार किया जाता है? यदि किसी को भूलने की आदत हो गई, वो भूल जा रहे हैं, तो दिन प्रतिदिन उनकी याददाश्त कमती जाएगी, या उसको रोका जा सकता है, टाला जा सकता है, या इसका पूर्ण रूप से इलाज संभव है?
3: जनरली अभी तक जो कॉमन डिमेंशिया जो पाए जाते हैं उनका उपचार, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि उसे रिवर्स बैक तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइमरी डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट इलाज से, जैसे दवाओं के इलाज से और काउंसलिंग से, उसकी जो गति है उसको हम लोग धीमा कर सकते हैं। जो अगर बिना इलाज से वो 2 साल 3 साल में जितना ज्यादा खराब होंगे, अगर हमने सही समय पे इलाज शुरू कर दिया तो उसे हम लोग 10 साल 12 साल तक 15 साल तक खींच सकते हैं। तो जो गति है प्रोग्रेशन की उसको हम लोग धीमा कर सकते हैं दवाओं के द्वारा, काउंसलिंग सर्विसेज है, थेरेपी कहते हैं उसके द्वारा, ये चीजें हम लोग कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल के द्वारा ये चीजें हम लोग कर सकते हैं।
2: कितना जिम्मेदार है डॉक्टर साहब हमारी जीवन शैली आज की? खान पान हमने अपने आप को बिगाड़ लिया है, हमारे रहने खाने पीने का समय निर्धारित नहीं है जी। तो कैसे हम अपने आप को व्यवस्थित करें ताकि हमारी याददाश्त बहुत मजबूत रहे?
3: याददाश्त के लिए हमारी जीवन शैली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं ये जो बीमारी है, पहले इस उम्र 60 की उम्र में बहुत ज्यादा कॉमन नहीं थी, लेकिन आजकल ये बहुत ही कॉमन होती जा रही है, बहुत ज्यादा मरीज इस उम्र के हमें मिल रहे हैं। इसका एक कहीं ना कहीं प्रमुख कारण हमारी जीवन शैली है। जीवन शैली में हम लोगों ने एक जंक फूड का एक बहुत ही प्रचलन है तो उसको अपना लिया है, पौष्टिक आहार से हम लोग दूर जा रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी नींद, और बहुत बार लोगों में पाया गया है कि वो नशे का सेवन करने लगते हैं, अगर कुछ समस्या होती है, कुछ टेंशन होती है तो नशे का सेवन, स्मोकिंग जो कॉमन है आजकल, स्मोकिंग, वो सब अगर करेंगे तो आप में जो इस तरह की डिमेंशिया के लक्षण है वो अर्ली आ सकते हैं। साथ साथ हमें 40-45 के ऊपर फिर कुछ कुछ बीमारियां बहुत कॉमन हो गई आजकल, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अगर उसका हम लोग सही समय पर सही इलाज स्टार्ट कर दें तो भी ये चीजें हमें डिमेंशिया को कम करने में या उसे प्रोग्रेशन को धीमे करने में बहुत मदद करती है। तो जीवन शैली के साथ साथ नशे का सेवन ना करें, और अगर कुछ बीमारी है, शारीरिक बीमारी आपको हो रही है तो उसका उचित और संपूर्ण इलाज कराएं, तो हम लोग इस डिमेंशिया का जो प्रोसेस है इसको हम लोग डिले कर सकते हैं, और कुछ कुछ केसेस में इसे बहुत डिले भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं।
2: डिमेंशिया और टेंशन, टेंशन ज्यादा है तो डिमेंशिया का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा?
3: एक्चुअली थोड़ा सा ये है कि टेंशन, अगर यंग एज से ही बहुत अगर स्ट्रेस है, टेंशन है, तो कहीं ना कहीं टेंशन हमारे ब्रेन सेल्स को तो हैम्पर करेगा ही, उसे डैमेज करेगा ही, तो रिस्क तो बढ़ जाता है। अगर जो अवसाद से लगातार ग्रसित है तो उनमें आगे के एज में, मतलब पोस्ट 60, डिमेंशिया होने के चांसेस तो बढ़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अवसाद है, डिप्रेशन है, ये हमारे सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स जो ब्रेन में है उसको कम करता ही है। तो एक तो वो है, और दूसरा जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन या टेंशन में लोग क्योंकि एकाग्र नहीं हो पाते इसलिए वो चीजें भूल जाते हैं, जिसे मैंने टर्म बताया कि सुडो डिमेंशिया कहते हैं, तो वो एक चीज तो होती है
2: जी। तो एकाग्र मन से यदि हम काम करते हैं और एक साथ बहुत चीजें हम करने लग जाते हैं, जिसे हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, और फिर चीजों को हम भूल जा रहे हैं, तो एक समय में एक कार्य किया जाए,
3: कुछ लोगों में होती है ये प्रतिभा कि वो मल्टीटास्किंग कर पाते हैं, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मल्टीटास्किंग नहीं अगर कर पाते हैं तो उन्हें एकाग्रता से ही काम करना चाहिए ताकि उनको चीजें याद रहेगी, ये चीजें उनको मतलब अगर बाद में रिकॉल करना है तो याद रह सकती है। मल्टीटास्किंग कुछ लोग कर पाते हैं, ये उनकी एबिलिटी होती है, लेकिन सारे लोगों में ये एबिलिटी नहीं होती है। और मन को कहीं ना कहीं चित्त को प्रसन्न रखना होगा, शांत रखना होगा, जिससे ये चीजें हम लोग डिले कर सकते हैं, रोक सकते हैं।
2: तो मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, और यदि इस तरह के लक्षण आपको दिखते हैं तो तुरंत आप इसका इलाज शुरू कीजिए। और कोई भी चीज, छोटी छोटी चीजें घर में आप रखते हैं तो एकाग्र मन से उस चीजें को रखिए। अपनी चश्मा और कागजात कहीं और रख दिया, छोटी छोटी चीजें को आप भूल जाते हैं, चाबी कहीं और रख दिया और आप फिर परेशान होने लग जाते हैं। एकाग्र मन से रखेंगे, चित मन से रखेंगे तो चीज आपको सही जगह मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात आज के लिए है कि आप अपने जीवन शैली को सुधारिए, यदि बुरी आदतें हैं आपके साथ उसको आप दूर कीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरजीत प्रसाद, सह प्राध्यापक केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान रांची, जब इस कार्यक्रम में आए। और मित्रों हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा और अपने इष्ट मित्रों का भी ख्याल रखिएगा। नमस्कार।
3: थैंक यू सर।
1: हम भूलने क्यों लग गए, बता रहे थे डॉक्टर सुरजीत प्रसाद और इनसे बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल। साथियों अब हमारा कार्यक्रम है सुबह सुरीली, आप सुनेंगे कुछ पुराने फिल्मों के गाने।

मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो मैं 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: साथियों, अभी आप सुबह सुरीली प्रोग्राम में फिल्मी गाने सुन रहे थे। ये आकाशवाणी रांची है और अब सुनिए कार्यक्रम गांधी कथा।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी कथा। संकलन और प्रस्तुति है गौरव शिखर राय की, वह वाचन स्वर है अवनीश कुमार सिन्हा का।

9 जनवरी 1915 को जब अरबिया जहाज ने बंबई के अपोलो बंदरगाह को छुआ तब गांधी जी की उम्र थी 45 साल। बीमार होते हुए भी उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले पूना से मुंबई आकर मिले। गोखले की सलाह का पालन करते हुए गांधी जी ने भारत के लोगों को जानने की कोशिश शुरू की। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण तीसरे दर्जे के रेल डिब्बे से करना शुरू किया।

प्रस्तुत है दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर जनजीवन में प्रवेश करने पर गांधी जी के अनुभव उनके ही शब्दों में उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग से। मेरे स्वदेश आने के पहले जो लोग फिनिक्स से वापस लौटने वाले थे वे यहां आ पहुंचे थे। अनुमान यह था कि मैं उनसे पहले पहुंचूंगा, लेकिन लड़ाई के कारण मुझे लंदन में रुकना पड़ा। अतएव मेरे सामने यह प्रश्न यह था कि फिनिक्स वासियों को कहां रखा जाए। मेरी अभिलाषा यह थी कि सब एक साथ ही रह सकें और आश्रम का जीवन बिता सकें तो अच्छा हो। मैं किसी आश्रम संचालक से परिचित नहीं था जिससे साथियों को उनके यहां जाने से लिख सकूं। अतः मैंने उन्हें लिखा कि वे एंड्रयू से मिलें और वे जैसी सलाह दें वैसा करें। पहले उन्हें कांकड़ी गुरुकुल में रखा गया, जहां स्वामी श्रद्धानंद जी ने उनको अपने बच्चों की तरह रखा। इसके बाद उन्हें शांति निकेतन में रखा गया। वहां कविवर ने और उनके समाज ने उन्हें वैसे ही प्रेम से नहलाया। इन दो स्थानों में उन्हें जो अनुभव प्राप्त हुआ वह उनके लिए और मेरे लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। कविवर श्रद्धानंद जी और श्री सुशील श्रुद्र को मैं एंड्रयूज की श्रीमूर्ति मानता था। दक्षिण अफ्रीका में वे इन तीनों की प्रशंसा करते कभी थकते भी न थे। दक्षिण अफ्रीका के हमारे स्नेह सम्मेलन के अनेकानेक स्मरणों में यह तो मेरी आंखों के सामने तैरा ही करते हैं कि इन तीन महापुरुषों के मान उनके हृदय में और होठों पर सदा बने ही रहते थे। एंड्रयूज ने मेरी फिनिक्स कुटुंब को सुशील रुद्र के पास ही रख दिया था। रुद्र का अपना कोई आश्रम न था, केवल घर ही था, पर उस घर का कब्जा उन्होंने मेरे कुटुंब को सौंप दिया था। उनके लड़के लड़की एक ही दिन में इनके साथ ऐसे घुल मिल गए थे कि ये लोग फिनिक्स की याद बिल्कुल भूल गए। मैं बंबई के बंदरगाह पर उतरा तभी मुझे पता चला कि उस समय यह परिवार शांति निकेतन में था, इसलिए गोखले से मिलने के बाद मैं वहां जाने को अधीर हो गया। बंबई में सम्मान स्वीकार करते समय ही मुझे एक छोटा सा सत्याग्रह करना पड़ा था। मेरे सम्मान में मिस्टर पिटिट के यहाँ एक सभा रखी गई थी। उसमें तो मैं गुजराती में जवाब देने की हिम्मत ना कर सका। महल में और आंखों को चौंधिया देने वाले ठाठवाट के बीच गिरमिटिया की सोहबात में रहा हुआ मैं अपने को देहाती जैसा लगा। आज की मेरी पोशाक की तुलना में उस समय पहना हुआ अंगरखा साफा आदि अपेक्षाकृत सभ्य पोशाक कही जा सकती है। फिर भी मैं उस अलंकृत समाज में अलग ही छिटका पड़ता था, लेकिन वहां तो जैसे तैसे मैंने अपना काम निभाया और सर फिरोज शाह मेहता की गोद में आसरा लिया। गुजरातियों की सभा तो थी ही। स्वर्गीय उत्तमलाल द्विवेदी ने इस सभा का आयोजन किया था। मैंने इस सभा के बारे में पहले से ही कुछ बातें जान ली थी। मिस्टर जिन्ना वे गुजराती होने के नाते सभा में हाजिर थे। वे सभापति थे या मुख्य वक्ता यह मैं भूल गया हूं, पर उन्होंने अपना छोटा सा मीठा भाषण अंग्रेजी में किया। मुझे धुंधला सा स्मरण है कि दूसरे भाषण भी अधिकतर अंग्रेजी में ही हुए। जब मेरे बोलने का समय आया तो मैंने उत्तर गुजराती में दिया और गुजराती तथा हिंदुस्तानी के प्रति अपना पक्षपात कुछ ही शब्दों में व्यक्त करके मैंने गुजरातियों की सभा में अंग्रेजी के उपयोग के विरुद्ध अपना नम्र विरोध प्रदर्शित किया। मेरे मन में अपने इस कार्य के लिए संकोच तो था। मेरे मन में शंका बनी रही कि लंबी अवधि की अनुपस्थिति के बाद विदेश से वापस आया हुआ अनुभवहीन मनुष्य प्रचलित प्रवाह के विरुद्ध चले, इसमें अविवेक तो नहीं माना जाएगा। पर मैंने गुजराती में उत्तर देने की जो हिम्मत की उसका किसी ने उल्टा अर्थ नहीं लगाया और सबने मेरा विरोध सहन कर लिया। यह देखकर मुझे खुशी हुई और यह सभा में के अनुभव से मैंने इस परिणाम पर पहुंचा कि अपने नए जान पड़ने वाले दूसरे विचारों को जनता के सम्मुख रखने में
मुझे कठिनाई नहीं पड़ेगी। यूं बंबई में दो एक दिन रहकर और आरंभिक अनुभव लेकर मैं गोखले की आज्ञा से पुणे गया। मेरे बंबई पहुंचते ही गोखले ने मुझे खबर दी थी, गवर्नर आपसे मिलना चाहते हैं, अतएव पुणे आने के पहले उनसे मिल आना उचित होगा, इसलिए मैं उनसे मिलने गया। साधारण बातचीत के बाद उन्होंने कहा, मैं आपसे एक वचन मांगता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार के बारे में आप कोई भी कदम उठाएं उसके पहले मुझसे मिलकर बात कर लिया करें। मैंने जवाब दिया, वचन देना मेरे लिए बहुत सरल है, क्योंकि सत्याग्रही के नाते मेरा नियम ही है कि किसी के विरुद्ध कोई कदम उठाना है तो पहले उसका दृष्टिकोण उसी से समझ लूं और जिस हद तक संभव हो उस हद तक अनुकूल हो जाऊं। दक्षिण अफ्रीका में मैंने सदा इस नियम का पालन किया है और यहां भी वैसा ही करने वाला हूं। लॉर्ड विलियमडन ने आभार माना और कहा, आप जब मिलना चाहेंगे मुझसे तुरंत मिल सकेंगे और आप देखेंगे कि सरकार जानबूझकर कोई बुरा काम नहीं करना चाहती। मैंने जवाब दिया, यह विश्वास ही तो मेरा सहारा है। मैं पुणे पहुंचा, वहां के सब संस्मरण देने में मैं असमर्थ हूं। गोखले ने और सोसाइटी के सदस्यों ने मुझे अपने प्रेम से नहला दिया। जहां तक मुझे याद है, उन्होंने सब सदस्यों को पुणे बुलाया था। सबके साथ कई विषयों पर मैंने दिल खोलकर बातचीत की। गोखले की तीव्र इच्छा थी कि मैं भी सोसाइटी में सम्मिलित हो जाऊं। मेरी इच्छा तो थी ही, किंतु सोसाइटी के सदस्यों को ऐसा लगा कि सोसाइटी के आदर्श और काम करने की रीति मुझसे भिन्न है, इसलिए मुझे सदस्य बनना चाहिए या नहीं, इस बारे में उनके मन में शंका थी। गोखले का विश्वास था कि मुझ में अपने आदर्शों को दृढ़ रखने का जितना आग्रह है, उतना ही दूसरों के आदर्शों को निभा लेने का और उनके साथ घुल मिल जाने का मेरा स्वभाव है। उन्होंने कहा, हमारे सदस्य अभी आपके इस निभा लेने वाले स्वभाव को पहचान नहीं पाए हैं। वे अपने आदर्शों पर दृढ़ रहने वाले स्वतंत्र और दृढ़ विचार के लोग हैं। मैं आशा तो करता हूं कि वे आपको स्वीकार कर लेंगे, पर स्वीकार न भी करें तो आप यह न समझना कि उन्हें आपके प्रति कम आदर या प्रेम। इस प्रेम को अखंडित रखने के लिए वे कोई जोखिम उठाते हुए डरते हैं, पर आप सोसाइटी के सदस्य बने या न बने, मैं तो आपको सदस्य ही मानूंगा। मैंने अपने विचार गोखले को बता दिए हैं। मैं सोसाइटी का सदस्य चाहे न बनूं तो भी मुझे एक आश्रम खोलकर उसमें फिनिक्स के साथियों को रखना और खुद वहां बैठ जाना है। इस विश्वास के कारण कि गुजराती होने से मेरे पास गुजरात की सेवा के जरिए देश की सेवा करने की पूंजी अधिक होनी चाहिए, मैं गुजरात में कहीं स्थिर होना चाहता हूं। गोखले को ये विचार पसंद पड़े थे, इसलिए उन्होंने कहा, आप ऐसा अवश्य करें। सदस्यों के साथ आपकी बातचीत का जो भी परिणाम आए, पर यह निश्चित है कि आपको

असम के लिए पैसा मुझे से लेना है। उसे मैं अपना ही आश्रम समझूंगा। मेरा हृदय फूल उठा। मैं सोचकर खुश हुआ कि मुझे पैसा उगाने के धंधे से मुक्ति मिल गई और यह कि अब मुझे अपनी जवाबदारी पर नहीं चलना पड़ेगा, बल्कि हर परेशानी के समय मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई होगा। इस विश्वास के कारण मुझे ऐसा लगा मानो मेरे सिर का बड़ा बोझ उतर गया हो। गोखले ने स्वर्गीय डॉक्टर देव को बुलाकर कह दिया, गांधी का खाता अपने यहां खोल लीजिए और इन्हें आश्रम के लिए तथा अपने सार्वजनिक कार्यों के लिए जितनी रकम की जरूरत हो आप देते रहिए।

आप सुन रहे थे गांधी कथा, संकलन गौरव शिखर राय का था, प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की। और साथियों, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण। कृपया इंतजार करिए।

0: जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें पीएम सूर्य घर .gov.in पर।
2: हर

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट लाइन शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।

0: द्वारा जनहित में जारी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
4: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
5: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में 1 से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नी यारासू और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लो ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।

0: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। IPL क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, UAE से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्य के शब्द हैं 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है POK में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर PM सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाए तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस निकोस क्रिस्टोडोलाइडस इन न्यू दिल्ली टुडे। फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन न्यू दिल्ली।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूरतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एसआईआर को लेकर आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। मतदाता सत्यापन का रोडमैप पर होगी चर्चा। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर। सभी एसपी को लंबित मामलों का 60 से 90 दिनों में निष्पादन करने के लिए दिए कड़े निर्देश। राज्य के 10 जिलों के 35 बालू घाटों को मिली पर्यावरण स्वीकृति। बालू की किल्लत होगी दूर, निर्माण कार्यों को मिलेगी गति। रांची में आज से राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स महाकुंभ। देश भर के 700 एथलीट लेंगे हिस्सा। कॉमनवेल्थ गेम के लिए होगा भारतीय टीम का चयन। और मौसम विभाग ने पलामू प्रमंडल समेत कई जिलों में भीषण लू की चेतावनी दी, जबकि रांची, धनबाद, बोकारो और संताल परगना में तेज आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर आज रांची में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची में सुधार और घर घर जाकर मतदाता सत्यापन प्रक्रिया के रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले कल रांची में विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण को लेकर निर्वाचन आयोग ने प्रेस वार्ता की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य के 5 डिवीजनल कमिश्नर मोर्चा संभालेंगे। चुनाव आयोग के अनुसार घर घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन और सूची में सुधार के लिए अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
1: एसआईआर का प्रक्रिया 20 जून से शुरू हो रही है। इसमें पब्लिक का बहुत महत्वपूर्ण दो डेट के बारे में बताएंगे। वो इनमेशन देने वाला समय है 30 जून से 29 जुलाई तक है। किसी पीरियड में किन किन वोटर का नाम अभी मतदाता सूची में है उनका इनमेशन फॉर्म दिया जाएगी। वो अपने सिग्नेचर करके वो प्रीवियस एसआईआर का डिटेल होगा, मतलब उसका साथ में करेंगे। उसके लिए बीएलओ आपका सहयोग करेंगे।
0: राज्य के पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी क्रियान्वयन और तकनीकी आधारित पुलिसिंग को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी जिलों के कप्तानों को नए आपराधिक कानूनों और तकनीक आधारित पुलिसिंग का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। डीजीपी ने सीसीटीएनएस प्रगति और ई साक्ष्य पोर्टल की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों को 60 से 90 दिनों में निपटाने पर दिया जोर। जेटेट परीक्षा में भोजपुरी, मगही और अंगिका शामिल करने के लिए बनी मंत्रियों की समिति की आज दूसरी बैठक हो सकती है। समिति सदस्य और मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि पहली बैठक में विभाग से कुछ जानकारियां मांगी गई थी। आज की बैठक में विभाग की रिपोर्ट पर चर्चा होगी और निर्णय लिए जाएंगे।
2: भोजपुरी, मगही, अंगिका को लेकर के बात, कुछ जिलों में कुड़माली को ऐड करने की बात हो रही है और हम लोगों के संज्ञान जो जनजातीय भाषा, चाहे वो बिरहोर, मालतो या फिर असुर भाषा को ड्रॉप किया गया, तो कमेटी इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की है।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर सीएम फेलोशिप योजना शुरू की गई है। इसके तहत राज्य के होनहार छात्रों को पीएचडी के लिए फेलोशिप और शोध कार्यों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही युवाओं को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 100% स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विधायक रागिनी सिंह और धनबाद के महापौर संजीव सिंह से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय में प्रस्तावित क्लस्टर सिस्टम से छात्रों को होने वाली दिक्कतों पर ज्ञापन सौंपा। साथ ही झरिया के राजा शिव प्रसाद कॉलेज की समस्या

0: समस्याओं के समाधान की मांग की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने होटवार जेल में महिला बंदी के साथ कथित शोषण मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोबारा पत्र लिखा। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मरांडी ने आरोप लगाया कि सत्ता के संरक्षण में जेल प्रशासन के अन्य अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति के बावजूद आपूर्ति पूरी तरह स्थिर है। उन्होंने सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: केंद्रीय टीम और गृह मंत्रालय के अपर महारजिस्ट्रार सुनील कुमार ने रांची में जनगणना 2027 के पहले चरण के कार्यों का निरीक्षण किया। टीम ने ओरमांझी, नामकुम और कांके के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर मकान सूचीकरण कार्य की सराहना की। उन्होंने यहां बेहतर समन्वय और प्रागणकों के प्रशिक्षण को आदर्श बताया। राज्य में बालू की किल्लत दूर करने के लिए 10 किलो के 35 बालू घाटों को पर्यावरण स्वीकृति मिली है। इससे निर्माण कार्य की गति मिलेगी और वैध आपूर्ति बढ़ने से राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। पूर्वी सिंहभूम को सबसे बड़ा खनन क्षेत्र मिला है, जबकि रांची और बोकारो सहित कई जिलों में लीज डीड साइन हो चुकी है। धनबाद रेल मंडल में चलाए गए मेगा टिकट चेकिंग अभियान के तहत बिना टिकट यात्रा कर रहे 1570 यात्रियों को पकड़ा गया है। इन यात्रियों से जुर्माने के रूप में 10,03,000 रूपये से अधिक की राशि वसूली गई। रेलवे ने यात्रियों से हमेशा उचित टिकट लेकर ही यात्रा करने की अपील की। झारखंड में उमस और लू से जनजीवन बेहाल, पलामू में पारा 45.2 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज पलामू प्रमंडल और हजारीबाग में गर्म हवा चलने की चेतावनी दी, जबकि रांची, धनबाद, बोकारो और संताल परगना में तेज आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आज से 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता शुरू हो रही है। 25 मई तक चलने वाले इस महाकुंभ में देश भर के 700 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसके प्रदर्शन के आधार पर कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन अंडर 23 के लिए भारतीय टीम का चयन होगा। साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर ललित भनोट ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि यह प्रतियोगिता कई मायनों में ऐतिहासिक होगी। देश में पहली बार इस टूर्नामेंट से वर्ल्ड एथलेटिक्स के दिशा निर्देशों के तहत जेंडर टेस्टिंग की नई व्यवस्था लागू की जा रही है।
2: 50 से ज्यादा ऐसे एथलीट हैं जो ओलंपिक में गए हैं या वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा काफी लोग हैं जो इंटरनेशनल एथलीट हैं और दूसरी जो इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं, एशियन चैंपियनशिप है, एसएएफ चैंपियनशिप है, उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
0: राज्य के पहलवान अमित कुमार वियतनाम में होने वाली अंडर 23 एशियन ग्रीको रोमन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह 82 किलोग्राम भार वर्ग में देश की चुनौती पेश करेंगे। खेल विभाग ने 23 से 31 मई तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के लिए अमित को पदक जीतने की शुभकामनाएं दी हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य में एक साथ 27 नक्सलियों के आत्मसमर्पण की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर लिखता है, सारंडा में लाल किला ढहा, 25 नक्सलियों सहित 27 का सरेंडर। हिंदुस्तान के शब्द हैं, परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना पर 4 अभ्यर्थी हिरासत में। प्रभात खबर ने राज्य के सीईओ के हवाले से लिखा है, कि एसआईआर में बिना सुनवाई नहीं

के 700 एथलीट लेंगे हिस्सा। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए होगी भारतीय टीम का चयन। और मौसम विभाग ने पलामू प्रमंडल समेत कई जिलों में भीषण लू की चेतावनी दी, जबकि रांची, धनबाद, बोकारो और संताल परगना में तेज आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

श्रोताओं हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय आप सुनेंगे संथाली लोकगीत। हमारा कार्यक्रम है लोकरंग।

0: श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

अभी आप संथाली लोकगीत सुन रहे थे और इसी के साथ लोकरंग कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब हमारा कार्यक्रम है रसरंजन और इस कार्यक्रम में हम आप सभी को सुनवाएंगे फिल्मी गाने।

0: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो ये फटा है।
2: सुन, फटे फटे है पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर

0: दादू कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

साथियों, इस समय आप फिल्मी गाना सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी रांची केंद्र का प्रसारण है और आपके साथ मैं हूँ राजेश। कार्यक्रम है रसरंजन।

साथियों, आप त्रिशूल फिल्म का ये गाना सुन रहे हैं और एक गाना हम और सुनवाएंगे इसी फिल्म का, लेकिन इसके पहले यह संदेश।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से

0: साथियों, इसी के साथ रसरंजन कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ और ये आकाशवाणी रांची केंद्र का प्रसारण है। अब हमारा कार्यक्रम है शास्त्रीय संगीत का और इस समय आप सुनेंगे राग अल्हैया बिलावल में ध्रुपद गायन। कलाकार हैं सुरेश प्रसाद गुप्ता। इनका साथ दिया है पखावज पर रामबचन पाठक और हारमोनियम पर गायत्री चक्रवर्ती ने।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल

हीरो हो रहे हैं। गांव गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: और कैसे हैं?
1: बखैर हूँ, और उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे।
0: बिल्कुल फाजिया, तो बगैर ताखीर किए हुए हम बात करेंगे कि आज किन किन मौजूआत के ऊपर हम अपने शामीन के सामने रूबरू हो रहे हैं।
1: हम हमेशा ही अपने प्रोग्राम में ऐसे उनवान पे बात करते हैं जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत खास होते हैं।
0: ये कहा जाए फौजिया की जनरल नॉलेज की भी बातें हो जाती हैं।
1: तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जो 22 मई को है।
0: जी, जिसे हम उर्दू में हयातियाती तनाओं के आलमी दिन कहते हैं, और इसी को फौजिया हम अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस भी कहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद 24 मई को है हमारा कॉमनवेल्थ डे, साझा कोशिशें साझा खुशहाली।
0: बिल्कुल, हम तमाम लोगों की कोशिशों की वजह से ही हम एक खूबसूरत फिजा की और माहौल की बुनियाद रख सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। फिर 25 मई को हम बनाते हैं इनकलाबी रहनुमा रास बिहारी बोस की जयंती, और 24 मई को पुण्यतिथि है हमारे तरक्की पसंद शायर जिनका नाम मजरूह सुल्तान पूरी। सामईन, आज हम 22 मई के हवाले से एक इंतहाई अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बैन अल-अक़वामी जीवियत का दिन। इस दिन का मकसद यह है कि हम अपने गर्दोपेश की हैरत अंगेज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अहमियत को समझें और इसके तहफ्फुज के लिए आवाज उठाएं।
0: फौजिया, हमारी जमीन पर लाखों पौधे, जानवर, कीड़े और माइक्रोब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये तमाम मिलकर एक मतवाजुन माहौल बनाते हैं। जब हम जंगल काटते हैं, नदियों को गंदा करते हैं या प्लास्टिक से माहौल को आलूद करते हैं, तो हम न सिर्फ चिड़ियों और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि अपने मुस्तकबिल को भी खतरे में डालते हैं।
1: बिल्कुल। और हिदायतुल्ला, पता है 2026 की थीम क्या है? एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, यानी मकामी सतह पर एक्शन, आलमी सतह पर असर है। इसका मतलब यह है कि हर एक घर, स्कूल, मोहल्ले और शहर में हम माहौल के तहफ्फुज़ के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सिर्फ साइंस का मौजू नहीं, ये हमारे जिंदगी का मौजू है। इसे बचाना, इसका एहतराम करना और इसके साथ हम आहंग रहना ही हमारी असल कामयाबी है। आज चलो हम ये अहद करें कि हम अपनी छोटी सी दुनिया में भी माहौल के तहफ्फुज को अव्वलीन तरजीह देंगे।
1: और सामीन, हम ये दुआ करते हैं कि हम अपनी हिकमत, शऊर और जिम्मेदारी अदा करें, हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी एक साफ, सब्ज और पुरसलामत दुनिया छोड़ सकें।
0: बिल्कुल, हयाती तनाओं के तहफ्फुज के लिए जंगलात की हिफाजत, आलूदगी में कमी, पानी और जमीन के वसाइल का जिम्मेदाराना इस्तेमाल, जंगली हयात के मस्कन बचाना और पायदार ज़राअत अपनाना जरूरी है। आम लोग भी दरख्त लगाकर, प्लास्टिक कम इस्तेमाल करके और मकामी माहौल की हिफाजत करके हिस्सा ले सके।
1: और हिदायतुल्ला, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है कॉमनवेल्थ, एक बैन अल-अक़वामी तंजीम है जिसमें साबिक बरतानवी सल्तनत के बहुत से ममालिक शामिल हैं। इसका मकसद रुकने ममालिक के दरमियान तआवुन, तरक्की, जमहूरियत और इंसानी हकूक को फरोग देना है। ये तंजीम आम तौर पर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कहलाती है, और इसके रुकन ममालिक की तादाद अमूमन 50 से ज्यादा होते हैं।
0: और सामईन, हम इसके मकासिद के बारे में आपको रूबरू कराएं। तंजीम का बुनियादी मकसद माशी तरक्की, जमहूरियत, तालीम, सेहत और माहौलियाती पायदारी में ताउन को बढ़ाना, शहरियत, हुकूक, बाज रुकन ममालिक में कॉमनवेल्थ शहरियों को मखसूस हुकूक या सहूलियात दी जाती हैं, मसलन कुछ जगहों पर वोट डालने या सरकारी ओहदों के लिए अहल समझा जाता है। कॉमनवेल्थ की बुनियाद बरतानवी सल्तनत के जवाल के बाद रखी गई ताकि साबिक नौ आबादियाती रियासतें बाहमी ताउन की बुनियाद पर रहें। इसका सदर आम तौर पर रुकन ममालिक में बाहमी इत्तेफाक से मुंतखब होता है और सेक्रेटरीट लंदन में वाक़े है।
1: और सामईन, कॉमनवेल्थ के हालिया इकदामात का मरकज अब तीन बड़ी तरजीहात पर है, जमहूरी इस्तेहकाम, मआशी तरक्की और माहौलियाती लचक। 2025 से 30 के स्ट्रेटेजिक प्लान में खास जोर लोगों में सरमायाकारी, खास तौर पर खवातीन और नौजवानों की महारतों और रोजगार के मौके पर दिया गया है। ताज़ा तरजीहात ये है कि कानून के वज़रा ने नादी डिक्लेरेशन के जरिए जमहूरियत, इंसानी हकूक और फैसला साजी में अवामी शमूलियत मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है।
0: और फौजिया, नौजवानों की क्यादत में मौसमियाती और समुद्री मंसूबे भी नुमाया हैं, जिनमें ओकेन यूथ वर्किंग ग्रुप और कॉमनवेल्थ यूथ क्लाइमेट नेट

0: वाबस्ता हो गए। कुंबे का माआशी बोझ उठाने के लिए उन्हें तरह तरह की मुलाजमत इख्तियार करनी पड़ी। उन्होंने गांव के मकतब से लेकर लोअर प्राइमरी का इम्तिहान पास किया था और वही मुदर्रिस भी रहे। इसके बाद वो बतदरीज देहाती लोक गीत पार्टी के लिए लिखते रहे। इसके बाद उन्होंने रेलवे में मुलाजमत इख्तियार कर ली। मुफलिसी की वजह से उनकी बाकायदा तालीम ना हो सकी, लेकिन खुददाद सलाहियत के मालिक थे। उनकी पहली नज्म अगस्त 1919 में छपी। मशरिक़ वुस्ता में पहली आलमी जंग के दौरान में बरतानवी अफवाज के लिए भी काम किया। शहर कलकत्ता में अखबार के लिए सहाफत का काम किया। बागी शायर, विद्रोही कवि कहलाए। विद्रोही कवि, भांगुरदान, धूमकेतु जैसे फ़न्नी तख्लीकात किए। तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया, जेल भी गए। काजी नजरुल इस्लाम एक बंगाली शायर, मुसन्निफ मौसिकी का और तहरीक पसंद थे। उन्हें बांग्लादेश का कौमी शायर करार दिया गया। नजरुल इस्लाम के नाम से शोहरत याफ्ता नजरुल इस्लाम हिंदुस्तानी इस्लामी नुश्ता शानिया के लिए अपनी तहरीक चलाई और फासिज्म के खिलाफ काम किया। समाजी मुसावात के लिए दम भरने वाले नजरुल इस्लाम को बागी शायर के खिताब अवाम से नवाजा गया। चूंकि नजरुल इस्लाम मौसिकी के भी दिलदादा थे, उन्होंने उस पर भी काम किया और शोहरत यहाँ तक हुई कि बांग्लादेश के हुकूमत ने उन्हें अपना कौमी शायर का ऐलान किया। काजी नजरुल इस्लाम बांग्लादेश के कौमी शायर हैं, उमूमन बागी और इनकलाबी शायर के तौर पर मशहूर हैं। उसके अलावा वो एक अजीम मौसीकार और फलसफी भी हैं। बांग्लादेश में उनकी वही हैसियत है जो हिंदुस्तान में महात्मा गांधी को हासिल है। काजी साहब अपने भूले हुए माजी को याद करते हुए ताबनाक मुस्तकबील को सोचते थे। आज़ादी की जिद्दोजहद, खुसूसन मुसलमानों की बेदारी के सिलसिले में नजरुल इस्लाम के नगमों ने जो काम किया वो यादगार है। इस लिहाज से वो इकबाल से बहुत करीब हैं और कौमी रहनुमाओं के सफ में नजर आते हैं। उनकी शोहरत का आगाज 1920 में उस वक्त हुआ जब अंग्रेजों के खिलाफ उनकी नज्म शाया हुई। वो बंगला के बागी शायर मशहूर हुए। उन्होंने एक तरफ जुल्मों वरनादवारी के खिलाफ आवाज उठाई तो दूसरी तरफ बंगला शायरी की रिवायती उसलूब से बगावत की, और दोनों हैसियतों से उनकी आवाज इनकलाब आफरी साबित हुई। उनके जोश हरीत में डूबे हुए आवाम के दिलों तक पहुंचने वाले नगमे मुल्क की एक कसीर आबादी के लिए सामान्य बेदारी बनी। नजरुल इस्लाम का मशगला ज्यादातर शायरी और मौसीकी रहा और यही उनका जरिया माश भी था। उन्होंने नज्म व नसर की 30 किताबें लिखीं, जिनमें 6 जब्त कर ली गईं। उनकी किताबों की फहरिश्त हस्ब ज़ेल है: अग्नि बीना, जलता हुआ सितार, दोलन चाया जर्द फूल, बशरबीनी जहरीली बांसुरी, भंगुर गुन तबाही का गीत, पुराने शिखा तबाही का शोला, चीना नात इंडियन नगमा, साम्याबादी मुसावात कहामी, फन्नी नाशा नागफनी, सात भाकी चांपा सात भाई, सानहा मजमुआ, शीस सौगात आखिरी पेशकश, पराया लांकर इनकलाब अजीम, तम नमस्कार वगैरह। इसके अलावा गीत, तराजुम, कहानी, नावल, ड्रामा, मजामिन और फिल्म स्क्रिप्ट पर मुश्तमिल कई किताबें शाया हुई। उनकी एक मशहूर नज्म कुछ इस तरह से है: ऐ सत्तार, ऐ गफ्फार, कर दे बेड़ा पार, दरिया पहाड़ जंगल, करते हैं रोज मंगल, जमी वो आसमां के जर्रे जर्रे का अकीदा है, तू है पालनहार, तू है खीवनहार, तू ही है करतार, ऐ सत्तार, रोजी देना काम है तेरा, सबसे आला नाम है तेरा, तू रहमान है, जिसान है, सुल्तान है, ऐ सत्तार, दर्दे दिल तेरे सिवा आह सुनाए किसको, मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा माबूद है तू, ऐ सत्तार, ऐ गफ्फार। काजी नजरुल इस्लाम को बंगाली अदब के अजीम शायरों में शुमार किया जाता है। उन्होंने शायरी मौसीकी पैगामात, नावल और कहानियां लिखीं, जिसमें मुसावात, इंसाफ, साम्राज्य मुखालिफ, इंसानियत, जुल्म के खिलाफ बगावत और मजहबी अकीदत का मजमा था। यही नहीं, उन्होंने कृष्ण पर कई तख्लीकी काम किया। कृष्ण पर काजी नजरुल इस्लाम की तसनीफ अगर तुम राधा होते श्याम, मेरी तरह बस आठों पहर तुम। रूठते श्याम का नाम भी इनकी मोहब्बत के साथ ताल्लुक का अक्कासी करती है। काजी नजरुल इस्लाम पहली हिंदुस्तानी शख्सियत थे जिन्हें किसी मुल्क ने अपने मुल्क ले जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। ये मुल्क बांग्लादेश था। बांग्लादेश के कयाम के एक साल बाद यानी 1972 में उस वक्त के वजीर आजम शेख मुजीबुर रहमान हिंदुस्तान आए। इस दौरान उन्होंने काजी नजरुल इस्लाम को बांग्लादेश ले जाने की ख्वाहिश जाहिर की और हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की दरख्वास्त कबूल कर ली। तब कहा गया कि बांग्लादेश नजरुल इस्लाम को उनकी सालगिरह मनाने के बाद वापस कलकत्ता भेज देगा और उनकी अगली सालगिरह हिंदुस्तान में मनाई जाएगी, लेकिन उन्होंने अपनी अगली सालगिरह हिंदुस्तान में नहीं मनाई और न ही वापस लौटे। तसनीफ़ो तालीफ के अलावा काजी नजरुल इस्लाम ने फौज में भी खिदमात अंजाम दी। उन्होंने 1917 में फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली, लेकिन 49वें बंगाल रेजिमेंट को 1920 में ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी छोड़ दी और कलकत्ता में सकूनत इख्तियार कर ली। उन्होंने अपना पहला नावल बंधन हरा यानी बंधन से आज़ादी 1920 में शाया किया। नजरुल इस्लाम को उस वक्त पहचान मिली जब उन्होंने 1922 में विद्रोही लिखी। विद्रोही के लिए उनकी बहुत तारीफ की गई। अलावा अजीम नजरुल इस्लाम इस्लामी अकीदती गीतों तक महदूद नहीं थे, उन्होंने हिंदू भक्ति गीत भी लिखे। उसमें आगमनी भजन, श्याम संगीत और कीर्तन शामिल हैं। नजरुल इस्लाम ने 500 से ज्यादा हिंदू भक्ति गीत लिखे। हालांकि श्याम संगीत लिखने पर मुसलमानों के एक हिस्से ने उन पर तनकीद की और उन्हें काफिर भी करार दिया गया। काजी नजरुल इस्लाम के एतराफ में कलकत्ता के रहने वाले उर्दू अदीब शब्बीर अहमद ने विद्रोही के नाम के उन्वान से 1600 सफहात पर मुश्तमिल एक नावल लिखा है। इसी तरह काजी नजरुल इस्लाम का इंतकाल 29 अगस्त 1976 को ढाका बांग्लादेश में हुआ।
1: उर्दू कार्यक्रम अभी हम सुन रहे थे कंपेयर थी फौजिया तजई और मोहम्मद हिदायतुल्ला, प्रस्तुति थी प्रशांत गौरव की। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में हम सुनेंगे सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2026 का सीधा प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।

ये जो मेल हमारे पास आया है वो लिखती हैं, होस्ट निधि वर्मा जी नमस्कार, हम भी आपके रेगुलर कनेक्ट हैं। ये लिखती हैं एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। ये संदेश आया है बोधराज खोरवाल का, जो लिखते हैं निधि वर्मा जी, अपनी बारी का इंतज़ार करते करते प्रोग्राम भी ख़त्म हो जाता है पर मैसेज शामिल नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, देखिए आपका मैसेज जो है अब शामिल हो गया है। ये लिखते हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। ये जो मेल आया है उन्होंने लिखा है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। ये लिखते हैं रविंद्र मोहनदास, किशनगंज बिहार से।

ये संदेश आया है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक का, कैथल हरियाणा से मधु नायक। ये जो हमें संदेश लिखा है राम शरण विश्वकर्मा जी ने, उनका उन्होंने लिखा है, आपकी पसंद आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी, सादर प्रणाम, नमस्कार। किसी भी सदाबहार गीत को शामिल करें। ग्राम ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा ने। जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप जी लिखते हैं कि मुकेश कश्यप, कोई भी गीत सुनवा दीजिए। सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, कागज शीमा, मानसी तनवी, लक्ष्य सोनी, मोहित ऋतिक, बलवीर सिंह, इन्होंने भी किसी भी गीत की फरमाइश की है।

ये जो संदेश आया है वो आया है हमारे पास बिहार स्टेट डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी का। इन्होंने लिखा है कि कोई भी गीत प्लीज़ हमें सुना दीजिएगा, और साथ में शामिल हैं सोनम वली और अजमा वली जालंधर से, अजय देव जाधव और संदीप जाधव का। और एक जो हमें मेल लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं रविंद्र सिंह छाबरा, जो लिख रहे हैं निधि वर्मा जी हमारी बारी कब आएगी, हमारा मेल शामिल कर लीजिए। तो देखिए आपका मेल भी शामिल हो गया है। ये लिखते हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंदरजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। ये जो हैं वो लिखते हैं कि आर कुमार ने ये हमें संदेश लिखा है, और इन्होंने लिखा है कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दीजिएगा। लिखते हैं वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा।

ये जो संदेश आया है ये आया है जसपुर उत्तराखंड से। ये लिखते हैं कि किसी भी गीत के साथ हमारे नामों को शामिल करें। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। ये लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम हर दिन 10 बजे अपना कार्यक्रम सुनने के लिए रेडियो को ऑन कर लेते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखा है जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई भारती देवी ने। ये लिखते हैं कि आप कोई भी गीत शामिल कर लीजिए हमारे नाम के साथ। लिखते हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेंद्र चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमांश। ये जो हमें फरमाइशी जो संदेश आया है ये लिखते हैं कि कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, हमारा मेल भी शामिल करें। तो जी आपका मेल भी शामिल हो गया। ये लिखते हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। ये जो संदेश आया है वो लिखा है रमेश चंद्र कामड़े ने, जो लिखते हैं कि मैडम जी हमारा मेल शामिल कर लीजिए, दे आपका मेल भी शामिल हो गया। ये लिखते हैं जवाहर नगर दुर्ग से RC कामड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कामड़े।

ये जो संदेश आया है वो लिखा है सिद्धार्थ गोंडाने जी ने। इन्होंने लिखा है, प्रसाद जी नमस्कार, हमें आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। ये लिखते हैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हिमानी सेडे जी, प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गोंडाने जी का। ये आया है भारत भूषण जी ने लिखा है, निधि वर्मा जी नमस्कार, वाइल्ड फीड बेंगलुरु से भरत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरुष ने। ये चरणदास जी का मैसेज आया है, ये लिखते हैं कि हमें आपका कार्यक्रम अच्छा लगता है। ये लिखते हैं विनोद शिल्पा ममता परिहार हरियाणा से।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और हम कोशिश करते हैं कि हमारे सभी श्रोताओं के मेल को हम शामिल कर सकें, लेकिन समय के अभाव के कारण हम मेल को शामिल नहीं कर सकते। तो अपने आपकी पसंद कार्यक्रम से अपनी होस्ट और दोस्त निधि वर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको नई दिल्ली के विज्ञान भवन लिए चलते हैं, जहां से आप सीमा सुरक्षा बल BSF के 23वें अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और DN ड्रयू। आइए विज्ञान भवन चलें।

0: नमस्कार।
1: आप सभी से अनुरोध है,
0: सीमा सुरक्षा बल गान की प्रस्तुति अभी आपने सुनी और विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डीएन ध्रुव के साथ आकाशवाणी की ओर से कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और माननीय मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपना स्थान ग्रहण कर चुके, उनको पुष्प भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार पुष्प भेंट कर रहे हैं श्री अमित शाह जी को।
2: Well, the program has begun with the arrival of the Home Minister Shri Amit Shah. They have all taken the seats on the dais. And now we have the welcome address by the DG of BSF, Shri Praveen Kumar. He walks to the podium to address the gathering.
0: आपको बताना चाहेंगे आज यहाँ सीमा सुरक्षा बल का 23वां अलंकरण समारोह एवं रुस्तम श्री

और फिलहाल आपको बता दें, सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम है और आज उन वीर सीमा प्रहरियों के शौर्य और बलिदान को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने पराक्रम से देश का गौरव विश्व पटल पर ऊंचा किया है। अनेक सीमा प्रहरियों ने वीरता के अमित कीर्तिमान स्थापित किए हैं और

0: The 23rd BSF Investiture Ceremony and the Rustamji Memorial Lecture is taking place today at the Vigyan Bhavan. And with the arrival of the Home Minister Shri Amit Shah, the program has just begun and he was presented with a bouquet. And right now the DG of the BSF, Shri Praveen Kumar, is at the dais addressing the gathering with a welcome address.
1: और संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं. उनका साहस, समर्पण और बलिदान हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है. हम आज अपने बल के संस्थापक श्री के एफ रुस्तम जी की गौरवशाली विरासत को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, जिनकी दूरदृष्टि और सफल नेतृत्व ने इस महान बल की मजबूत नींव रखी. पिछले 6 दशकों में सीमा सुरक्षा बल ने विश्व के श्रेष्ठतम सीमा सुरक्षा बलों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है. सीमा प्रबंधन, आतंकवादी रोधी अभियानों तथा आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में बीएसएफ ने अद्वितीय पेशेवर दक्षता का परिचय दिया है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारे जवानों ने वीरता एवं कर्तव्य निष्ठा की सर्वोच्च परंपराओं को कायम रखते हुए 2 वीर चक्र एवं अनेक वीरता पदक अर्जित किए हैं. हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं: सुदृढ़ एवं व्यापक सीमा प्रबंधन, आधुनिक तकनीक से सुसज्जित सुरक्षा व्यवस्था, परिचालन तत्परता और जवानों का कल्याण. गत वर्ष सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाओं पर अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की तथा माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. बल के तकनीकी आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है. अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों, ड्रोन एवं एंटी ड्रोन तकनीक, थर्मल इमेजर तथा एकीकृत कमांड सिस्टम जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं को भी प्रभावी रूप से अपनाया गया है. गत वर्ष बीएसएफ ने सीमा पार से भेजे गए 300 से अधिक ड्रोनों को निष्क्रिय कर मार गिराया है, जो उभरती सुरक्षा चुनौतियों के प्रति हमारी सतर्कता एवं सजगता का प्रमाण है. साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, आवास एवं कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जवानों और उनके परिवारों के जीवन स्तर एवं मनोबल को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है. सीमा सुरक्षा बल ने खेलों में के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. पिछले 1 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 8 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक तथा राष्ट्रीय खेलों में 149 पदक अर्जित किए हैं. यह अत्यंत गर्व का विषय है कि कल ही मात्र 24 घंटा पहले बीएसएफ की प्रथम सर्व महिला पर्वतारोहण टीम ने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट फतह कर विश्व की सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा एवं बीएसएफ का ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त किया है. साथ ही बीएसएफ की पुरुष पर्वतारोहण टीम माउंट लोत्से अभियान पर अग्रसर है, जो बल की अदम्य साहस एवं उत्कृष्टता की भावना को प्रतिबिंबित करता है. यह वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा सुरक्षा बल अपनी हीरक जयंती मना रहा है. सेवा, बलिदान और शौर्य के 60 गौरवशाली वर्ष. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों, मैराथनों एवं जनसंपर्क गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है. इसी क्रम में बीएसएफ ने कश्मीर, जम्मू, अमृतसर एवं देहरादून में सफल मैराथनों का आयोजन किया, जो जनता के साथ बल के गहरे जुड़ाव एवं राष्ट्र सेवा की भावना को दर्शाता है. महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत के लिए निर्धारित लक्ष्य को साकार करने हेतु बीएसएफ पूर्णतः प्रतिबद्ध है. हम माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को भी आश्वस्त करते हैं

0: कि सीमा की समस्त सीमा प्रहरी परिवार सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बनाने के लिए कर्तव्यबद्ध एवं समर्पित है। अंत में मैं एक बार पुनः माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का सीमा सुरक्षा बल को निरंतर सहयोग मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद।
1: महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी ने विधिवत स्वागत किया सभी अतिथिगणों का। और अब बीएसएफ डॉक्यूमेंट्री पर एक वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा।
2: सुरक्षा बल देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। यूं तो सीमा सुरक्षा बल की गौरवशाली यात्रा उत्कृष्ट सीमा प्रबंधन और अद्वितीय आंतरिक सुरक्षा क्षमता के साथ साथ आधुनिकतम तकनीकी दक्षताओं को एक छोटे से अंतराल में बयां कर पाना बेहद कठिन है, परंतु हमने इसके सारांश को एक छोटे से वृत्त चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसे नाम दिया है सीमा और आंतरिक सुरक्षा के सजग प्रहरी सीमा सुरक्षा बल। तो प्रस्तुत है यह वृत्त चित्र।
3: वर्ष 1965 में स्थापना के साथ ही बीएसएफ ने राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व संभाला। स्थापना के मात्र 6 वर्षों के बाद संस्थापक महानिदेशक श्री के एफ रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ ने 1971 के युद्ध में पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर अदम्य साहस उत्कृष्ट युद्ध कौशल एवं पराक्रम का परिचय दिया। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में बीएसएफ की अहम भूमिका रही है। बाद के वर्षों में सीमा सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ ने पंजाब और कश्मीर के आतंकवाद विरोधी अभियानों और पूर्वोत्तर भारत के प्रतिविद्रोहिता अभियानों में अप्रतिम योगदान दिया। कारगिल युद्ध के समय भी बीएसएफ के वीरों ने अग्रिम मोर्चों पर डटे रहकर अपनी बहादुरी सिद्ध की। भारत सरकार के 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करने में भी बीएसएफ की सक्रिय भागीदारी रही है। इन सभी अभियानों में अद्वितीय योगदान के लिए बीएसएफ ने अनेक वीरता पदक अर्जित किए। आज पश्चिमी सीमा पर हिमालय की बर्फीले व दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों तपते रेगिस्तान तथा गुजरात के विशाल रण जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों से जूझते हुए सीमा प्रहरियों के समक्ष सीमा पार आतंकवाद हथियारों एवं गोला बारूद की तस्करी हीरोइन व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। पूर्वी सीमा पर सीमांत क्षेत्रों में घनी आबादी नदी नालों की बहुतायत मानसूनी वन और उत्तर पूर्व की जटिल पहाड़ी श्रृंखलाएं भौगोलिक जटिलता प्रस्तुत करती हैं। पूर्व में सुंदरबन डेल्टा तथा पश्चिम में गुजरात के क्रीक जैसे दुर्गम जलीय सीमांत इलाकों में बीएसएफ की वाटर विंग के फ्लोटिंग बीओपी एवं अत्याधुनिक क्राफ्ट इन क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी जैसे चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में भी पूरी जिम्मेदारी से योगदान देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के प्रहरियों ने अदम्य साहस पराक्रम और सर्वोच्च समर्पण का परिचय दिया।
4: ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है।
3: अभियान में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर प्रहरियों की गाथाएं राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में सदैव अमर रहेंगी। गृह मंत्रालय सदैव बीएसएफ के लिए मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत रहा है तथा बल के आधुनिकीकरण परिचालन क्षमता और कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।
5: और मैं सभी बल के जवानों को कहना चाहता हूँ, न केवल देश के प्रधानमंत्री न केवल गृह मंत्री समग्र देश की जनता आपकी वीरता को सैल्यूट करती है।

0: आपकी दक्षता पर भरोसा करती है और आपकी प्राण के अंत तक देश की सुरक्षा करने की धगस से निश्चिंत होकर 12 महीना चैन की नींद सोती।
1: आधुनिकीकरण की दिशा में BSF अग्रसर है, जिसे स्मार्ट फेंस की व्यवस्था बखूबी रेखांकित करती है। यह फ्लड लाइट्स, ड्रोन आधारित निगरानी, रडार, फिडार, CCTV कैमरों और अन्य उपकरणों के समेकित उपयोग की व्यवस्था है। स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ ड्रोन फॉरेंसिक्स के उपयोग में भी BSF ने नए प्रतिमान रचे हैं। सीमा प्रबंधन में तकनीकी नवाचारों का समावेश करने के लिए विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से करार किए गए और किए जा रहे हैं। BSF की अश्रु गैस इकाई ने इस वर्ष अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस संस्था के उत्पाद आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में अहम भूमिका निभाते हैं। खेलों के क्षेत्र में भी BSF ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की है। BSF में खेलों के प्रति नीतियों में आमूल परिवर्तन किए गए हैं। खिलाड़ियों के चयन, उनके प्रशिक्षण, खानपान, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा उन्नत प्रशिक्षण उपकरणों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। BSF के खिलाड़ी वर्ल्ड पुलिस गेम्स, पुलिस ड्यूटी मीट तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और वुशु जैसे खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश एवं बल का नाम विश्व स्तर पर गौरवान्वित कर रहे हैं। BSF के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित स्वदेशी नस्ल के श्वानों ने अनेक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। प्रहरियों का कल्याण गृह मंत्रालय एवं बल प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। नए आवासीय परिसरों का निर्माण किया गया है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पारिवारिक कल्याण से संबंधित अनेक योजनाओं का सतत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की पेंशन एवं अन्य देयकों के त्वरित निस्तारण को भी BSF प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। बल की हीरक जयंती के अवसर पर वर्ष पर्यंत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 60 वर्षों की सेवा, बलिदान एवं सशक्तिकरण की गाथाओं को पिरोए हुए अनेक कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण में BSF के योगदानों को जन जन तक पहुँचाना है। हीरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में BSF के महिला पर्वतारोही दल ने वंदे मातरम अभियान को सफल काम करते हुए 21 मई 2020 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय पाई है।
2: कौशल, शेरिंग, रेबेका और मुनमुन, सबसे पहले तो समस्त BSF परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई।
1: विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर राष्ट्रगीत गाकर BSF टीम ने देश और बल के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। आज इस अवसर पर प्रत्येक सीमा प्रहरी माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने और माननीय गृह मंत्री जी के सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वोत्तम सुरक्षा बल बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए पुनः संकल्प लेता है। जय हिंद।
3: सुरक्षा बल ने अपने 6 दशकों में गौरवपूर्ण सफर में न केवल सीमाओं की रक्षा की है बल्कि देश की विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों में भी अद्वितीय योगदान दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने स्वयं को विशिष्ट संगठन के रूप में स्थापित करते हुए देश की प्रथम रक्षा पंक्ति में होने का सम्मान भी अर्जित किया है। और अब सीमा प्रहरियों का अलंकरण समारोह मुख्य अतिथि श्री अमित शाह के कर कमलों से।
4: And now the awards are going to be given to all the people for their gallantry and for the wonderful work they have done for the country and what they have achieved. And they'll be receiving the awards from the Home Minister, Shri Amit Shah. And Shri Amit Shah has come to the front of the dais to give away the awards to everyone.

में बीएसएफ की 35 बटालियन की एक टुकड़ी एरिया डोमिनेशन के लिए आगे बढ़ रही थी, तभी नक्सलियों द्वारा बिछाई गई आईडी की चपेट में आकर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए। परंतु अब इस बहादुर प्रहरी ने ना सिर्फ आखिरी सांस तक नक्सलियों से लोहा लिया बल्कि अपने साथियों को सुरक्षित बचाने में भी कामयाब रहे। अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद उप निरीक्षक महेंद्र सिंह की बहादुर धन पत्नी श्रीमती राजवती।

आरक्षक रंजीत यादव 163 बटालियन मरणोपरांत। 6 जून 2023 मणिपुर के मैतेई एवं कुकी समुदाय के बीच खूनी संघर्ष के दौरान शांति बहाली के लिए तैनात 163 बटालियन की टुकड़ी पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया, जिससे टुकड़ी में शामिल आरक्षक रंजीत यादव बुरी तरह जख्मी हो गए, परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर बहादुर प्रहरी रंजीत यादव आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उपद्रवियों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बहुत अधिक खून बह जाने के कारण अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। असीम शौर्य, पराक्रम, मारक क्षमता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर प्रहरी रंजीत यादव को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक रंजीत यादव की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या यादव।

आरक्षक नरेंद्र कुमार मरणोपरांत एवं श्री अशोक कुमार उपकमांडेंट 122 बटालियन 28 मई सन 2023 मणिपुर का मौर्य इलाका राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने के मकसद से तैनात बीएसएफ की 122 बटालियन की एक टुकड़ी का नेतृत्व बहादुर अधिकारी श्री अशोक कुमार कर रहे थे। अचानक उग्र भीड़ ने आम नागरिकों पर हमला कर दिया। अमूल्य मानव जीवन की हिफाजत के लिए सीमा प्रहरियों ने फौरन जवाबी कार्रवाई की और आगे बढ़ते हुए उपद्रवियों का डटकर मुकाबला किया, परंतु इस दौरान सीमा प्रहरियों की टीम में शामिल बहादुर आरक्षक नरेंद्र कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन आखिरी दम तक डटे रहे और कर्तव्य की बलिदेवी पर अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अद्भुत नेतृत्व क्षमता और पराक्रम के लिए बहादुर अधिकारी अशोक कुमार तथा शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार को वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पहले पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार की बहादुर जीवन संगिनी श्रीमती सुनीता देवी।

देवियों तथा सज्जनों, सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास असंख्य वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। उसी गौरवशाली इतिहास में गत वर्ष एक और नया अध्याय लिखा गया, जिसे हम सभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट 7वीं बटालियन, 9 और 10 मई 2025 की रात जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी सीमा चौकी खरकोला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी के बीच बहादुर अधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव ने नेतृत्व संभाले रखा और अपनी जान पर खेलकर अपने घायल साथियों को भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। शौर्य, पराक्रम, नेतृत्व एवं बहादुरी की अद्भुत मिसाल कायम करने वाली इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट।

श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर से लगी पाकिस्तानी सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाक रेंजर को अपनी जान पर खेलकर गिरफ्त में लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्पन्न हुए सामरिक व पेचीदा कूटनीतिक परिदृश्य को बदल देने वाले बहादुर अधिकारी श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट को उनके अदम्य साहस, शौर्य तथा सूझबूझ के लिए वीरता पदक से अलंकृत किया गया। श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट।

श्री आलोक नेगी सहायक कमांडेंट 53वीं बटालियन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा पर दुश्मन द्वारा की गई तीव्र एवं लगातार गोलाबारी के बीच 53वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री आलोक नेगी ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में अग्रिम चौकियों पर तैनात रहते हुए अपने जवानों का मनोबल बनाए रखा और अपनी प्रभावी कार्रवाई से शत्रु की गतिविधियों को निष्फल किया। साहसिक नेतृत्व, वीरता, पराक्रम और असीम शौर्य के लिए इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री आलोक नेगी, सहायक कमांडेंट।

मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा 175 बटालियन 20 अप्रैल सन 2023 भारत बांग्लादेश सीमा पर रात के लगभग 9:30 बजे पेट्रोलिंग के दौरान मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा ने टेंगोन नदी के पुल के समीप कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देख जैसे ही ललकारा कि भारी संख्या में बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद बहादुर सीमा प्रहरी नरबू शेरपा ने वीरता के साथ मुकाबला करते हुए एक तस्कर को धर दबोचा। शौर्य पराक्रम एवं वीरता की पराकाष्ठा रचते हुए मातृभूमि की रक्षा सुनिश्चित करने वाले हेड कांस्टेबल नरबू शेरपा को राष्ट्र द्वारा वीरता पदक से अलंकृत किया गया। मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा।

और अब सराहनीय सेवा पदक उन कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों व सीमा प्रहरियों के लिए जिनकी लंबी मेदाग और सराहनीय सेवाओं के फलस्वरूप राष्ट्र द्वारा सराहनीय सेवा पदक से अलंकृत किया गया है। इस क्रम में सर्वप्रथम अलंकरण हेतु गर्व से आगे आ रहे हैं श्री मनिंदर प्रताप सिंह पवार महानिरीक्षक।

और अब विशेष संक्रिया यानी स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक श्री अंकित गोयल आईपीएस उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय गुरदासपुर 12 नवंबर 2021 महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में एसपी के रूप में तैनाती के दौरान श्री अंकित गोयल ने विश्वस्त सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें नक्सलियों और कमांडोज के बीच 13 से 16 नवंबर 2021 तक चले मुठभेड़ में 27 खूंखार नक्सली मारे गए तथा भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। वीरता, शौर्य एवं रण कौशल में माहिर इस बहादुर अधिकारी को

0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि वह अभी अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह
1: एंड नाउ श्री अमित शाह, द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ द ईयर। ही वॉक्स टू द पोडियम।
2: आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी, श्री तपन डेका जी निर्देशक आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार जी सचिव सीमा प्रबंधन गृह मंत्रालय, श्री महेश कुमार अग्रवाल विशेष महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, और आज इस सभागार में उपस्थित 43 वो बहादुर सीमा सुरक्षा बल के जवान जिनको अलग अलग प्रकार के पदक आज प्राप्त हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल के सभी पूर्व डीजी जिन्होंने अपने अपने समय में सीमा सुरक्षा बल को और मजबूत करने में सराहनीय योगदान दिया है, और भारत सरकार के सभी उपस्थित अधिकारीगण, अलग अलग सीएपीएफ के डीजी और प्यारे जवानों, सबसे पहले मैं आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह अलंकरण समारोह एक प्रकार से अधिक निष्ठा, कर्तव्य परायणता और राष्ट्र के प्रति पूर्ण आपका जो समर्पण है इसका प्रतीक। सबसे पहले मैं स्थापना से अब तक 65 से 2026 तक सीमा सुरक्षा बल के जिन जवानों ने अपनी अप्रतिम देशभक्ति और कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो सभी 2000 से ज्यादा जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि और आदर पूर्वक नमन करना चाहता हूं। मित्रों, आज मेरे लिए भी एक प्रकार से गौरव का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह और उसके स्थापक श्री रुस्तम जी की स्मृति में स्मृति व्याख्यान में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला है। मैं एक प्रकार से तीसरी बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा हूं। आज हम सब जानते हैं कि 65 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा व्यवस्था में जो गैप्स थे, जो कमियां थी, उसका एक गहन अभ्यास करने के बाद एक ऐसे बल की उपस्थिति महसूस की गई जो शांति काल में भी 24 घंटा हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे। और उस वक्त पद्म विभूषण KF रुस्तम जी के नेतृत्व में BSF की स्थापना हुई, और जब से BSF की स्थापना हुई है सैन्य BSF ने न केवल गृह मंत्रालय, पूरे देश को सीमा

युवाओं की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित सुरक्षा करकर निश्चिंत करने का काम सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया है। इसको पूरा देश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। 65 से 74 तक श्री रुस्तम जी ने सीमा सुरक्षा बल का एक प्रकार से नेतृत्व भी किया, नींव डालने का काम भी किया और सीमा सुरक्षा बल का कल्चर को बनाने का भी काम किया। कोई भी संस्था में संस्थापक शुरुआत किस रास्ते पर करता है इसका बड़ा महत्व होता है और मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्रीमान रुस्तम जी ने जो नींव डालने का काम किया है वो नींव पर आज सुरक्षा के क्षेत्र में एक भव्य इमारत बनाने का काम बीएसएफ ने किया है जो देश के लिए अति गौरव की बात है। आज यहां पर वीरता पदक, सराहनीय सेवा पदक और अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गृह मंत्री पदक भी हमारे जवानों ने दिया जवानों को दिया गया है। ये कोई सीमा सुरक्षा बल के लिए नई बात नहीं है। मैं आगे बताऊंगा ढेर सारे पदक आपने आपके शौर्य और पराक्रम से अर्जित किए हैं और बल की शान हमेशा बढ़ाई है। मगर सबसे पहले मैं अभी अभी बीएसएफ की महिला टीम द्वारा माउंट एवरेस्ट पर फतह करने की एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है, इसलिए उस टीम के सभी सदस्यों को और सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी हमने दृश्य देखा एवरेस्ट की चोटी पर जब वंदे मातरम गाया जाता है तो यहां दिल्ली के हॉल में बैठकर भी हमारे मन के अंदर बहुत आनंद और संतोष की अनुभूति होती है। मैं उन महिला जवानों को उनके अनुभव को यहां बैठकर महसूस करता था कि कितना रोमांच हुआ होगा जब आसमान को छूने वाली चोटी पर वंदे मातरम का वो गान करते होंगे और वो भी वंदे मातरम के 150वीं जयंती के वर्ष में ये गान गाने का सौभाग्य इनको मिला है। मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्र अटल जी के समय पर एक बॉर्डर एक बल ये सिद्धांत तय किया गया और उसके बाद बीएसएफ को देश की सबसे दो कठिन सीमाओं का काम दिया गया। पाकिस्तान से सटी हुई 1289 किलोमीटर की सीमा और बांग्लादेश से सटी हुई 4100 किलोमीटर की सीमा। हम सब जानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से दोनों सीमाएं वल्नरेबल भी है और हमारे लिए चिंता का कारण भी है, परंतु उस वक्त भी सोच समझकर ही देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने निर्णय किया होगा कि जो सबसे कठिन काम है वो बीएसएफ को दे दीजिए, बीएसएफ कभी दो कदम पीछे नहीं हटेगी। और मुझे कहते हुए आनंद है कि अब तक ये बॉर्डर दो बॉर्डर को आपके संभालने के बाद जितनी भी चुनौती आई इसमें पराजय का मुंह दुश्मन को ही देखना पड़ा है, कभी आपने भारत का सर नीचे नहीं होने दिया है। और आज हम देखते हैं कि कई प्रकार की नई चुनौतियां सीमा सुरक्षा में हमारे सामने खड़ी हुई है। अवैध घुसपैठ, नारकोटिक्स की तस्करी, गौ तस्करी, फेक करेंसी का चलन, संगठित अपराध, ड्रोन से हथियारों की और नशे की तस्करी, कई प्रकार की चुनौतियां

बीएसएफ के सामने है, मगर बीएसएफ ने लगातार इसके लिए किसी न किसी प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करने का सुनियोजित प्रयास किया है। और मैं आगे पर 60वें साल में भारत सरकार क्या करने वाली है वो भी बताऊंगा, मगर आपने आपके पास जो सीमित संसाधन थे वो सीमित संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए इस सभी चुनौतियों के साथ दो दो हाथ कर देश की सुरक्षा करने का काम किया है, जिससे हमें सुनिश्चितता है। आपकी भूमिका अब आने वाले दिनों में और ज्यादा अधिक इंटीग्रेटेड भी करनी पड़ेगी और व्यापक भी करनी पड़ेगी। अब हम केवल पारंपरिक तरीके से सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते, हमने राज्य पुलिस, सशस्त्र बल, अन्य सशस्त्र बल, एनसीबी, इंटेलिजेंस एजेंसियां और राज्य के प्रशासन, इस सबके साथ मिलकर सुरक्षा की ग्रिड को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर हम ये नई चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। और एक हमने सीमा सुरक्षा को एक आइसोलेटेड काम के रूप में देखने की जगह एक टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखना पड़ेगा, तभी जाकर हमें सारी चुनौतियों को पार करने में सफल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने आगे के खतरों को भी देखना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि देश के उस पार से कृत्रिम तरीके से जनसंख्यिकी में जो बदलाव किया जा रहा है घुसपैठ के द्वारा, उसको रोकने के लिए सतर्क और सजग रहना पड़ेगा। अर्थतंत्र पर नार्कोटिक्स और फेक करेंसी के हमले से जिस प्रकार से हमारे अर्थतंत्र को खोखला करने का प्रयास हो रहा है, इसके लिए भी हमने सतर्क रहना पड़ेगा। साइबर चुनौतियां, हाइब्रिड वॉरफेयर और ड्रोन के खतरे, ये सभी के लिए एक नई रणनीति लेकर आना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि सीमा सुरक्षा बल ये करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। मित्रों, आज सीमा सुरक्षा बल के काम का व्याप देखते हैं तो सियाचिन और कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियां, कुपवाड़ा, केरन, उड़ी जैसे दुर्गम क्षेत्र, राजस्थान का रण, कच्छ का छोटा रण, सरक्रिक के दलदली नाले, सुंदरवन के घने जंगल और झरने, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की कठिन पूर्वी सीमाएं और ब्रह्मपुत्र से जुड़े हुए कठिन संवेदनशील नदी क्षेत्र भी है। और इस सभी के बीच में सीमा सुरक्षा बल डटा हुआ है और इसी के कारण 1965 में महज 25 बटालियनों से अल्प संसाधनों के साथ शुरू हुआ सीमा सुरक्षा बल 2,70,000 की नफरी के साथ विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल बना है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। इस 8 साल की जर्नी में एक महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, 47 सेना मेडल और 1,262 वीरता के लिए पुलिस पदक सीमा सुरक्षा बल ने अपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के कारण अर्जित किए हैं, वो हम सब के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। मित्रों, 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारी रक्षा नीति और सीमाओं की सुरक्षा के बारे में हमारे नजरिए में हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। पाकिस्तान के द्वारा किए गए तीनों हमले, हमने इसका

अब एक प्रकार से एक नई डिफेंस डॉक्ट्रिन का एक प्रकार से घोषणा है, और मैं मानता हूं उसमें सीमा सुरक्षा बल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने वाले हमारे जवानों को हमने यहां पर अलंकरण से नवाजा है, मगर मित्रों आने वाले दिनों में भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 60वां वर्ष हम सीमा सुरक्षा बल को पूर्णतया एक डिजाइन के तहत ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए, ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है, और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन रडार आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा। और मैं मानता हूं ये लॉन्च होने के बाद सीमा सुरक्षा बल का काम काफी सरल भी होगा और मजबूत भी होगा, क्योंकि जब तकनीक आगे बढ़ रही हो तब हमने भी सुरक्षा में तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके हर कंपोनेंट के लिए गृह मंत्रालय ने अनेक प्रकार की कवायद की है, और लगभग एक इन टोटो स्मार्ट बॉर्डर के काम में हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे, और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तकनीकी सहायता के बाद आपका पराक्रम, आपका शौर्य, आपका समर्पण, आपके देशभक्ति के साथ साथ एक मजबूत सपोर्ट तकनीक का भी आपके पास उपलब्ध होगा, जिससे हम दोनों सीमाओं को सुरक्षित कर देंगे। मैं आज सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में आया हूं तब घुसपैठ पर भी बात करना चाहता हूं। भारत सरकार ने यह तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश से बाहर निकालेंगे, और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चून चून कर बंद करना, समाप्त करना, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ

गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। मगर मेरा सीमा सुरक्षा बल से भी आग्रह है कि आप भी केवल सीमा की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पटवारी तक, एसपी से लेकर पुलिस के थाने के इंचार्ज तक हमारा संवाद होना चाहिए और इनसे मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन का उपयोग कर घुसपैठियों को निकालने की एक सुचारू व्यवस्था भी बनानी चाहिए, घुसपैठ को रोकने की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है उसको हमें रोक देना पड़ेगा। और ये आप सबने कर दिखाया है। मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिसें सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते देखते देखते समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और ये हमारे जवानों ने कर दिखाया है कि समस्या को संभाल कर रखना, कंट्रोल में रखना, ये सुरक्षा का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। समस्या को मूल समेत समाप्त करना ही सुरक्षा का दृष्टिकोण हो सकता है और वो आज सिद्ध हो चुका है। और अब घुसपैठ के लिए भी बीएसएफ ने इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज 1, वाइब्रेंट विलेज 2 आपके समर्थन में एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया विकास का कार्यक्रम है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर किया है और अब बंगाल सरकार ने भी जितनी भी भूमि देनी थी वो सारा देने का निर्णय कर चुके हैं, कुछ तो हैंडओवर भी कर दिए हैं। अब हमारे पास काम है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की है, कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी, इसका चार्टर भी बन जाएगा। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन भी चिन्हित करे हुए पॉइंट्स को बीएसएफ के और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए उपलब्ध कराएगा। इस सब चीजों का उपयोग करते हुए हमें आने वाले दिनों में एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड दोनों देशों की सीमाओं के सीमा पर बनानी पड़ेगी और इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाना पड़ेगा। मित्रों, जिस तरह से मैंने किया कहा कि 60वां वर्ष एक स्मार्ट बॉर्डर बनाने का वर्ष है, उसी तरह से 60वां वर्ष बीएसएफ के जवानों के कल्याण का भी वर्ष है। 2 महीने के अंदर ही नरेंद्र मोदी सरकार बीएसएफ और सभी सीएपीएफ के जवानों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर आएगी जिससे हमारे जवान सुनिश्चित होकर सीमाओं की सुरक्षा करें, उनके परिवारजनों की चिंता भारत सरकार का गृह मंत्रालय करे। इस प्रकार का एक कार्यक्रम भी हम आने वाले 1 साल के अंदर लेकर आएंगे। हमने एक बहुत बड़ा अभियान कुछ समय के बाद नारकोटिक्स के खिलाफ भी देश में चलाने जा रहे हैं, इसमें भी सीमा सुरक्षा बल की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है। और सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता से दोनों ओर की सूचना एकत्रित कर नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, आने वाले 3-4 साल एक प्रकार से सीमा की सुरक्षा में संपूर्ण बदलाव के 4 साल रहने वाले हैं और हमने इसके लिए अभी से कमर कसनी है, मन से तैयारी करनी है। तकनीक की सुरक्षा आने से जवानों की जिम्मेदारी कम नहीं होती, तकनीकी सुरक्षा का सपोर्ट आने से जवानों की
जिम्मेदारी

0: तैयारी बढ़ती है। ये भाव के साथ तकनीक को आत्मसात करते हुए, स्थानीय लोगों से संवाद प्रस्थापित करते हुए, स्थानीय प्रशासन से तालमेल बढ़ाते हुए हम सब एक बार लक्ष्य तय कर ले कि इस देश को घुसपैठ से मुक्त करना है और हमारी जनसांख्यिकी में कृत्रिम परिवर्तन को हम रोकने में सफल हो, तो मुझे नहीं लगता कि यह बहुत कठिन काम है। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में जो अभियान चलने वाला है उसमें आपका पूर्ण मनोयोग के साथ सहयोग मिलेगा और हम एक नई सुरक्षा ग्रिड का निर्माण पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर बनाने में सफल होंगे। फिर से एक बार श्रीमान रुस्तम जी को मन पूर्वक नमन भी करना चाहता हूं और उनके काम की सराहना भी करना चाहता हूं, और जिन जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो सबको श्रद्धांजलि देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।
1: भविष्य में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और मजबूत सुरक्षा ग्रिड के लिए अभियान चलेगा और अभियान में सहयोग की भी आवश्यकता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपने विचारों के साथ।
2: जो महोदय के हृदय में इस दिवस की याद को हमेशा संजोए रखेगा।
1: और अब सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री प्रवीण कुमार द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह।
2: धन्यवाद श्रीमान। और
3: हेलो एवरीवन, टू गिवन टू द होम मिनिस्टर बाय द डीजी ऑफ द फॉरेस्ट सिक्योरिटी फोर्स श्री प्रवीण कुमार।
1: विशेष महानिदेशक द्वारा धन्यवाद।
4: माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री तपन डेका डायरेक्टर आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार सचिव सीमा प्रबंधन, श्री प्रवीण कुमार महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, हमारे मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2026 के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी की उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यंत सार्थक और गरिमामयी बना दिया है। आपके सानिध्य और समय के लिए मैं सीमा सुरक्षा बल परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, आपने अत्यंत व्यस्तता के बीच इस कार्यक्रम के लिए समय निकालकर न केवल हमारा मान बढ़ाया है बल्कि यह दर्शाया है कि सीमा प्रहरियों के प्रति आपका स्नेह, सम्मान और विश्वास अटूट है, जो कि हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति और प्रेरणादायी शब्दों ने हम सभी का उत्साह बढ़ाया है तथा हमें नई ऊर्जा प्रदान की है। हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उन्हें अपने जीवन में अपनाते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करने का संकल्प करते हैं। सीमा सुरक्षा बल परिवार अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का भी हार्दिक आभार प्रकट करता है। आपके निरंतर सहयोग और विश्वास ने हमें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हमें आशा है कि भविष्य में भी आपका स्नेह और मार्गदर्शन यूं ही बना रहेगा। मैं मीडिया के यहां उपस्थित प्रतिनिधियों का भी विशेष धन्यवाद करता हूं। मैं आयोजन समिति के समस्त अधिकारियों एवं कर्मियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस व्याख्यान के सफल आयोजन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। धन्यवाद। जय हिंद।
3: श्री महेश अग्रवाल, स्पेशल डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एंड नाउ दिस विल बी फॉलोड बाय द राष्ट्रगीत।
5: सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान सिर्फ सीमा सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का समारोह है। राष्ट्रीय महत्व के इस विशेष अवसर पर अब समय है एक ही क्रम में पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एवं तत्पश्चात राष्ट्रगान जन गण मन में शामिल होने का, जिसे प्रस्तुत करेंगे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से आए युवा कलाकार।

0: समारोह साहस, समर्पण और राष्ट्र सेवा की गौरवपूर्ण परंपरा का प्रतीक है। हम उन वीर जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य को हमेशा सर्वोपरि रखा। सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में न केवल हमारे वीर जवानों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया, बल्कि हमें राष्ट्र सेवा के मूल्यों और अधिक गहराई से समझने की प्रेरणा भी प्रदान की। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वी के तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्रा, कमल सिंह, हेमराज मीणा और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूं। नमस्कार।
1: मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनिए बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।
2: गृहलक्ष्मी सुनने वाली हमारी सभी श्रोता बहनों को निधि का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है बहनों आप सबका
3: आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। जी हाँ बहनों, आपकी ये अनदेखी सी उपस्थिति इस तपती गर्मी में भी हमें राहत का एहसास दिला रही है, तो स्वीकार कीजिए अपनी सखी राखी का भी प्यार भरा नमस्कार। चलो निधि, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे।
2: हाँ राखी, बहुत सही बात कही तुमने कि तपती गर्मी में भी जब हम बहनों से रूबरू होते हैं तो एक ठंडक सी महसूस होती है ना, और वो तुम्हारे चेहरे पे तो मुझे दिखाई दे ही रहा है। तो हमारी आशा भी ये है कि हमारी बहनें जो हैं वो इतनी व्यस्तता में भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल बखूबी रख रही होंगी, और ये हमारी आशा है और हमारी कामना भी, क्योंकि हमारी जो बहनें हैं ना उनके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं।
3: बिल्कुल, और वो उन्हें बखूबी निभाते भी हैं। निधि, जो बहनें नौकरी करती हैं या कोई व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं उनके ऊपर तो दोहरी जिम्मेदारी होती है ना।
2: और आज हमारी बहनें जो हैं वो हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, बिल्कुल पुरुषों के समान। तभी तो आज के युग में हम कहते हैं ना कि बेटा बेटी एक समान है।
3: एक बहुत अच्छी सोच है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज उन्नति करे, प्रगति करे, तो इस सोच पर हमें अमल भी करना होगा पूरी निष्ठा के साथ। हाँ, कि बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं।
2: इस सोच ने तो साकार रूप लिया ही है, लेकिन अभी भी इस दिशा में राखी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ करना बाकी है। तभी तो हम कहते हैं ना कि जो बेटियां जो हमारी हैं वो कितनी अनमोल है हमारे लिए। तो मन में एक भावना उठती है कि आँखों के लिए फूल सी होती हैं बेटियां, मुट्ठी भर नीर सी होती हैं बेटियां, कोई नहीं एक दूसरे से कम, हीरा है अगर बेटा तो सच्ची मोती है बेटियां।
3: बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर, कितनी सुंदर सोच है ये। वास्तव में वही समाज आगे बढ़ सकता है जहां हम महिला और पुरुष को एक दूसरे के समान समझते हैं, एक दूसरे का सहयोगी मानते हैं।
2: हाँ, आज अगर बेटे के जन्म पर खुशियां मनाई जाती हैं तो बेटियों का भी स्वागत हमें समान रूप से करना चाहिए। बेटियां भी समान सुविधाएं जैसे शिक्षा, पौष्टिक भोजन, स्वस्थ वातावरण और इन सब की अधिकारी हैं।
3: आज भी कई जगह पर लड़कियां भेदभाव का शिकार हो रही हैं, तो हम सब लोग देख रहे हैं। कार्यस्थल पर सुविधाएं और वेतन को लेकर भेदभाव, घर में सुविधाओं से या संपत्ति में अधिकार से संबंधित भेदभाव, ये सब मामले अभी भी हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि बदलाव पूरी तरह नहीं आया है
2: और बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो घर से लेकर बाहर तक समाज में जहाँ पे वे हर क्षेत्र में योगदान दे रही हैं, तो वहाँ तक वे भेदभाव का शिकार हो जाती हैं। और अक्सर लोग ये समझते हैं कि बेटा ही घर का नाम रोशन कर सकता है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारी जो देश की वीरांगनाएं हुई हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है और हमारे समाज को ही नहीं बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है। और इनमें जो मुख्य नाम हमारे जहन में आती हैं वो है रानी पद्मावती, झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई फुले आदि, और न जाने कितने और नाम हैं। और इन महिलाओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम बहुत गर्व महसूस करते हैं, और ये हम बिल्कुल ये बात साबित हो जाता है कि जो पुरुष कर सकते हैं वो भी महिलाएं कर सकती हैं।
3: हाँ, और हमारी जो आज की नन्ही नन्ही बेटियां हैं जिन्हें हम छुई मुई समझते हैं, नाजुक समझते हैं, हो सकता है कल को, बिल्कुल

0: लक्ष्मीबाई बने
1: बिल्कुल,
0: या
1: बिल्कुल।
0: बहुत हमारा नाम रोशन करें
1: मैं
0: उन्हीं
1: भी
0: की
1: यही
0: तरह
1: कहने वाली थी और
0: बहादुरी
1: देखो तुम्हारे दिमाग में भी यही बात आई तो बहुत ही अच्छी बात है ये। तो हम बहुत ही उज्जवल भविष्य देखते हैं और कामना करते हैं अपनी बेटियों के लिए, और इसके लिए हमें प्रयास भी लगातार करते रहना
0: बिल्कुल
1: होगा।
0: और जब भी आपके घर कोई नन्ही परी आए बहनों, तो ज़रूर आप खुशियाँ मनाएं जैसे बेटे के आने पर मनाते हैं।

0: एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं हम बहनों आपके ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और निधि, अब बहनों को कुछ जानकारियाँ भी दिलवाने वाले हैं हम ना।
1: हाँ, तो अब प्रस्तुत है भेंट वार्ता। बहनों, आज का विषय है कैसे करें जैव विविधता की रक्षा। भेंट वार्ताकार हैं आरती मिश्रा, जो कि एक शिक्षिका हैं, और इनसे बातें कर रही हैं राखी शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
2: बहनों, जैव विविधता यानी प्रकृति में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, पर्यावरण संतुलन, जो हमारे जीवन का आधार है। लेकिन बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण यह संतुलन लगातार प्रभावित हो रहा है, बिगड़ रहा है। तो कैसे करें जैव विविधता की रक्षा, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है आज के समय में। आइए आज अपने कार्यक्रम में इसी विषय पर जानकारी लेते हैं हम। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गई हैं। आप हैं आरती मिश्रा, आप शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत ही जागरूक भी हैं। आरती जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। नमस्कार।
3: नमस्ते राशि जी।
2: सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जैव विविधता क्या है और इसका संरक्षण आज के समय में क्यों आवश्यक है।
3: जैसे राशि जी, सुनने में ही लग रहा है कि जैव विविधता, तो जैव का तो अर्थ ही होता है जीव या फिर जीवन से संबंधित। तो जैसे कि धरती पर जीवन हर का अलग अलग रूप होता है, तो प्रकृति में जितने भी जीव रहते हैं सभी मिलकर ही वो हम लोग जैव विविधता बनाते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आज के जमाने में तो बहुत जरूरी है। जैसे कि जैव विविधता से हमें भोजन, दवा, शुद्ध हवा और स्वच्छ जल प्रकृति से ही मिलती है, और अगर यही अगर नष्ट हो जाएंगे पेड़ पौधे, तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए जैव विविधता का होना बहुत जरूरी है।
2: आपने पर्यावरण संतुलन की बात कही, तो इसी से जुड़ा एक प्रश्न है कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता की क्या भूमिका होती है।
3: जैसे कि जैव विविधता को बचाना इसलिए जरूरी है कि तो हमारी जिंदगी है। जैसे पेड़ हमें हवा देते हैं, नदी हमें पानी देती है, अगर ये सब नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए जैव विविधता का संरक्षण बहुत ही जरूरी है।
2: अच्छा, आम लोग अपने दैनिक जीवन में जैव विविधता की रक्षा के लिए कौन कौन से छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं।
3: देखिए, इसके लिए आम लोग, इस तो हम लोग की लोग दैनिक जीवन में जैव विविधता की रक्षा के लिए हम छोटे छोटे कई कदम उठा सकते हैं। जैसे कि पहला, मेरे ख्याल से तो हर साल अपने जन्मदिन के अवसर पर एक एक पेड़ तो जरूर लगाना चाहिए हर किसी को, मेरे ख्याल से। आज अपने घर में लगाइए या तो फिर स्कूल में लगवाइए, जैसे कि नीम, आम या फिर कोई भी पेड़ अपने घर में या फिर आस पास में लगाइए एक पेड़ अपने जन्मदिवस के अवसर पर, और उस पेड़ में रोज दिन पानी दीजिए उसको, या तो फिर मोहल्ले में पेड़ लगाने के कार्यक्रम करवाइए आप लोग। और फिर है दूसरा, मेरे ख्याल से है, जैसे हम लोग बाजार जाते हैं तो हम लोग घर से ये थैला लेकर जाना चाहिए, और प्लास्टिक को ना ही उसका उपयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। और फिर जैसे कि है घर का, हम लोग घर में जो सब्जियां बनाते हैं उसको छिलका को क्या करें, कचरा में मत फेंकिए, उसे किसी गमले में डाल दीजिए ताकि वो खाद बन जाए और वो कुछ काम दे सके हम लोगों का है। और फिर है पानी बचाने के लिए, तो बच्चों को भी ये बताना बहुत जरूरी है, समझाना चाहिए बच्चों को कि पानी किस तरह से बचाया जाता है, बच्चे को पेड़ पौधे लगाने की शिक्षा दी जाती है कि पेड़ पौधे लगाने से क्या क्या फायदे हैं, इन सब के बारे में बच्चों को जरूर बताना चाहिए।
2: बिल्कुल, ये जन्मदिन पर पौधे उपहार में देने की बात बहुत अच्छी है आपने कही, अपने जन्मदिन पर लगाएं और साथ ही साथ दूसरे के जन्मदिन पर उपहार स्वरूप,
3: उपहार के स्वरूप,
2: और सिर्फ लगाए ही नहीं बल्कि उसकी रक्षा भी करें, बहुत अच्छी बात है। तो छोटे छोटे कदम हैं जो हर कोई उठा सकता है। अच्छा, ये बताएं कि वनों की जो लगातार कटाई हो रही है, प्रदूषण और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितना बुरा प्रभाव।
3: जी, जैसे कि हम लोग आजकल देख रहे हैं कि जगह जगह वृक्षों की कटाई हो रही है, जिसके चलते प्रदूषण और जलवायु में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जा रहा है। तो जंगल कट रहे हैं, तो जिसके चलते बारिश भी आजकल कम होने लगी है, गर्मी बढ़ रही है, जैसे कि हम लोग देख ही रहे कि आजकल कितना तेजी से गर्मी बढ़ रहा है, और प्रदूषण से हवा भी कभी खराब हो चुका है वो भी, और पानी और मिट्टी भी गंदी हो चुकी है सब भी, जिस पर जैव विविधता, जीवों और पौधों का नुकसान पहुंचता है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण आज मौसम में बदलाव देखने को मिलता है कि कभी अचानक से गर्मी बढ़ जाता है तो सूखा होता है, तो ये सब किसके कारण? तो जैव विविधता के कारण ही हो रहा है। तो हम लोगों को इसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रकृति का संतुलन तो क्या हो चुका है, बिगड़ चुका है। इसलिए हमें पेड़ों की खास करके रक्षा करनी बहुत जरूरी है।
2: सचमुच में अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारे पक्षी कहाँ
3: हाँ वही
2: बैठेंगे?
3: ना, वो तो बैठेंगे कहाँ।
2: हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम कहीं ना कहीं तो उनका
3: जी
2: घोंसला उजाड़ रहे हैं,
3: हाँ
2: उनका आशियाना हम बनने ही नहीं दे रहे हैं।
3: जी
2: और सचमुच में बहुत सारे पेड़ तो ऐसे होते हैं जो कि पक्षियों का संरक्षण कर रहे हैं,
3: जी
2: वहां पर उनका बसेरा होता है, लेकिन अब वो
3: जी
2: चीजें
3: हाँ
2: तो लुप्त हो जा रही हैं।
3: हाँ तो फिर चिड़ियाँ रहेंगी कहाँ।
2: हाँ, हमारा जो कार्यक्रम है आरती जी, वो महिलाओं का कार्यक्रम है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाएं

0: और समाज, सरकार, हमारे युवा, ये सब कैसे जैव विविधता की रक्षा कर सकते हैं या अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा सकते हैं इस क्षेत्र में?
1: जी, तो जैसे जैव विविधता का संरक्षण की जो बात है वो किसी एक व्यक्ति की तो एक व्यक्ति को तो काम नहीं है, इसके लिए सरकार, समाज, महिला और जितने भी युवा है सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से सरकार को सबसे पहले तो इसके लिए कड़े कानून बनाना चाहिए, जैसे कि अगर कोई पेड़ों की कटाई करे तो उसके लिए आप उसको सजा का भुगतान सजा दे उनको, और या फिर है कि वन जीव का संरक्षण का अधिनियम बनाइए, नेशनल पार्क ये सब बनवाइए, आप अभयारण्य बनवाइए, जैसे कि बेतला नेशनल पार्क है, फिर पेड़ लगाओ अभियान, ये सब। जैसे कि कुछ दिन पहले सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था स्कूलों में, एक पेड़ माँ के नाम,
0: बिल्कुल
1: जैसे ऐसा कुछ कुछ कार्यक्रम सरकार को मतलब तो करवाना चाहिए जिसे बच्चे भी कुछ सीख सके। अब जैसे कि कार्यक्रम ही था सरकार की ओर से एक पेड़ माँ के नाम, तो बच्चों को भी लगा चलो एक पेड़ लगाना चाहिए अपनी माँ के नाम पर, तो बच्चों को अच्छा भी लगता है। और उसके बाद है समाज, तो जंगल तो नहीं काटना चाहिए, आसपास के लोगों को जागरूक करना चाहिए समाज को, और फिर पानी और बिजली की बचत कैसे करना ये भी लोगों को बताना चाहिए। तो चाहे स्कूल हो या मंदिर हो, कहीं पर भी हो एक पेड़ आप जरूर लगाए, और लोगों को भी इसके बारे में इसका फायदा बताएं। प्लास्टिक का इस्तेमाल एकदम कम से कम, मतलब प्लास्टिक का उपयोग ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्लास्टिक तो वैसे भी नुकसानदायक है। और उसके बाद है महिला, तो महिलाएं तो सबसे बड़ा योगदान मैं सोचती उन्हीं लोगों का है, तो महिला को भी क्या करना चाहिए, महिलाओं को भी गांव में एक होता ना स्वयं सहायता समूह बनाकर पेड़ लगाने का कार्यक्रम करना चाहिए, और बच्चों को शुरू से ही प्रकृति से कैसे प्यार करना है एक ही माँ अच्छी तरह से समझा सकती है अपने बच्चों को। तो खास करके मैं सोचती थी महिलाओं का इसमें ज्यादा अगर योगदान दे तो ज्यादा अच्छा है। अपने बच्चे को भी मेरे ख्याल से हर माँ को चाहिए कि एक उपहार में एक पेड़ जरूर उपहार के रूप में उन्हें दे, और उन्हें बताए कि ये देखो ये पेड़ है, उसको पेड़ के बारे में बताते रहे किस तरह से उसको पानी देना है, ये सब के बारे में उनसे प्यार करना मतलब पेड़ से बच्चों को सिखाना चाहिए एक माँ को। और फिर
0: बिल्कुल
1: है कि बच्चे फिर जैसे कि रसोई के जो कचरे रहते हैं तो उनको भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसको हम लोग खाद के रूप में ही बना सकते हैं, ये सब भी इस्तेमाल करना चाहिए एक महिलाओं को। उसके बाद है युवाओं की क्या भूमिका है, तो आजकल की हमारी युवा पीढ़ी बहुत ही जागरूक पीढ़ी है, जैसे कि सोशल मीडिया पर वो लोग जागरूकता फैला सकते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है वैसे भी,
0: हाँ
1: जैसे कि साफ सफाई
0: बिल्कुल
1: अभियान चलाएं, वृक्षारोपण में हिस्सा ले, लोगों को भी बताएं, और नई तकनीकी से किस तरह से हम लोग खेती कर सकते हैं ये सब के बारे में बताएं, और जंगल ना काटने के बारे में बताएं। तो अगर ये अगर चारों चीज मिल जाते सरकार, समाज, महिला और युवा, तो जैव विविधता को हम लोग आराम से बचा सकते हैं।
0: बहुत अच्छी बात। ऊर्जा संरक्षण के प्रति भी जागरूकता आ जाएगी, ताकि
1: जी जी जी
0: बिल्कुल। और बहुत
1: हाँ
0: अच्छी आपने बात कही कि भावना से जोड़ना बहुत जरूरी है पर्यावरण को।
1: जी
0: जैसे हम वृक्षों की पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भावना उससे जुड़ी हुई है, तो बिल्कुल भाई उस वृक्ष को
1: जी
0: नहीं काटेंगे। तो इस तरह की चीजें अगर होने लगें तो परिवर्तन
1: बहुत अच्छा
0: देखने को
1: रहेगा, हाँ
0: मिलेगा।
1: परिवर्तन देखने को मिलेगा।
0: जी, तो आरती जी आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी, सुनने वालों को, हमारे श्रोताओं को लाभ पहुंचेगा। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, आपका भी राखी जी।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता, कैसे करें जैव विविधता की रक्षा। आज की हमारी मेहमान थी आरती मिश्रा और इनसे बातें कर रही थी राखी शर्मा।
3: और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं बहनों, एक सुंदर सा गीत सुनवाते हैं आपको, फिर कुछ और जानकारियां देंगे।

0: और बहनों,
1: हाँ
0: गीत तो हमने सुन लिया, लेकिन राखी अब एक जानकारी और देनी है हमें बहनों को।
1: बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है बहनों, एड्स के विषय में।
0: हाँ बिल्कुल, ये हम बताना चाहेंगे कि एड्स लाइलाज नहीं है, और एड्स एक ऐसी बीमारी है जिससे लोगों में चिंता बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। एड्स की बीमारी एचआईवी वायरस से होती है और इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है। एड्स का जो वायरस है वो संक्रमित रक्त या संक्रमित सुई या असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है।
1: लेकिन बहनों, ये बीमारी लाइलाज नहीं है, इसे जड़ से तो नहीं खत्म किया जाता, लेकिन इसे नियंत्रित करके जरूर रखा जा सकता है। इसलिए बहुत ये आशा की एक किरण है हमारे
0: बिल्कुल,
1: लिए।
0: तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हम ये जान लें कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो इसके शुरुआती लक्षण हैं तेज बुखार और ठंड लगना, अत्यधिक थकान और कमजोरी, गले में खराश और मांसपेशियों में दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते और रात को पसीना आना।
1: और ये इलाज और नियंत्रण की बात अगर हम करें, इलाज की बात तो नहीं करते, नियंत्रण की ही बात कर
0: बिल्कुल,
1: सकते हैं। तो इसमें कुछ दवाएं आती
0: एआरटी
1: हैं,
0: दवाएं जिसे हम कहते
1: हाँ,
0: हैं।
1: जिससे कि शरीर में जो संक्रमण है उसको अधिक फैलने से रोका जा सकता
0: बिल्कुल,
1: है।
0: और सामान्य जीवन की बात करें तो समय पर इलाज शुरू करने से खून में वायरस का स्तर इतना कम हो जाता है कि दूसरों को नहीं फैलता, और बचाव के तो बहुत सारे माध्यम हैं।
1: आप जो है सबसे पहले सावधानी से रहें, जैसा कि निधि पहले भी बता चुके हैं हम लोग, कि असुरक्षित यौन संबंध से बचें, और कभी भी अगर आपको रक्त चढ़वाना हो
0: तो
1: तो ये
0: जांच
1: देख
0: अवश्य
1: लें कि
0: कराएं।
1: हाँ, संक्रमित सुई ना हो, और उसकी अच्छे से जांच करवा लें।
0: और हमेशा डिस्पोजेबल सिरिंज की जांच
1: हाँ
0: करें
1: हाँ
0: और उसके इस्तेमाल
1: तो सावधानी ही बचाव है, ये बात समझनी होगी, छूने
0: और
1: हाथ
0: एक
1: मिलाने
0: बहुत
1: या
0: ज़रूरी
1: मच्छर
0: बात है
1: काटने
0: कि
1: से नहीं
0: कुछ
1: फैलता
0: चीज़ें
1: है।
0: जो भ्रांतियां हैं
1: हाँ
0: कि कैसे एड्स फैलता है, तो वो सब बातों पे हमें ध्यान नहीं देनी चाहिए।
1: हाँ तो बहनों, बातों बातों में समय हमें इशारा कर रहा है कि चलना होगा। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की, और इसी के साथ अपनी सखी राखी और
0: और निधि को दें विदा। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। आज की गृहलक्ष्मी संपन्न हुई। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 110.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT द्वारा।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू।
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा।
1: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
1: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुमबाई।
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
1: जी,
2: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
1: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
2: बिल्कुल सही,
1: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
2: जी जी जी।

0: आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट है,
1: जी सुना तो है।
0: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
1: अच्छा,
0: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षा वन नहीं है,
1: क्यों?
0: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं, वर्षा वन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
1: जी विमृषि, देखिए श्रोताओ, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है,
0: जी
1: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
0: जी
1: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
0: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
1: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है, यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
0: जी
1: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
0: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
1: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
0: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
1: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है, तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
0: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: लेकिन भला वो कैसे?
0: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छान कर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है, तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
1: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
0: जी
1: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
0: जी
1: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
0: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
1: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
0: जी
1: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
0: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वार भाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
1: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
0: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
1: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
0: जी
1: अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी, यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे, तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
2: CIET NCERT presents the program लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की, जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया।

0: गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
1: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
2: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
1: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
2: हाँ,
1: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
2: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
1: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
2: नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
2: अरे नहीं नहीं नहीं तिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा तिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा क्यों ना काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ उठो, आजा आओ। हाँ देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता थिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
1: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
2: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे। संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
1: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही हैं।
2: हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
3: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदूर का राजमार्ग जाता था।
0: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
1: सुनिए देखो कितना अच्छा होता यदि इस सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
2: हाँ ये तो है।
1: राहगीरों को सुस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
2: सही कहा।
1: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
2: बिल्कुल,
1: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
2: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
1: ठीक है,
2: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
1: बिल्कुल ठीक है।
3: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
0: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
3: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
0: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
4: जी सुनिए।
2: हाँ।
4: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
2: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
4: हाँ।
2: मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
4: अरे अरे, इसको भी डालो।
2: हाँ,
4: ये देखो
2: देखो देखो कितना छोटा था ना ये पौधा, कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
4: प्यारा लग रहा है।
3: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए

0: उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं, तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
1: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
2: देखा थे मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे, और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
3: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया। सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
2: ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
4: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
5: हमारा शहर हो
0: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था, उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8,000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
1: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
6: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
0: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
7: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
0: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8,000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसे सदा याद रखा जाएगा।
8: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगो, ध्वनि अंकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
0: पेड़ों की हरियाली।

ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसी सुनाई दे रही है इधर से, लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: वनों के होते हैं कितने प्रकार? कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश। बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच्ची तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है, अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। दिन के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार हैं। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
2: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is holding talks with President of Cyprus Nikos Christodoulides in New Delhi to further strengthen bilateral cooperation. We now go over live to the Prime Minister's address.
2: और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं. फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी. यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी.
3: Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting of the Council of Ministers in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said the meeting involved exchange of perspectives and best practices related to boost ease of living, ease of doing business and further reforms in order to realize the shared dream of a Vikasit Bharat. The Election Commission today announced the schedule for the biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states. Former Prime Minister H.T. Devegowda, Union Ministers George Kurian and Ravneet Singh are among the members who are completing their terms next month. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will fall vacant. According to the Commission, the notification will be issued on the 1st of next month and the polling will be held on the 18th of June. The counting of votes will take place on the same day. The Commission also announced the Rajya Sabha by-poll for 1 seat each in Maharashtra and Tamil Nadu. The seats are vacated by Maharashtra Deputy Chief Minister Sunetra Ajit Pawar and AIADMK MP CV Shanmugam, who were recently elected to the State Assembly. The by-poll will also be held on the 18th of next month. Union Home Minister Amit Shah has said the government will launch the Smart Border Project to make the entire border even more impregnable. Addressing the investiture ceremony of BSF in New Delhi today, Mr. Shah said the project will be equipped with drones, radars, cameras and other technical resources. He said the work is progressing towards developing an impregnable border security framework by integrating all types of technologies into the Border Security Force's security system under the Smart Border concept within the coming 1 year. The Home Minister said the security of international borders must be viewed as a broader territorial responsibility rather than an isolated task to tackle the challenges. Mr. Shah said despite vulnerabilities and multiple challenges, the force has consistently upheld the nation's pride.
4: Padma Vibhushan. BSF was established under the leadership of Padma Vibhushan K.F. Rustam. Since the establishment of BSF, the force has worked to ensure the security of the borders of the entire country.
5: Nishchint karne ka kaam Seema Suraksha Bal ke jawanon ne kiya hai.
3: Lok Sabha Speaker Om Birla has congratulated Thiruvanchur Radhakrishnan on being elected as the Speaker of the 16th Kerala Legislative Assembly. In a social media post, Mr. Birla expressed confidence that Mr. Radhakrishnan's vast legislative experience and deep understanding of parliamentary traditions will guide the House with fairness, wisdom and dignity. He wished him a productive and successful tenure ahead. A Delhi court today deferred its decision till the 9th of June on framing charges against Rashtriya Janata Dal chief Lalu Prasad Yadav, his family members and others in the alleged money laundering case linked to the IRCTC hotel scam. The case is being investigated by the Enforcement Directorate and is based on a predicate offence registered by the Central Bureau of Investigation. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% higher in afternoon session today. The Sensex climbed 492 points to 75,675. And with that, we end this news bulletin.
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड की 2 सीटों समेत देश के 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित। शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश की खाली हो रही सीटों के लिए 18 जून को होगा मतदान। रांची की होटवार जेल में महिला कैदी की कथित यौन शोषण मामले में हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। डीजीपी से दो हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। झारखंड बिजली वितरण निगम का कड़ा निर्देश। अब कार्यपालक अभियंता की मंजूरी से ही दिनभर में केवल 2 से 3 बार ही लिया जा सकेगा संक्षिप्त शटडाउन। पाकुड़ की झीकरहट्टी पूर्वी पंचायत को मिलेगा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। महिला सशक्तिकरण और रोजगार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए हुआ चयन। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में जमशेदपुर एफसी ने उड़ीसा एफसी के साथ खेला गोल रहित ड्रॉ। 5वें स्थान के साथ किया सीजन का समापन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बैठक में जीवन की सुगमता और व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने वाले दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। साथ ही विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। इसमें झारखंड की 2 सीटें भी शामिल हैं। अधिसूचना 1 जून को जारी होगी और मतदान 18 जून को कराया जाएगा। झारखंड के अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीटों के लिए चुनाव होगा। झारखंड की बात करें तो चुनाव आयोग की सूची के मुताबिक राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और शिबू सोरेन का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। रांची के होटवार जेल में महिला कैदी के कथित यौन शोषण मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी से 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जबकि जुडिशियल इंक्वायरी अभी जारी है। वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होगी।
7: इस मामले को जनहित याचिका में तब्दील करते हुए शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार की ओर से यह बताया गया कि इस मामले की पूरी छानबीन जारी है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 8 जून का समय निर्धारित किया गया है।
6: झारखंड उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि केवल दोस्ताना लेनदेन को कानूनी रूप से वसूले जाने योग्य कर्ज नहीं माना जा सकता, इसलिए फ्रेंडली लोन कानून पर एनआई एक्ट लागू नहीं होता। कोर्ट ने बिना वैध अनुबंध किए गए 2 लाख रुपए के लेनदेन से जुड़ी अपील को खारिज कर दिया। झारखंड बिजली वितरण निगम ने निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बिना अनुमति फीडर शटडाउन लेने पर रोक लगा दी है। नए आदेश के अनुसार जिला मुख्यालयों में अब केवल कार्यपालक अभियंता की अनुमति से ही शटडाउन लिया जा सकेगा। निगम ने दिन में केवल 2 से 3 बार ही संक्षिप्त शटडाउन की अनुमति दी है। पाकुड़ जिले के झीकरहट्टी पूर्वी पंचायत को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है। महिला सशक्तिकरण, रोजगार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस पंचायत का चयन दीनदयाल उपाध्याय सतत विकास पुरस्कार के लिए हुआ है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने बताया कि यह पंचायत जिले के अन्य पंचायतों के लिए प्रेरक बनेगा।
8: एक रिप्रेजेंटेटिव पंचायत के तौर पे ये उभर के आया, अन्य पंचायतों को इसी के तर्ज पे महिला सशक्तिकरण उससे रिलेटेड फिर विकास की दिशा में मोड़ने का कार्य करने के लिए हम लोग इसको एज एन एग्जाम्पल यूज करेंगे। आगे हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स डिसाइड किए हैं जिसमें कि महिलाओं के समूह को इंक्लूड किया जाए।
6: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और MDI गुड़गांव ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य सेल के भविष्य में लीडर्स तैयार करना है। इसके तहत संयुक्त रिसर्च केस स्टडीज और कस्टमाइज लीडरशिप प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर सरायकेला खरसावां के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने चालीयामा स्टील प्लांट और स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए स्ट्रीट लाइट, चेतावनी बोर्ड और दो नए चेक पोस्ट बनाने का निर्देश दिया। साथ ही अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNewsRanchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग में जिला क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर भाजपा सांसद मनीष जायसवाल और सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सांसद मनीष जायसवाल ने विधायक को लक्ष्मण बताते हुए मर्यादा में रहने की सलाह दी।
9: तो उसका पैर भी पकड़ने के लिए तैयार रहेंगे जो बंद कराएगा, उसका कोई नहीं बंद करा सकता है। छोटे भाई को बड़ा पहले मानना पड़ेगा। मतलब अगर छोटा भाई उद्दंड हो, उद्दंडता करेगा, बड़ा भाई जाकर के पैर हाथ पड़ करके उसको बनाएगा, ऐसा राम हम नहीं है। और लाखों क्रिकेट फैंस का इसको दुआ है, कोई बंद नहीं करा पाएगा।
6: वहीं विधायक ने पलटवार करते हुए सांसद को धृतराष्ट्र की संज्ञा दी और जिला क्रिकेट एसोसिएशन पर गंभीर आरोप लगाए।
10: स्टेडियम अच्छा बना, लोगों ने अपना वर्चस्व बनाया, अपना एसमैन वहां खड़ा किया गया, जो उनका इच्छा होगा वही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये हजारीबाग स्टेडियम में चलने लगा, ये स्पोर्ट्स के लिए घातक है। हर जगह हजारीबाग में लोगों की सहभागिता होना चाहिए। लड़ाई इस चीज का हो रहा है कि किसी का बकौती नहीं है।
6: हजारीबाग पुलिस ने इचाक थाना क्षेत्र के लोटवा जंगल में छापेमारी कर ब्राउन शुगर तस्करी नेटवर्क का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 52 ग्राम ब्राउन शुगर और 7 मोबाइल बरामद किए हैं। एसपी अमन कुमार ने बताया कि आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए यह काला कारोबार चला रहे थे।
11: 52 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 5 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। ये सभी इचाक थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये जो नेटवर्क है ये चतरा से लिंक्ड है और जहां से ये सामान लाता था उसके संबंध में हम लोगों को जानकारी मिली है, जिस पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई वो करेंगे।
6: पलामू जिले के नक्सल प्रभावित छतरपुर में ग्रामीणों ने आपसी एकजुटता की मिसाल पेश करते हुए एक अनाथ बेटी की शादी कराई। पटादोहर निवासी बर्ती कुमारी की शादी अर्जुन सिंह से तय कर ग्रामीणों ने इसे संपन्न कराया। इस विवाह का पूरा खर्च पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल और मुखिया पूनम जायसवाल ने उठाया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,75,000 रुपये प्रति किलो है। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में जमशेदपुर एफसी ने ओडिशा एफसी के खिलाफ 0-0 से ड्रॉ खेलकर अपने फुटबॉल सीजन का समापन किया। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस मुकाबले में दबदबा बनाने के बावजूद टीम गोल नहीं कर सकी। इस ड्रॉ के साथ जमशेदपुर 22 अंकों के साथ लीग में 5वें स्थान पर रही। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड की 2 सीटों समेत देश के 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित। शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश की खाली हो रही सीटों के लिए 18 जून को होगा मतदान। रांची के होटवार जेल में महिला कैदी के कथित यौन शोषण मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। डीजीपी से 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। झारखंड बिजली वितरण निगम का कड़ा निर्देश, अब कार्यपालक अभियंता की मंजूरी से

0: ही दिन भर में केवल 2 से 3 बार ही लिया जा सकेगा संक्षिप्त शटडाउन। पाकुड़ की झिकराहट्टी पूर्वी पंचायत को मिलेगा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। महिला सशक्तिकरण और रोजगार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हुआ चयन। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में जमशेदपुर एफसी ने ओडिशा एफसी के साथ खेला गोल रहित ड्रॉ, 5वें स्थान के साथ किया सीजन का समापन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुने उपशास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम अनुरंजनी। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे सिप्रा बोस को। इनसे सुनते हैं ये ठुमरी। राग है मिश्र खमाज और बोल है साजन अबघर आजा।

उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी में आज हम सुन रहे हैं सिप्रा बोस को। आइए सुने ये दादरा, बोल है खातिर से या लिहाज से।

आज की अनुरंजनी में हम सुन रहे थे सिप्रा बोस को। अब इसी के साथ हमारी आज की अनुरंजनी संपन्न हुई।

श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे स्वर यात्रा के 90 वर्ष पर मनपुरन नायक से ओले मिंज की बातचीत आप सुन सकते हैं दिन के 3 बजे।

0: अभी हम सुन रहे थे सुगम संगीत। दिन के 2 बज रहे हैं, अब आप सुनेंगे मिड डे न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi holds discussion with President of Cyprus Nikos Christodoulides in New Delhi, says India and Cyprus aim to double investment flows in next 5 years. Election Commission announces biennial elections for 24 Rajya Sabha seats from 10 states on the 18th of next month. Supreme Court to hear plea against CBSE's 3-language compulsory study for Class 9 students from July the 1st. IMD issues red alert for severe heat wave over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad this evening. India and Cyprus exchanged several agreements in different areas, including establishing a joint working group on counter-terrorism, innovation and technology, higher education and research, and cultural cooperation in New Delhi today. Prime Minister Narendra Modi held discussion with President of Cyprus Nikos Christodoulides on strengthening bilateral cooperation across a wide spectrum of areas. They also exchanged views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. In his joint statement, Prime Minister Narendra Modi said the friendship between India and Cyprus is not only strong, but also future-oriented. He said over the past decade, investment from Cyprus to India has nearly doubled. He said with the India-European Union Free Trade Agreement, numerous new possibilities have emerged and the trust between the two countries has increased. Mr. Modi added that India and Cyprus aim to double investment flows again in the next 5 years.
2: भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड ड्यूरिंग द मीटिंग दे ऑल्सो डिस्कस्ड ग्लोबल इश्यूज।
2: भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: President of Cyprus Nikos Christodoulides said the bilateral relations between the two nations and the European Union-India relations have made leaps of progress over the last year.
3: I feel exceptionally honored and privileged to be in Delhi for this state visit, and we stand together in marking another milestone in further strengthening the long-standing bonds between our two countries and in deepening and expanding our strategic cooperation.
1: Earlier in the morning, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on the President of Cyprus. In a social media post, Dr. Jaishankar said he appreciated the positive sentiments and guidance for strengthening the bilateral ties between the two nations and India-EU cooperation. The President of Cyprus is on a 4-day visit to India. He will meet President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan this evening. Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting of the Council of Ministers in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said the meeting involved exchange of perspectives and best practices related to boost ease of living, ease of doing business and further reforms in order to realise the shared dream of a Vikasit Bharat. The Election Commission today announced the schedule for the biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states. Former Prime Minister H.D. Devegowda, Union Ministers George Kurian and Ravneet Singh are among the members who are completing their terms next month. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will fall vacant. A According to the Commission, the notification will be issued on the 1st of next month and the polling will be held on the 18th of June. The counting of votes will take place on the same day. The Commission also announced the Rajya Sabha by-poll for one seat each in Maharashtra and Tamil Nadu. The by-poll will also be held on the 18th of next month. The Supreme Court today agreed to hear next week a plea challenging the new CBSE policy making three language study compulsory for Class 9 students from July the 1st. Senior Advocate Mukul Rohatgi mentioned the matter before a bench headed by Chief Justice Suryakant and comprising Justices Joy Mallya Bagchi and Vipul M. Pancholi. He said the PIL had been filed by students, teachers and parents. He said the new CBSE policy made two additional languages compulsory in Class 9 and will create chaos. He urged the court to list the matter on Monday. The Chief Justice said the case would be taken up next week during the miscellaneous hearing week. The Union Health Ministry has notified the inclusion of the drug pregabalin under Schedule H1 of the drugs rules to strengthen regulation and prevent misuse, particularly among youth. The decision has been taken in view of reports received from certain states regarding the misuse and abuse of pregabalin. The drug, which is prescribed for the treatment of chronic pain, neuropathies and certain neurological conditions, has reportedly been misused for its sedative and dissociative effects. The ministry stated that recent seizures of illegally stocked and unauthorizedly sold pregabalin have been reported from some parts of the country. The revised classification mandates that pregabalin can be sold only against a valid prescription issued by a registered medical practitioner. In Kerala, seven-time Congress MLA Trivanchur Radhakrishnan has been elected Speaker of the 16th Kerala Legislative Assembly in a historic three-cornered contest. The election saw candidates from the ruling UDF, the left and the BJP-led NDA for the first time in the Assembly's history. More from our Thiruvananthapuram correspondent.
4: Ruling UDF candidate Thiruvanchur Radhakrishnan was elected as Speaker with 101 votes in the 140-member assembly. Opposition LDF candidate A.C. Mohideen secured 35 votes, while BJP candidate B.B. Gopakumar got 3 votes. This is for the first time the BJP has contested Speaker election in Kerala. The election for the Deputy Speaker will be held on June 1st. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
1: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Union Home Minister Amit Shah has said the government will launch the Smart Border project to make the entire border even more impregnable. Addressing the investiture ceremony of BSF in New Delhi today, Mr. Shah said the project will be equipped with drones, radars, cameras and other technical resources. He said the work is progressing towards developing an impregnable border security framework by integrating all types of technologies into the Border Security Force's security system under the Smart Border concept within the coming 1 year. Mr. Shah said despite vulnerabilities and multiple challenges, the force has consistently upheld the nation's pride.
5: Padma Vibhushan.
6: BSF was established under the leadership of Padma Vibhushan K.F. Rustam. Since the establishment of BSF, the force has worked to ensure the security of the borders of the entire country.
5: Nishchint karne ka kaam Seema Suraksha Bal ke jawanon ne kiya hai.
1: West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today met President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. Mr. Adhikari also met Defence Minister Rajnath Singh. In a social media post, Mr. Singh said, the West Bengal Chief Minister is a person of rich political and legislative experience. He expressed confidence that Mr. Adhikari will work towards taking West Bengal to greater heights. Minister of State in the Department of Space, Dr. Jitendra Singh, has expressed happiness as India's Chandrayaan 3 lunar mission has been honoured with the 2026 Goddard Astronautics Award by the American Institute of Aeronautics and Astronautics. In a social media post, Dr. Singh said the Chandrayaan 3 mission continues to make the nation proud. He noted that the mission has received the highest recognition in astronautics for its historic soft landing near the moon's south pole and its contribution to future lunar exploration. A Delhi court today deferred its decision till the 9th of June on framing charges against Rashtriya Janata Dal chief Lalu Prasad Yadav, his family members and others in the alleged money laundering case linked to the IRCTC hotel scam. The case is being investigated by the Enforcement Directorate and is based on a predicate offence registered by the Central Bureau of Investigation. The Delhi High Court today granted 3-day interim bail to Umar Khalid in the UAPA case linked to the alleged larger conspiracy behind the 2020 Northeast Delhi riots. A division bench of Justice Pratibha M. Singh and Justice Madhu Jain allowed his release from June the 1st to June the 3rd on strict conditions. The High Court said it was taking an empathetic view of the matter and granted interim bail for 3 days to allow Khalid to spend time with his mother. The Quad Foreign Ministers meeting will be held in New Delhi on the 26th of this month. At the invitation of External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and Secretary of State of the United States Marco Rubio are arriving in New Delhi to participate in the meeting. The Ministry of External Affairs said in keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, the ministers will build on discussions held in Washington, D.C. on the 1st of July last year. The Intermeteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heat wave to severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. An orange colour warning for heat wave conditions has been issued over Delhi, Haryana and Chandigarh. Heat wave conditions are also expected over Bihar, Chhattisgarh, Odisha, Punjab, Rajasthan, Telangana and Andhra Pradesh during the next 2 days. IMD has forecast hot and humid weather over Gangetic, West Bengal and Odisha till tomorrow. The weather agency also forecast heavy rainfall in parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal and south interior Karnataka till tomorrow. The weather in Himachal Pradesh has changed its course today and intermittent rainfall has been continuing at several places across the state since morning. This change in weather has brought some relief to people from the intense heat.
7: Light rainfall has been recorded in various districts including the state capital Shimla as well as Chamba, Kangra, Kullu, Hamirpur and Lahol Spiti, leading to a slight drop in temperatures across the state. According to the Meteorological Centre Shimla, this change in weather is due to the activation of a western disturbance. The centre has issued an orange alert for heavy rain accompanied by thunderstorms and strong winds at multiple locations in 7 districts Kullu, Shimla, Chamba, Una, Hamirpur, Mandi and Bilaspur over the next 48 hours. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
1: In Malaysia Masters, Indian shuttler Ashmita Chaliha's campaign came to an end after she lost to former European Games champion Lene Kierfeldt of Denmark in the women's singles quarterfinals today. With Chaliha's exit, India's challenge also concluded at the BWF Super 500 tournament. Chaliha, 71st in the badminton rankings, won the opening game but eventually went down against the 23rd ranked opponent 23-21, 18-21, 11-21 in 61 minutes. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad today. The match will start at 7:30 p.m. Earlier, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night, chasing a target of 230 runs set by Gujarat Titans. Chennai Super Kings were all out for 140 in 13.4 overs. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% higher in afternoon trade today. The Sensex climbed 535 points to 75,718, while the Nifty rose 154 points to 23,808 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds discussion with President of Cyprus Nikos Christodoulidis in New Delhi, says India and Cyprus aim to double investment flows in next 5 years. Election Commission announces biennial elections for 24 Rajya Sabha seats from 10 states on 18th of next month. Supreme Court to hear plea next week against CBSE's 3-language compulsory study for class 9 students from July 1st. IMD issues red alert for severe heat wave over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad this evening. And with that, we end the midday news.
8: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले पांच वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन पहली जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले पांच वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
8: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
2: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
8: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
2: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
8: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
9: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है, मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
8: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
10: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
8: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
11: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
8: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव दो दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के दूसरे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया।

0: संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
2: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोराइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
3: कहाँ
6: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
1: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती में सभी का स्वागत है। सबसे पहले ये गाना हरिहरन की आवाज़ में, फिल्म का नाम है रोज़ा।

फौजी भाई सुन रहे हैं फिल्म संगीत का अपना कार्यक्रम जय भारती। जय भारती में ये अगला नगमा, इसे हमने लिया है फिल्म जोधा अकबर से।

0: और इस गीत के साथ ही अब आज का हमारा फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद्य बॉर्डर की हम सुरक्षा

0: जागरूकता की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन रडार आधुनिक कैमरास और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद महागठबंधन ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि दोनों सीटों के आंकड़े महागठबंधन के पक्ष में है। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्यसभा की दोनों सीटों पर महागठबंधन मजबूत स्थिति में है।
2: बिल्कुल, ये दोनों सीट महागठबंधन के हाथ में होगा और जहां तक एलायंस पार्टनर को कौन सी सीटें मिलेंगी इस संदर्भ में मैं कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं कि बता सकूंगा कि ये मामला माननीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी इस बात को तय कर।
1: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में भोजपुरी मगही मैथिली और अंगिका को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में शामिल करने के मुद्दे पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। इस मामले को लेकर आज हुई 5 मंत्रियों की हाई लेवल कमेटी की बैठक में फैसला नहीं हो सका। बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं के मौजूदा भाषा पैटर्न विशेषकर पार्ट 2 के नियमों पर गंभीर चर्चा हुई। अब इस पूरे भाषाई विवाद पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले पर निर्भर माना जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली नई सीबीएसई नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। उन्होंने कहा कि नई सीबीएसई नीति के तहत कक्षा 9 में 2 अतिरिक्त भाषाओं को अनिवार्य कर दिया गया है जिससे अव्यवस्था उत्पन्न होगी। उन्होंने न्यायालय के मामले को सोमवार को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ऊर्जा विभाग को पत्र लिखकर राज्य की खराब विद्युत व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी के बीच जनता अनियमित बिजली आपूर्ति लो वोल्टेज और बार बार ट्रांसफार्मर खराब होने की समस्या से परेशान है। रघुवर दास ने मुख्यमंत्री से इस मामले में उच्च स्तरीय समीक्षा कर तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की है। पत्र में उन्होंने राज्य सरकार से आम जनता को राहत देने के लिए बिजली व्यवस्था में शीघ्र सुधार सुनिश्चित करने की अपील की है। और अब मौसम का हाल। झारखंड में मौसम का दोहरा असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के दौरान कोडरमा रामगढ़ और रांची समेत आसपास के कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवा हल्की आंधी बिजली चमकने और बारिश की संभावना जताई है। वहीं दूसरी ओर राज्य में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी रहने का अनुमान है। पलामू गढ़वा सरायकेला और जमशेदपुर जैसे जिलों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है जिससे लोगों को उमस और चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: கல்படை கட்டணா ஸ்வயம் ஹி கட்படை பாரதிய சேனா.
1: स्वर यात्रा के 90 वर्ष पर मनपुरा नायक से ओली मिंज की बातचीत अब हम सुनेंगे.

जोहान नमस्कार। आकाशवाणी की स्थापना के 90 साल हमने पूरे कर लिए हैं। अब ये जन जन की वाणी बन चुकी है। एक दौर ऐसा भी था साथियों, रेडियो सुनने के लिए टैक्स देना पड़ता था। इस लंबे सफर में हमने सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और परस्पर संवाद के जरिए एक गौरवशाली इतिहास रचा है। जिन्होंने भी आकाशवाणी को सुना और जिन्होंने आकाशवाणी से जुड़कर अपना बहुमूल्य योगदान दिया, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी की स्थापना के 90 साल पूरे होने पर हमने एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें हम उनके अनुभवों को साझा कर रहे हैं जिन्होंने शिक्षा, मनोरंजन, सूचना, साक्षात्कार, शास्त्रीय संगीत, नाटक, लोक कला जैसी विधाओं में आकाशवाणी को अपनी सेवाएं दी और आकाशवाणी की विश्वसनीयता और लोकप्रियता में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। ऐसी शख्सियतों में आज के हमारे मेहमान हैं बहुमुखी

0: प्रतिभा संपन्न लोक कलाकार श्री मनपूरन नायक, आपने बतौर उद्घोषक आकाशवाणी रांची को अपनी सेवाएं दी। गायन, वादन, पारंपरिक नृत्य, लेखन, अभिनय, समाज सेवा से भी आप जुड़े रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में। आपका स्टूडियो तो जाना पहचाना है आपके लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं?
1: सर्वप्रथम हमारे श्रोताओं को नमस्कार और जोहार। हमारा किस्मत था सन 1999 मई महीना में जब हमने ज्वाइन किया उद्घोषक के रूप में, कार्यक्रम उद्घोषक के रूप में, उस काल से जो हमने इतनी उपलब्धियां पाई कि शायद हमको लगता है जीवन का एक सुखद घटना थी, इसको बयां करेंगे बाद में। और रह गई बात कि आज हमारे बीच हमारे जितने भी स्टाफ्स, हमारा आकाशवाणी का 90 साल हो रहा है और 90 साल में हमने तो 99 से ज्वाइन किया, उपलब्धियां बहुत पाई हैं और साथ ही साथ लेखनी कार्यक्रम भी हमने बहुत किया, यहीं पर रह करके बहुत सब उपलब्धि पाई है।
0: मेरी राय में आपको बहुमुखी लोक कलाकार कहना ज्यादा मुनासिब होगा।
1: जी जी,
0: क्योंकि आप वादन में, गायन में, लेखन में, अभिनय में, प्रशिक्षण में मांदर सम्राट के रूप में आप जाने जाते हैं। कई किताबें आपकी प्रकाशित हुई हैं। जहां तक मेरी जानकारी है 19 वर्षों तक आपने बतौर उद्घोषक आकाशवाणी रांची में अपनी सेवाएं दी और इस दरमियान भी आपकी लेखनी चलती रही, समाज सेवा के कार्य से भी आप जुड़े रहे। जितनी भी तारीफ करें, प्रशंसा करें, कम है। वैसे आपसे जानना चाहेंगे, मांदर वादक के रूप में आपने शुरुआत की थी जहां तक मेरी जानकारी है, तो कहां से आपको वो प्रेरणा मिली, कहां से आप प्रेरित हुए और लोक कलाकार के रूप में आपने झारखंड की धरती पर पदार्पण किया?
1: ओली जी, हमारा नायक समाज जो है ना, सांस्कृतिक धरोहर का एक अंग है। सर्वप्रथम तो हमारे बाबूजी, हमारे पिताजी स्वर्गीय जगन्नाथ नायक, नाम भी भगवान का है, और उन्होंने ही हमें चार वर्ष का जब मैं था उस काल से, मुझे एक कहना चाहिए कि छौ नृत्य जानते होंगे, छौ नृत्य में जो पुलिया स्टाइल जो होता है, उस स्टाइल का गणेश छौ में 4 वर्षों से ही नृत्य शुरू किया। बाबूजी हमारे ढोल बजाते थे आंगन में और वही ढोल के ताल के साथ मैं अपना नृत्य करता था। वो हमारे बाबूजी मेरे प्रेरणादायक सर्वप्रथम पूजनीय मेरे बाबूजी थे। उसके बाद हमारे गुरु जो जी लोग हुए बाद में, लेकिन पहला गुरु हमारे पिताजी थे।
0: वैसे हमें आपका एक कथन याद है कि झारखंड में खासकर नायक समाज में जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, रोता है, तो कहा जाता है कि एक कलाकार का जन्म हुआ। कहां तक सही है ये?
1: एकदम सही है। देखिए, जैसे ताल की बात, गीत की बात, नृत्य की बात जब होती है, उसमें हम कहना चाहिए कि हमारे 3 पाठ है झारखंड में, नर्तन, गायन और वादन। तो जैसे कहें, आपका नया शिशु का आगमन हमारे झारखंड में जब होता है, उस काल में आस पड़ोस के लोग को जानना भी तो है, नहीं तो बोलेंगे कहाँ से बच्चा को एडॉप्ट करके ले आया।
0: और थाली थाली भी बजाते हैं।
1: सबसे पहले जब जन्म होता है तो उसको कांसे की थाली की ताल बजाया जाता है, ठंग ठंग ठंग ठंग जो आवाज है कांसे थाली का, तो आस पड़ोस के लोग जानते हैं, उनको जानकारी होती है कि हमारे गांव में, आस पड़ोस में एक नया कलाकार आया है। और आज जो वो रोता नहीं है, वो रुदन गान करता है।
0: वाह,
1: रुदन गान करता है। रुदन गान करने के साथ ही वो कांसे की थाल घंटी बजाई जाती है।
0: अभी आपने कहा कि आपके बाबूजी बजाया करते थे और आप नृत्य करते थे
1: जी,
0: तो इसके बाद आप मंची आयोजनों तक कैसे पहुंचे?
1: मंची आयोजन तो हमारा कहना चाहिए धीरे धीरे धीरे, जब मैं मैट्रिक में रहा उस काल में हमारे साथ में मुकुंद जी आए, पद्मश्री मुकुंद नायक, वो जो हमारे नजदीकी मैंने कहना चाहिए कि रिश्ता में कुछ दमाद भी लगते हैं,
0: आपके पड़ोसी
1: पड़ोसी हो गए, हालांकि उनका घर तो कोलेबीरा में है, बोकबा ग्राम, बोलो बोकबा, उनके सानिध्य में रह करके हम लोगों ने एक टीम बनाई नागपुरी लोक गीत का, 1976 में हम लोगों ने यही आकाशवाणी में, जिस समय यह कार्यरत नहीं था, 1976 की मैं बात बता रहा हूँ, उस काल में हम लोगों ने एक टीम बनाई, टीम में लोकगीत का टीम, जिसमें हमारे साथ में 6-7 हम लोग हुआ करते थे और कुछ गीत में कुछ ताल में हम लोग संगत करते थे, जिसमें मांदर का ताल, मांदर उस काल से हमने बजाना शुरू किया जब मुकुंद जी गीत गाते थे, कोरस में हमारे उनकी मिसेज थी द्रौपदी देवी, पहरो देवी, मन कुंवर देवी का नाम सुने होंगे, वो भी लोक गायिका, बहुत सुंदर लोक गायिका है, वो थी रमेश्वर नायक, स्वर्गीय रमेश्वर नायक नहीं रहे, वो थे शिबू नायक अभी भी है, देवचरण नायक, ये सारे लोग हम लोग मिल करके ऑडिशन में 1976 में जब हम लोगों ने दिया स्वर परीक्षा, उसमें हम लोगों ने पास किया, उत्तीर्ण किया। उत्तीर्ण करने के बाद में लगातार आकाशवाणी से हम लोग का कार्यक्रम का रिकॉर्डिंग होने लगा, रिकॉर्डिंग होते होने के साथ साथ इसका ब्रॉडकास्ट होने लगा, हम लोग का मन उत्साह से भरता चला गया।
0: इस दरमियान कई उपलब्धियां भी जुड़ती गई आपके साथ, कई सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं, क्या हम जानना चाहेंगे कि साहित्यिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में ऐसी क्या क्या उपलब्धियां रही? इससे पहले हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि नागपुरी की जो पहली फिल्म थी उसमें आपने अभिनय किया था, वो कौन सी फिल्म थी?
1: सोनाकर नागपुर।
0: हाँ, सोनाकर
1: नागपुर। निर्देशक, लेखक और प्रोड्यूसर जिसको कहा जाए, निर्माता वो थे स्वर्गीय, अभी हाल में उनका देहांत हुआ, वो डॉक्टर डीएन तिवारी, धनंजय नाथ तिवारी, उनके अंतर्गत में ये पिक्चर, ये फिल्म बनी जिसमें हम लोगों ने रोल किया, और वो भी दो हमारे जो हीरो थे, हीरोज नायक, वो दोनों हमारे बेटा का, मैं एक बुजुर्ग का, उनके पिताजी के रोल में हमने ये रोल किया पात्र में।
0: वाह। और देखिए अभी नागपुरी फिल्म नई ऊंचाइयों को छू रही है।
1: उपलब्धियों के बारे में, जहाँ तक साहित्यिक उपलब्धियां में मैं जानकारी देना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले साई भक्ति रचनाएं 1993, लोकगीत और मांदर के ताल 2016,
0: देखना चाहेंगे हम वो मांदर के ताल वाली पुस्तक,
1: ये देखिए मांदर के ताल की पुस्तक,
0: शानदार नागपुरी लोकगीत और मांदर के ताल।
1: जी हाँ। उसके बाद झारखंड कर गच्छ वृक्ष, नागपुरी गीत संग्रह, ये देखिए पुस्तक भी,
0: झारखंड का गच्छ वृक्ष, नागपुरी गीत संग्रह, नागपुरी राग रागिनी पर आधारित, ये भी अनमोल है झारखंड वासियों के लिए।
1: उसके बाद झारखंड के परंपरागत वाद्य यंत्र है ना, 2025, एक झोपा मेसा कोसा फूल, एक झोपा मेसा कोसा फूल एक पुस्तक है, जिसमें आधुनिक रागों को भी हमने लिया है, भजनों को लिया है, लोकगीतों को लिया है, अपनी संग्रह किया हुआ गीत उनको डाला है, एक झोपा मेसा कोसा फूल। उसके बाद 2025, झारखंड कर साग पात और मछली, विलुप्त होता हुआ मछली, जिसमें हम लोग तो सामान्य रूप से रेहू, कतला, मिर्गल ये सब मिलता है, लेकिन जो मछली के नाम हम बताएंगे, बुदू, पोचोका, गरई, पोठी, इस सब विलुप्त होता चला जा रहा है, गेतु, उन मछलियों को हमने अपने गीतों पर, रागों पर, जितने प्रकार के राग हैं झारखंड में नागपुरी में, उस सब को मैंने गीत के रूप में डाला है।
0: वाह।
1: और साग, साग पात और मछली, साग पात, साग पात वो गंधारी साग नहीं, पालक साग नहीं, जो जंगली साग, फिरमिचा साग, फुटकल,
0: चाकोड़,
1: चाकोड़ और विभिन्न प्रकार के जो साग जो अभी विलुप्त होते चले जा रहे हैं, जो दुर्लभ भी हैं, दुर्लभ नहीं है, लेकिन उगा गई पहचान कर उनको तोड़ करके खाने का, पकाने का, खाने का, लेकिन वो भी आप धीरे धीरे, मैंने कहना चाहिए आज आधुनिक युग के लोग जो है सो उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो दवाइयाँ हैं वो किसी भी एलोपैथिक से कम नहीं है। तेतेर पालवा, तेतेर साग, कटई साग, ये सब कहाँ, दाल की जगह में जो अगर ये सब सागों का अगर उपयोग मिलाते हैं, खाते हैं, तो उनका तंदुरुस्त शरीर जो है सो तंदुरुस्त रहेगा, किसी प्रकार की बीमारियाँ नहीं होती है, ये है। और उसके बाद बारह कोसे दिया भरी, इसका अर्थ बारह कोसे दिया भरी, ये है उपन्यास मेरा, अभी लाइनअप में है, मैंने अप्रकाश है, प्रकाशित तो पुस्तकों को जिसने जिनका नाम दिया है वो अभी हमारे रांची विश्वविद्यालय में पढ़ाई हो रही है, बारह कोसे दिया भरी, इसलिए मैं लिखा कि बारह उसमें दिया चलेगा। पहले क्या था, आदिकाल के बाद सज्जुग आया, सज्जुग के बाद

0: में क्या आया, तिरता आया, तिरता के बाद में क्या आया, द्वापर आया, द्वापर के बाद में क्या आया, कलयुग आया, और कलयुग के बाद में घोर कलयुग, घोर कलयुग के बाद में अति का अंत जिसको कहा जाता है ना, वो एक बार फिर रोटेशन परिवर्तन होना निश्चित है संसार को। और उसके बाद में आखिरी में है ऐतिहासिक नगरी चुटियागढ़ का इतिहास, जहाँ से छोटा नागपुर बना वो चुटियागढ़ से ही, चुटियागढ़ से ही स्टार्ट हुआ था, छोटा नागपुर बना जिसको अंग्रेज लोग चुटिया नागपुर भी बोलते थे, छोटा नागपुर भी बोलते थे, उसके बाद में चुटिया नागपुर बोला तब चुटिया आया। ये उपलब्धियां हमारे पुस्तक है ना, और
1: एक पुरानी मंदिर भी है वहाँ।
0: हाँ, तो श्री राम मंदिर है, श्री कृष्ण जी के मंदिर है, जो पुराने मंदिर श्री राम मंदिर है 1685 ईस्वी का वो स्थापित है,
1: और एक सबसे बड़ा शिवलिंग भी है।
0: हाँ, वो हाल में है, मैंने आज से चौथा इस साल जो है उसका चल रहा है, उनका नाम है ये सुरेश्वर महादेव मंदिर, जो हमारा स्वर्ण रेखा तट के बगल में है, और जहाँ उत्तरायण नदियां बहती है ना, उस जगह मंदिर अगर स्थापित हो तो बहुत मैंने सत्य कहा माना जाता है, उत्तरायण बहती है स्वर्ण रेखा नदी, उसी जगह मंदिर है। और रह गई बात अब राजकीय सम्मान के बारे में, कुछ जानकारी मैं आपको जानना चाहता हूँ।
1: चाहेंगे वैसे सम्मान की जो फेहरिस्त आपकी है वो तो बहुत लंबी है, तो संक्षेप में हम जानना चाहेंगे, उसके बाद विदेश यात्रा पर आपके अनुभव को भी हम
0: साझा करना,
1: आम श्रोताओं के साथ साझा करने की कोशिश करेंगे।
0: जी जी जी। तो पहले राजकीय सम्मान में 2001 गुंजू महोत्सव, 2005 झारखंड सरकार के द्वारा मांदर सम्राट की उपाधि, 2007 राष्ट्रीय खेल उठवार, 2011 सद्देनोरान तिवारी स्मृति सम्मान, 2011 सेफ कैंप, 2013 युवा महोत्सव झारखंड, 2014 झारखंड सेवा रत्न, 2017 वरिष्ठ संस्कृत कर्मी, 2017 में बहुत सारा है, हनुमान सर्वागी सम्मान, 2017 डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान, 2022 झारखंड रत्न, एक झारखंड सेवा रत्न भी मिला है, जो झारखंड रत्न भी प्राप्त हुआ है, झारखंड रत्न, 2023 कला सारथी सम्मान, ये सम्मान श्री श्री रविशंकर गुरुदेव और हमारे नायिका फिल्म दुनिया की फेमस नायिका जिसको कहा जाए हेमा मालिनी, उनके कर कर्मों द्वारा बंगलोर में दी गई। उसके बाद जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान 2024, डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी कला सम्मान 2023, लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान 2024, रणविजय नाथ साधु स्मृति सम्मान 2026, झारखंड विभूति सम्मान 2025, और अभी फिलहाल झारखंड श्री अवार्ड,
1: ये तो हाल में आपको प्राप्त हुआ है।
0: जी हाँ, एक महीना पहले पूर्व।
1: चलिए, एक लंबी फेहरिस्त आपने सम्मान की बता दी, विदेश दौरों का भी हम
0: जी
1: सुनना चाहेंगे। आपने झारखंड की लोक कला और संस्कृति का प्रचार प्रसार विदेशों में भी किया
0: जी,
1: तो ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। वैसे शुरुआत किस देश से करें?
0: ओली जी, सबसे पहले तो अपना देश से, बराबर हमारे इंटरनेशनल जो ट्रेड फेयर होता है प्रगति मैदान में है ना, वहाँ बराबर हम टीम लेकर के वहाँ पहुँचते थे, और दूसरी बात है कि बराबर 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है उसमें भी हमने अभी तक में तीन या चार मर्तबे, चार बार हमने वहाँ पार्टिसिपेंट किया। ये सब मेरा लाइफ का अचीवमेंट है।
1: बिल्कुल।
0: इस तरह से चेन्नई डे, चाहे टाटा डे,
1: लगे विदेशी दौरों का भी जिक्र कर दिया जाए।
0: विदेशी कार्यक्रम में देखिए, सबसे पहले जो है हमने मनीला फिलीपींस की राजधानी मनीला, वहाँ सबसे पहले हमने गया 1989 में, 1989 में। उसके बाद ताइवान की राजधानी ताइपई हमने गया 1992 में। उसके बाद कनाडा में 1998 में। इस तरह से उसके साथ साथ एक एक दिन, दो दो दिन का कार्यक्रम हम लोगों ने फ्रांस में भी किया, हांगकांग में भी किया। इस तरह से प्राय बहुत सारा देशों में हमने भ्रमण किया, एक यहाँ का झारखंडी संस्कृति को लेकर के।
1: बिल्कुल
0: काफी एप्रिशिएट हुआ, बहुत खुश हुए लोग, कभी घोड़ा नाच लेके जाते थे, कभी

0: छह नृत्य लेके जाते थे अमेरिका में, तो हमने छह नाचा एक महीना लगातार।
1: वाह, बहुत बहुत शुक्रिया कि विदेशों में जाकर आपने झारखंडी लोक कला और संस्कृति को प्रचारित किया, प्रसारित किया और हमें गौरवान्वित किया। अब आकाशवाणी रांची में आपने ज्वाइन किया 1999 में और 19 वर्षों का कार्यकाल आपने तय किया, तो इस अवधि के दरमियान आप उद्घोषणा के अलावा, एक अनाउंसर के अलावा कई संगीत रूपक, कई नाटकों में भी भाग लिया, तो कुछ ऐसी यादें हैं आपके पास जिनको आप साझा करने चाहेंगे अपने श्रोताओं के साथ?
0: जैसे कहा जाता है ना, आलू को देख रहे हैं ना, आलू चाहे टमाटर, वो सब्जी किसी भी सब्जी में मिला दीजिए आप,
1: अच्छा लगता है।
0: उस तरह से हमने अपने को तराशा और कभी नाटकों में, कभी गीतों में, कभी नृत्यों में, कभी वाद्य यंत्रों में,
1: रूपक में भी,
0: रूपक में भी हमने
1: किया।
0: जी जी,
1: तो कुल मिलाकर हम ये माने कि आकाशवाणी रांची में 19 वर्षों का आपका कार्यकाल आपको संतुष्ट किया।
0: जी बहुत
1: और
0: संतुष्ट।
1: इस दरमियान भी आप रांची, आकाशवाणी रांची परिसर के बाहर भी लोक कला के संरक्षण, संवर्धन और विकास के प्रति कार्यरत रहे।
0: जी जी,
1: और आज भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और इन दिनों आप बच्चों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं
0: जी,
1: वादन और नृत्य
0: का। जी हाँ, वो है हमारा झारखंड कला मंदिर होटवार रांची, वो ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं, छात्राएं हैं, प्रशिक्षणार्थी हैं, उनको मैं अभी मांदर क्लास ले रहा हूँ, सिर्फ मांदर, कम से कम 150 हमारे पास में अभी
1: विद्यार्थी
0: हैं और सबों को मैं मांदर कैसे बजाया जाना चाहिए, मांदर की उत्पत्ति क्या हुआ है, मांदर का बोल क्या है, मांदर के विभिन्न प्रकार के सामग्री कौन कौन सा लगते, सारा चीज एज ए पाठ्यक्रम में हम लोगों ने हमने लगाया है, जो ये पुस्तक में सारा चीज है जो नागपुरी लोकगीत और मांदर के ताल में। उत्पत्ति के बारे में अगर हम जानकारी नहीं दें तो लोग कैसे जानेंगे मांदर क्या है, है ना। तो इस तरह से देखा जाए कि आज जो भी हमने कृति लाना चाहिए, वो कृति हमने जो पाया वो हमारा आकाशवाणी के बहुत बड़ा देन है। जब शिफ्ट ड्यूटी में मैं रहता था, शिफ्ट ड्यूटी में मुझे समय मिलता था, मैं लिखने के लिए बैठ जाता था, वो सारे आकाशवाणी के हमारे जैसे कि आप भी हैं उसमें, ओली साहब कि आप भी हैं उसमें, कि आप देखता था कि दादा क्या लिख रहे हैं, मैं लिखते चला जाता था और जितनी भी पुस्तकें हैं आपके बीच में मैं लिखा हूँ, किताब लिखा हूँ, वो सारा आकाशवाणी का ही देन है, आकाशवाणी का ही देन है। तो समय मिलता था, मैं कलम लेकर के पेपर लेकर बैठ जाता था।
1: वाह मनपुरन जी,
0: जी
1: मांदर वादन में तो आप माहिर हैं, ये सबको पता है, यहाँ मांदर रहने से हम जरूर सुनना चाहते, गायकी में अगर कुछ वानगी सुना देते तो बहुत मेहरबानी होती, वो कौन सा गाना आप सुना रहे हैं?
0: ऐसा है कि आपके समय में राग रागनी को जानने वाले लोग बहुत कम हैं, जबकि हमारे नागपुरी में अथा समुद्र राग रागनी है, अगर हम राग रागनी को नहीं जानेंगे तो मांदर का ताल कैसे बजाएंगे, और सारा राग रागनी मेरी पुस्तक में उपलब्ध है, तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि मांदर पर ही हम एक गीत सुनाना चाहेंगे। आप जो है सो बरसात में शादी विवाह का समय, आप लगन खत्म ही होने वाला है, उसके बाद जो है हमारा जो है सो अंगनई शुरू हो जाएगा, जनानी झूमर शुरू हो जाएगा, है उसी जनानी झूमर में एक अधरतिया राग है, अधरतिया,
1: हाँ हाँ,
0: आप तो जानते ही है कि पुरुष का अलग है और महिलाओं का अलग
1: है,
0: कहा कि महिलाओं में ही ज्यादा नेक जोक के गीत होते हैं, संस्कारिक गीत होते हैं, और इसमें पर्व त्योहार बार पुरुष वर्ग में मर्दाना झूमर है, तो सबसे पहले हम अंगनई में ही हम अपना महिला बहनों को, भाई बहनों को, जो भी है आप सुनाना चाहते हैं, मांदर पर ही है। देखिए प्रेम प्रसंग कैसा होता, अपने पत्नी को, पत्नी जो है अपने पति को क्या कह रही है उसका आगे गीत में ही है। हरे हाय हरे हरे चलुन धनी ले गहरा को,
1: वाह
0: यखरा में जोड़ा मांदर बजते, जोड़ा मांदर बजते चलुन धनी ले गए, अरे चलुन धनी

0: राग रागिनियों पर आप बड़े सजग हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन विलुप्त होते वाद्य यंत्रों का भी अगर आप जिक्र कर देते तो बड़ी मेहरबानी होती, और उस दिशा में लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे?
1: जैसे कि आप गूगल वगैरह में देखेंगे,
0: हाँ, टूहिला, सारंगी,
1: तो आपको बहुत कम जो विलुप्त होता हुआ जो वाद्य यंत्र है, जैसे हम लोग तीन श्रेणी में रखते हैं, एक रेतना, एक फूकना और एक पीटना, तीन श्रेणी में बांट दीजिए, पूरा वर्ल्ड का म्यूजिक को बांट दीजिए, आप संगीत को बांट दीजिए, वाद्य यंत्र को बांट दीजिए, रेतना, फूकना और पीटना। उसमें देखिए हमारे यहाँ रेतने में सारंगी तो अभी हल्का फुल्का है, जिसमें रेतने वाला में अब टोहिला नहीं मिल रहा है आपको, रेतने वाला में एकदम विलुप्त है, दुर्लभ है। केंद्रा नहीं मिल रहा, केंद्रा तो पूछने से भी लोग नहीं बताते हैं केंद्रा क्या है, व्हाट इज द केंद्रा, वो भी नहीं बता पाता है। तो ये सब विलुप्त होते जा रहा है, जिससे कि आज वेस्टर्न म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया है वो सब इसी का बदौलत तैयार किया गया है, देख देख कर।
0: तो इनके संरक्षण के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
1: ऐसे हम लोगों ने बार बार झारखंड सरकार से हमारा निवेदन किया, एक बार पिछले साल 2023 में हमने इसका वर्कशॉप कराया, 7 दिनों का वर्कशॉप कराया, जिसमें विलुप्त होता हुआ वाद्य यंत्रों के बारे में लोगों को जानकारी दी गई, और आगे भी हम लोग चाहते हैं कि ये विलुप्त होता हुआ जो हमारा दुर्लभ वाद्य यंत्र है उसको पुनः स्टैंड किया जाए, उसको खड़ा किया जाए।
0: चलिए, बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो आपने आकाशवाणी में बिताए 19 वर्षों के कार्यकाल में इतना सारा काम किया,
1: घोषणा
0: के अतिरिक्त शिफ्ट ड्यूटी के अलावा, और आज भी आप लगातार लोक कला के संरक्षण, संवर्धन और विकास के प्रति सजग हैं, बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मनपुरन जी, वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, हमने बहुत लंबी बातचीत की, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मनपुरन जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ आते रहिएगा और मुलाकातें होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार।
1: जोहार।
2: स्वर यात्रा के 90 वर्ष पर मनपुरन नायक से ओले मिंच की गई बातचीत अभी हम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आयुष ने फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम रांची मेलोडीज़।

रांची मेलोडीज में ये पहला नगमा हमने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गाने को हमने लिया था फिल्म लव इन टोक्यो से। बोलो को लिखा था हसरत जयपुरी ने, धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। तीन देवियाँ, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाएंगे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मजरू के बोल हैं और सचिन देव बर्मन का संगीत।

मृत कृष्णा फिल्म का गीत अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत और संगीत था शंभू सेन का। फिल्म संगीत के कार्यक्रम रांची मेलोडीज में आइए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म चित्रलेखा का ये गाना। साहिर के बोल हैं और रोशन का संगीत।

आइए सुने मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म लाल पत्थर का ये गाना। बोलो को लिखा है हसरत जयपुरी ने, धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

0: संपन्न हुई आज की रांची मेलोडीज। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आकाशवाणी के रांची केंद्र से हम बोल रहे हैं। अब प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद महागठबंधन ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि दोनों सीटों के आंकड़े महागठबंधन के पक्ष में हैं। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली नई सीबीएसई नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। मॉनिटर लिजर्ट के अंगों की अवैध तस्करी मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता राजीव रंजन मिश्रा उर्फ चुन्नू मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। रांची सिविल कोर्ट ने आज उन्हें और उनके बेटे अविनाश रंजन को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि विलुप्त प्रजाति के पशु के अंगों की तस्करी के आरोप में राजीव रंजन मिश्रा और उनके बेटे अविनाश रंजन और अरुण राम को गिरफ्तार किया गया था। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों और लेवी वसूली के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कोल कंपनियों से लेवी मांगने, धमकी देने और आगजनी की घटना में

शामिल जेजेएमपी के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब हम सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम। कंपेयर है फौजिया तजई और मोहम्मद हिदायतुल्ला। प्रस्तुति है प्रशांत गौरव की।

0: आकाशवाणी रांची से नशर हमारे उर्दू प्रोग्राम में हमारे तमाम सामेईन का दिली खैर मकदम है। सामेईन को फौजिया का प्यार भरा आदाब। सामेईन, आज के इस उर्दू प्रोग्राम में आपसे रूबरू है आपकी दोस्त फौजिया और हमारे साथ हैं हमारे साथी।
1: मैं आपका दोस्त हिदायतुल्ला। आदाब फौजिया।
0: आदाब।
1: और कैसे हैं?
0: बखैर हूँ और उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे।
1: बिल्कुल फौजिया, तो बगैर ताखीर किए हुए हम बात करेंगे कि आज किन किन मौजूआत के ऊपर हम अपने सामेईन के सामने रूबरू हो रहे हैं।
0: हम हमेशा ही अपने प्रोग्राम में ऐसे उनवान पे बात करते हैं जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत खास होते हैं।
1: ये कहा जाए फौजिया की जनरल नॉलेज की भी बातें हो जाती हैं।
0: तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी के बारे में जो 22 मई को है।
1: जी, जिसे हम उर्दू में हयातियाती तनाओं के आलमी दिन कहते हैं और इसी को फौजिया हम अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस भी कहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद 24 मई को है हमारा कॉमनवेल्थ डे, साझा कोशिशें साझा खुशहाली।
1: बिल्कुल, हम तमाम लोगों की कोशिशों की वजह से ही हम एक खूबसूरत फिजा की और माहौल की बुनियाद रख सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। फिर 25 मई को हम बनाते हैं इनकलाबी रहनुमा रास बिहारी बोस की जयंती। और 24 मई को पुण्यतिथि है हमारे तरक्की पसंद शायर जिनका नाम मजरूह सुल्तान पूरी। सामेईन, आज हम 22 मई के हवाले से एक इंतहाई अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बैन अल-अक़वामी जीवियत का दिन। इस दिन का मकसद यह है कि हम अपने गर्दोपेश की हैरत अंगेज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अहमियत को समझें और इसके तहफ्फुज़ के लिए आवाज उठाएं।
1: फौजिया, हमारी जमीन पर लाखों पौधे, जानवर, कीड़े और माइक्रोब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये तमाम मिलकर एक मतवाजुन माहौल बनाते हैं। जब हम जंगल काटते हैं, नदियों को गंदा करते हैं या प्लास्टिक से माहौल को आलूद करते हैं तो हम न सिर्फ चिड़ियों और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि अपने मुस्तकबिल को भी खतरे में डालते हैं।
0: बिल्कुल। और हिदायतुल्ला, पता है 2026 की थीम क्या है? एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, यानी मकामी सतह पर एक्शन, आलमी सतह पर असर है। इसका मतलब यह है कि हर एक घर, स्कूल, मोहल्ले और शहर में हम माहौल के तहफ्फुज के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सिर्फ साइंस का मौजू नहीं, ये हमारे जिंदगी का मौजू है। इसे बचाना, इसका एहतराम करना और इसके साथ हम आहंग रहना ही हमारी असल कामयाबी है। आज चलो हम ये अहद करें कि हम अपनी छोटी सी दुनिया में भी माहौल के तहफ्फुज को अव्वलीन तरजीह देंगे।
0: और सामीन, हम ये दुआ करते हैं कि हम अपनी हिकमत, शऊर और जिम्मेदारी अदा करें। हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी एक साफ, सब्ज और पुरसलामत दुनिया छोड़ सकें।
1: बिल्कुल, हयाती तनाओं के तहफ्फुज़ के लिए जंगलात की हिफाजत, आलूदगी में कमी, पानी और जमीन के वसाइल का जिम्मेदाराना इस्तेमाल, जंगली हयात के मस्कन बचाना और पायदार ज़राअत अपनाना जरूरी है। आम

0: 1942 में बरतानवी हिंदुस्तानी फौज के पकड़े हुए एक फौजी ऑफिसर कप्तान मोहन सिंघे के जेरे कमान आजाद हिंद फौज बनाने की गर्ज से मजलिस अमल के सदर मुंतखब हुए। 1943 में उन्होंने आजाद हिंद फौज की क्यादत सुभाष चंद्र बोस के सुपुर्द कर दी। फिर जापान वापस आए और 21 जनवरी 1945 को टोक्यो में आपकी वफात हो गई।
1: हिदायतुल्लाह, बातें बहुत सारी हो गई हैं और अब हमारे स्टूडियो में मधु हैं मोहतरमा मासूमा परवीन। सामईन, आइए मकाला के तहत समाप्त फरमाते हैं मोहतरमा मासूमा परवीन से उनका मकाला। मकाले का उन्वान है नजरुल की शायरी, उर्दू और बंगला अदब का हुस्न।
2: 19वीं सदी खत्म हो रही थी, हिंदुस्तान में सियासी बेदारी के आसार जाहिर हो रहे थे। चंद ही साल में बंगाल में तकसीम बंगाल के खिलाफ तहरीक शुरू हो गई। बरतानवी हुकूमत ने ये तकसीम 1905 में नाफिस की थी। हिंदुस्तान में समाजी बेदारी के लिए राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद जैसी कदावर शख्सियात ने समाज में फैली हुई बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। इसी जमाने में बंगाल की शरजमीन में एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ जिन्हें हम काजी नजरुल इस्लाम के नाम से जानते हैं। वो 24 मई 1899 को मगरीबी बंगाल के जिला बर्दवान के गांव चुरलिया में पैदा हुए। वो मुस्लिम काजियों के खानदान में पैदा हुए जहां खुशहाली थी। मुगल बादशाह ने उनके खानदान को एक जागीर भी अता की थी। नजरुल इस्लाम जब 15 साल के हो गए थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उन्होंने पढ़ाई का आगाज मकतब से किया। वह दीनी उलूम से फारिग होकर मकामी मस्जिद में मुअज्जिन के पेशे से वाबस्ता हो गए। कुंबे का माआशी बोझ उठाने के लिए उन्हें तरह तरह की मुलाजमत इख्तियार करनी पड़ी। उन्होंने गांव के मकतब से लेकर लोअर प्राइमरी का इम्तिहान पास किया था और वही मुदर्रिस भी रहे। इसके बाद वो बतदरीज देहाती लोक गीत पार्टी के लिए लिखते रहे। इसके बाद उन्होंने रेलवे में मुलाजमत अख्तियार कर ली। मुफलिसी की वजह से उनकी बाकायदा तालीम ना हो सकी, लेकिन खुददाद सलाहियत के मालिक थे। उनकी पहली नज्म अगस्त 1919 में छपी। मशरक वस्ता में पहली आलमी जंग के दौरान में बरतानवी अफवाज के लिए भी काम किया। शहर कलकत्ता में अखबार के लिए सहाफत का काम किया। बागी शायर विद्रोही कवि कहलाए। विद्रोही कवि भांगुरदान धूम केतु जैसे फनी तख्लीकात किए। तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया, जेल भी गए। काजी नजरुल इस्लाम एक बंगाली शायर, मुसन्निफ मौसिकी का और तहरीक पसंद थे। उन्हें बांग्लादेश का कौमी शायर करार दिया गया। नजरुल इस्लाम के नाम से शोहरत याफ्ता नजरुल इस्लाम हिंदुस्तानी इस्लामी नुश्ता शानिया के लिए अपनी तहरीक चलाई और फासिज्म के खिलाफ काम किया। समाजी मुसावात के लिए दम भरने वाले नजरुल इस्लाम को बागी शायर के खिताब अवाम से नवाजा गया। चूंकि नजरुल इस्लाम मौसिकी के भी दिलदादा थे, उन्होंने उस पर भी काम किया और शोहरत यहाँ तक हुई कि बांग्लादेश के हुकूमत ने उन्हें अपना कौमी शायर का ऐलान किया। काजी नजरुल इस्लाम बांग्लादेश के कौमी शायर हैं, उमूमन बागी और इनकलाबी शायर के तौर पर मशहूर हैं। उसके अलावा वो एक अजीम मौसिकार और फलसफी भी हैं। बांग्लादेश में उनकी वही हैसियत है जो हिंदुस्तान में महात्मा गांधी को हासिल है। काजी साहब अपने भूले हुए माजी को याद करते हुए ताबनाक मुस्तकबील को सोचते थे। आज़ादी की जिद्दोजहद, खुसूसन मुसलमानों की बेदारी के सिलसिले में नजरुल इस्लाम के नगमों ने जो काम किया वो यादगार है। इस लिहाज से वो इकबाल से बहुत करीब हैं और कौमी रहनुमाओं के सफ में नजर आते हैं। उनकी शोहरत का आगाज

0: वो बंगला के बागी शायर मशहूर हुए। उन्होंने एक तरफ जुल्मों वर्नादवारी के खिलाफ आवाज उठाई तो दूसरी तरफ बंगला शायरी की रिवायती उसलूब से बगावत की, और दोनों हैसियतों से उनकी आवाज इनकलाब आफरी साबित हुई। उनके जोश हरीत में डूबे हुए आवाम के दिलों तक पहुंचने वाले नगमे मुल्क की एक कसीर आबादी के लिए सामान्य बेदारी बनी। नजरुल इस्लाम का मसगला ज्यादातर शायरी और मौसीकी रहा, और यही उनका जरिया माश भी था। उन्होंने नज्म व नसर की 30 किताबें लिखीं, जिनमें 6 जब्त कर ली गईं। उनकी किताबों की फहरिश्त हस्ब ज़ेल हैं: अग्नि बीना, जलता हुआ सितार, दोलन चाया जर्द फूल, बश्र बीनी जहरीली बांसुरी, भंगुर गुन तबाही का गीत, पुराने शिखा तबाही का शोला, चीना नात इंडियन नगमा, साम्यावादी मुसावात का हामी, फन्नी नाशा नागफनी, सात भाकी चांपा सात भाई, सानहा मजमुआ, शीस सौगात आखिरी पेशकश, पराया लांकर इनकलाब अजीम, तम नमस्कार वगैरह। इसके अलावा गीत, तराजुम, कहानी, नॉवेल, ड्रामा, मजामिन और फिल्म स्क्रिप्ट पर मुश्तमिल कई किताबें शाया हुई। उनकी एक मशहूर नज्म कुछ इस तरह से है: ए सत्तार ए गफ्फार, कर दे बेड़ा पार, दरिया पहाड़ जंगल, करते हैं रोज मंगल, जमी वो आसमां के जर्रे जर्रे का अकीदा है, तू है पालनहार, तू है खीवनहार, तू ही है करतार, ऐ सत्तार, रोजी देना काम है तेरा, सबसे आला नाम है तेरा, तू रहमान है, जिसान है, सुल्तान है, ऐ सत्तार, दर्दे दिल तेरे सिवा आह सुनाए किसको, मेरा मालिक मेरा खालिक मेरा माबूद है तू, ऐ सत्तार ऐ गफ्फार। काजी नजरुल इस्लाम को बंगाली अदब के अजीम शायरों में शुमार किया जाता है। उन्होंने शायरी मौसीकी पैगामात, नावल और कहानियाँ लिखीं, जिसमें मुसावात, इंसाफ, साम्राज्य मुखालिफ, इंसानियत, जुल्म के खिलाफ बगावत और मजहबी अकीदत का मजमा था। यही नहीं, उन्होंने कृष्ण पर कई तख्लीकी काम किया। कृष्ण पर काजी नजरुल इस्लाम की तसनीफ: अगर तुम राधा होते श्याम, मेरी तरह बस आठों पहर तुम, रूठते श्याम का नाम भी इनकी मोहब्बत के साथ ताल्लुक का अक्कासी करती है। काजी नजरुल इस्लाम पहली हिंदुस्तानी शख्सियत थे जिन्हें किसी मुल्क ने अपने मुल्क ले जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। ये मुल्क बांग्लादेश था। बांग्लादेश के कयाम के एक साल बाद यानी 1972 में उस वक्त के वजीर आजम शेख मुजीबुर रहमान हिंदुस्तान आए। इस दौरान उन्होंने काजी नजरुल इस्लाम को बांग्लादेश ले जाने की ख्वाहिश जाहिर की और हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की दरख्वास्त कबूल कर ली। तब कहा गया कि बांग्लादेश नजरुल इस्लाम को उनकी सालगिरह मनाने के बाद वापस कलकत्ता भेज देगा और उनकी अगली सालगिरह हिंदुस्तान में मनाई जाएगी, लेकिन उन्होंने अपनी अगली सालगिरह हिंदुस्तान में नहीं मनाई और न ही वापस लौटे। तसनीफ़ो तालीफ के अलावा काजी नजरुल इस्लाम ने फौज में भी खिदमात अंजाम दी। उन्होंने 1917 में फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली, लेकिन 49वें बंगाल रेजिमेंट को 1920 में ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी छोड़ दी और कलकत्ता में सकूनत इख्तियार कर ली। उन्होंने अपना पहला नावल बंधन हरा यानी बंधन से आज़ादी 1920 में शाया किया। नजरुल इस्लाम को उस वक्त पहचान मिली जब उन्होंने 1922 में विद्रोही लिखी। विद्रोही के लिए उनकी बहुत तारीफ की गई। अलावा अजीम नजरुल इस्लाम इस्लामी अकीदती गीतों तक महदूद नहीं थे, उन्होंने हिंदू भक्ति गीत भी लिखे। उसमें आगमनी, भजन, श्याम संगीत और कीर्तन शामिल हैं। नजरुल इस्लाम ने 500 से ज्यादा हिंदू भक्ति गीत लिखे। हालांकि श्याम संगीत लिखने पर मुसलमानों के एक हिस्से ने उन पर तनकीद की और उन्हें काफिर भी करार दिया गया। काजी नजरुल इस्लाम के एतराफ में कलकत्ता के रहने वाले उर्दू अदीब शब्बीर अहमद ने विद्रोही के नाम के उन्वान से 1600 सफहात पर मुश्तमिल एक नावल लिखा है। इसी तरह काजी नजरुल इस्लाम का इंतकाल 29 अगस्त 1976 को ढाका बांग्लादेश में हुआ और वह ढाका यूनिवर्सिटी के मरकजी मस्जिद में दफन हो गए।
1: सामीन, अभी हम समाध फरमा रहे थे मोहतरमा मासूमा परवीन से, उनका मकाम

0: अला नजरुल गीती उर्दू और बंगला अदब का हुस्न। और इसके बाद फौजिया हम एक मौजू और है जो आप बतला रही थी।
1: जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, 24 मई को पुण्यतिथि है हमारे तरक्की पसंद शायर जिनका नाम है मजरूह सुल्तानपुरी। जी हाँ सामईन, मजरूह सुल्तानपुरी तरक्की पसंद शायरी के मुअत्तबर और नुमाया नामों में शुमार होते हैं। इन्हें उर्दू गजल के मुनफरिद शायर और मुमताज तरक्की पसंद गजल गो के तौर पर याद किया जाता है। इनके कलाम में समाजी एहतजाज और इंसान दोस्ती की झलक मिलती है।
0: बिल्कुल फौजिया, मजरूह सुल्तानपुरी उर्दू की तरक्की पसंद तहरीक के सबसे मोतबर मकबूल और मुनफरिद शायर और नगमा निगार थे। उनका असल नाम इसराउल हसन खान था और वो 1 अक्टूबर 1919 को उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर में पैदा हुए।
1: मजरूह उर्दू के इन अवलिन शोरा में शामिल है जिन्होंने गजल की क्लासिकी सिंफ को तरक्की पसंद नजरियात और अवामी तहरीकात का मुअसर जरिया बनाया। उन्होंने गजल में असरी आगही और समाजी मसाइल को बहुत खूबसूरती से पेश किया।
0: और साथ में फौजिया, क्लासिकी और जदीद का इम्तिजाज उनकी शायरी में गनाइयत, रूमानियत और सूफियाना इस्तेआरे भरपूर अंदाज में मिलते हैं। उन्होंने तल्ख हकायक को भी बेहतरीन शेरी पैराए में ढाला है।
1: बतौर नगमा निगार इनका सफर इंतहाई शानदार रहा। उन्होंने 5 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए लाजवाल गीत लिखे। इन्हें उर्दू अदब और फिल्म इंडस्ट्री में इनकी गिरा कदर खिदमात के लिए 1993 में बावकार दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया।
0: मजरूह सुल्तानपुरी की तरक्की पसंद शायरी उनके मुनफरिद उसलूब, सियासी शोर और गजल की रवायती जमालियात के इम्तिजाज का बेहतरीन नमूना है। उन्होंने गजल के रवायती इस्तेआरों जैसे दारो रसन, जंजीर, कफस और सयाद को सियासी और समाजी मानी दिए। उनकी तरक्की पसंद शायरी की नुमाया खसूसियात दर्जा जैल है। मजरूह ने गजल की नर्म नाजुक सिंफ को समाजी इनकलाब का जरिया बनाया और उनके यहाँ मजलूमों की हिमायत और जालिम निजाम के खिलाफ एक मजबूत आवाज भी देखने को मिलती है।
1: इनके बहुत खूबसूरत इशार हैं हिदायतुल्लाह।
0: जी जी,
1: देख पाए हैं कहाँ मंजिले जाना वाले, रह गए राह में कुछ चाके गरीबा वाले। हमको इकरार जुनू, तुमको इनकार जुनू, देखते हैं कि उभरते हैं कहाँ वाले।
0: और फौजिया, तरक्की पसंद तहरीक के कुछ शोरा के यहाँ मायूसी झलकती है, लेकिन मजरूह की शायरी हमेशा रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद दिलाती है। वह तारीकी में भी सुबह की आमद का यकीन रखते हैं। उनके इस शेर से आपको इसका अंदाजा हो जाएगा कि सिहर भी होगी, अंधेरा भी जाएगा मजरूह, सिहर भी होगी, अंधेरा भी जाएगा मजरूह, हम ऐसे शब ज़दह पैराहने सिहर होंगे।
1: बहुत खूब, वो अकेले चलने के कायल नहीं थे बल्कि अवामी इत्तेहाद और मुश्तरका जद्दोजहद पर यकीन रखते थे। इनका ये शेर तरक्की पसंद तहरीक का सबसे मकबूल नारा बन गया। मैं अकेला ही चला था जानेबी मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया।
0: और फौजिया, हम कुछ भूल रहे हैं कि एक बहुत ही अहम फेस्टिवल आने वाला है।
1: बिल्कुल हिदायतुल्लाह, आपने सही कहा कि ईद उल अज़हा है 28 मई को, तो इसकी मुबारकबाद हम अपने सामईन को देते चलें।
0: बिल्कुल फौजिया, हम भी अपने सामईन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, खुश रहें, खुशियां मनाएं, फेस्टिवल को अच्छे से और खूबसूरती से मनाएं अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। इसी के साथ
0: आप अपने दोस्त हिदायतुल्लाह
1: और फौजिया दोनों को दें इजाजत।
0: आदाब
1: आदाब।
2: अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रशांत गौरव की। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए श्रोताओं, आज हमारे रांची केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे 4:35 पर कार्यक्रम सांझ सरगम। प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे शाम 5 बजे और 5:02 पर आप सुनते हैं युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। श्रमिक लोग, ये कार्यक्रम का वक्त होगा शाम 5:30 जिसमें आज चर्चा होगी जैव विविधता संरक्षण में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका, फिल्म संगीत को नई पहचान देने वाले राम लक्ष्मण, सुरक्षित स्वास्थ्य समृद्ध भारत आयुष्मान भारत योजना और सही पोषण स्वस्थ बचपन। इस कार्यक्रम में आज हम आपको एक वार्ता भी सुनवाएंगे। वार्ता का विषय होगा स्थानीय प्रयास वैश्विक प्रभाव, जैव विविधता संरक्षण का नया मंत्र। वार्ताकार होंगी रश्मि श्रीवास्तव और प्रस्तुति होगी इस कार्यक्रम की प्रशांत गौरव की। और शाम 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। कार्यक्रम खेती बाड़ी का समय रहेगा 6:02 जिसके अंतर्गत आज चर्चा होगी कृषि उद्यमिता। पुरुषोत्तमी में आप सुनेंगे खरीफ आने से पहले खेत की तैयारी, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर परवेज आलम, भेंट करता होंगे कृष्ण जीवन पौराणिक और प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की।

6:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और समाधान। नागपुरी वार्ता भी आज हम आपको सुनवाएंगे। झारखंडी लोक नृत्य घोड़ा नाच पर आधारित कलाकार से भेंट वार्ता। कलाकार होंगे जयप्रकाश रॉय, भेंटकर्ता होंगे कृष्ण जीवन पौराणिक और कार्यक्रम हमारी दुनिया की प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की।

आदिवासी अखड़ा, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:15 पर। आज का ये कार्यक्रम होगा हो भाषा में, जिसमें आज चर्चा होगी साइबर फ्रॉड से बचाव के उपाय और सुकन्या समृद्धि योजना। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे प्रदीप कुमार। श्रोताओं, आज शुक्रवार है और आज के दिन आप सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम सहिया। समय रहेगा 7:45। रात 8 बजे हम लेकर आएंगे आपके लिए फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा। इस कार्यक्रम में आज आपके साथ होंगी रौनक जहां। और 8:30 पर कार्यक्रम सुर्खियों में। समाचारों का समय होगा 8:45 से। पहले आप सुनेंगे समाचार संध्या, 9 बजे News@9 और 9:15 पर उर्दू में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

रात 10 बजे आप सुनेंगे वीकली स्पोर्ट्स प्रोग्राम खेल खिलाड़ी और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत। आज के कलाकार होंगी सविता रॉय, इनसे आज आप सुनेंगे राग नंद में ख्याल गायन। 11 बजे से आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और रात 11:10 पर हमारी आज की सांध्यकालीन सभा का समापन होगा। तो ये थे कार्यक्रम विवरण, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम सांझ सरगम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज की पहली शुरुआत सईद कादरी के बोल से, संगीत प्रीतम का, आवाज केके की, और फिल्म है श्रोताओं जन्नत।

केके की आवाज में अभी आप सुन रहे थे प्रीतम का, माफ कीजिएगा, प्रोग्राम का ये पहला गीत जिसे लिखा था सईद कादरी ने और संगीत दिया था प्रीतम ने। फिल्म थी जन्नत। अगली पेशकश अलका याग्निक की आवाज में, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण, फिल्म का नाम राजा हिंदुस्तानी।

इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम सांझ सरगम आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर।

कोयला। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसे लिखा था इंदिवर ने और इस गीत को संगीत से सजाया था राजेश रोशन ने। आवाजें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की। और अब सुनिए आज के प्रोग्राम की ये आखिरी पेशकश।

0: नुसरत फतेह अली खान और राहत फतेह अली खान की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे ये गाना। बोल थे मनोज मुंतशिर के और संगीत था नुसरत फतेह अली खान का और फिल्म थी श्रोताओं बादशाह हो। इसी गीत के साथ ही श्रोताओं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। आइए सुने प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी मतदाताओं से 23 मई से अपने मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित अनमैप्ड मतदाता सूची में नाम जांचने की अपील की है। उन्होंने बताया कि यह सूची अगले 2 सप्ताह तक सभी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें संबंधित बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर भी दर्ज रहेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ऊर्जा विभाग को पत्र लिखकर राज्य की खराब विद्युत व्यवस्था पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी के बीच जनता अनियमित बिजली आपूर्ति, लो वोल्टेज और बार बार ट्रांसफार्मर खराब होने की समस्या से परेशान है। रघुवर दास ने मुख्यमंत्री से इस मामले में उच्च स्तरीय समीक्षा कर तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को क्षेत्रीय भाषाएं के रूप में शामिल करने के मुद्दे पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। इस मामले को लेकर आज हुई 5 मंत्रियों की हाई लेवल कमेटी की बैठक में फैसला नहीं हो सका। बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं के मौजूदा भाषा पैटर्न, विशेषकर पार्ट 2 के नियमों पर गंभीर चर्चा हुई। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र में आम्रपाली परियोजना में कार्यरत एनसीसी लिमिटेड से लेवी मांगने, धमकी देने और आगजनी करने के मामले में पुलिस ने जेजेएमपी के सक्रिय सदस्य रविंद्र सिंह उर्फ रविंद्र सिंह खरवार को गिरफ्तार किया है। 24 जनवरी को 5 अपराधियों ने कंपनी के ट्रक को रोककर सुपरवाइजर और ड्राइवर से मारपीट की तथा ट्रक में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। झारखंड में मौसम का दोहरा असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के दौरान कोडरमा, रामगढ़ और रांची समेत आसपास के कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और बिजली बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुने युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवानी।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मई के इस महीने की उमस भरी दोपहर के बाद जब शाम ढलती है और आसमान से अचानक बारिश की वो हल्की सी फुहार गिरती है ना, तो सूखी मिट्टी से उठने वाली सूंधी सी खुशबू सीधे रूह को छू जाती है। और ऐसे में अगर हाथ में ठंडी ठंडी मलाई वाली लस्सी का कुल्हड़ हो तो लगता है कि ज़िंदगी की सारी थकान एक पल में गायब हो गई। कुछ ऐसा ही सुकून, ऐसी ही ताजगी लेकर हाजिर हैं हम युवाओं के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी के साथ।
1: दोस्तों, आज की ये शाम वाकई बहुत खास है, क्योंकि जैसे बारिश की फुहार तपती धरती को तसल्ली देती है, ठीक वैसे ही युववाणी के इस महफिल आपके पूरे दिन की थकान को भुलाकर आपको एक नई एनर्जी से भरने आई है।
0: बिल्कुल, आज हम पुरानी यादों के पन्ने भी पलटेंगे, अपने इस खूबसूरत कुदरत को सहेजने का एक छोटा सा संकल्प भी लेंगे और अमेजिंग फैक्ट्स का पिटारा भी खोलेंगे। तो बस अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा लीजिए और खो जाइए इस खुशनुमा सफ़र में। आज के इस आधे घंटे के सफ़र में आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त प्रज्ञा।
1: और मैं हूँ एडिथ।
0: आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: दोस्तों, आज 22 मई है। आज के दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन द्वारा की गई थी। इसे पहली बार 1993 में 29 दिसंबर को मनाया गया था, लेकिन बाद में साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी तारीख बदलकर 22 मई कर दी। तब से हर साल 22 मई को यह दिवस मनाया जाता है।
0: एडिथ, जब हम जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी जैसे भारी शब्द सुनते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये किसी साइंस के किताब का चैप्टर है जिसका हमसे कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारे वजूद हैं।
1: प्रज्ञा, आसान शब्दों में हम जैव विविधता को कैसे समझ सकते हैं?
0: देखो, अगर बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो इस धरती पर जीवन का जो खूबसूरत और रंग बिरंगा ताना बाना है, वही बायोडाइवर्सिटी है। हमारी मिट्टी, नदियाँ, हवा, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और हम इंसान, जब ये सब मिलकर एक बड़े परिवार की तरह रहते हैं और एक दूसरे का साथ निभाते हैं, तो इसी विविधता को जैव विविधता कहते हैं।
1: यानी इस प्लैनेट पर जितनी ज़रूरत हम इंसानों की है, उतनी ही ज़रूरत एक नन्ही चींटी और मधुमक्खी की भी है। इनमें से अगर एक भी गायब हुआ तो ज़िंदगी का यह खूबसूरत बैलेंस बिगड़ जाएगा।
0: एग्जैक्टली। दोस्तों, आज का यूथ क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पर बात तो करता है, लेकिन क्या हम गहराई से समझ पा रहे हैं कि हम हर दिन क्या खो रहे हैं? एक रिपोर्ट कहती है कि इंसानी क्रियाकलापों की वजह से हर दिन कई प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो रही हैं। जब एक धागा टूटता है तो पूरा कपड़ा उधड़ने लगता है। जहाँ एक ओर हम आसमान छूते इमारतों को बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन जंगलों को काट रहे हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। सोचो, वो तितलियाँ, वो जुगनू जो कभी हमारे बचपन का हिस्सा हुआ करते थे, आज हमारे छोटे भाई बहनों के लिए सिर्फ किताबों और कविताओं में रह गए हैं। क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को सिर्फ डिजिटल नेचर देना चाहते हैं?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसलिए आज का दिन सिर्फ सेलिब्रेट करने का नहीं, बल्कि ठहर कर सोचने का है। बदलाव की शुरुआत किसी बड़े आंदोलन से नहीं, हमारी अपनी बालकनी से, हमारे अपने घर से होती है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, हम अपने आसपास के जानवरों और पेड़ पौधों के प्रति थोड़े संवेदनशील होना, यही तो शुरुआत है।
0: और इसी सोच को गहराई देने के लिए आइए सुनते हैं इसी विषय पर एक वार्ता। वार्ताकार है लावण्या शेखर।
2: प्रकृति का संतुलन ही जीवन का आधार है और जैव विविधता उसकी सबसे सुंदर अभिव्यक्ति। प्रकृति इस संसार की सबसे अनमोल धरोहर है। हरे भरे वन, कलकल बहती नदियाँ, विशाल पर्वत, रंग बिरंगे फूल

आकाश में उड़ते पक्षी और असंख्य जीव जंतु मिलकर इस धरती को जीवंत बनाते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि प्रकृति का प्रत्येक तत्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यही विविधता और संतुलन जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता केवल जीवों की संख्या नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों और उनके पारिस्थितिक संबंधों का समग्र रूप है। मानव जीवन का अस्तित्व भी इसी जैव विविधता पर निर्भर करता है। इसी महत्व को समझाने और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हमें प्रकृति के प्रति अपनी दायित्वों का स्मरण कराता है और यह संदेश देता है कि यदि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी मानव सभ्यता का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी। वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता संरक्षण पर विशेष चर्चा हुई। इसके बाद जैव विविधता संधि को स्वीकार किया गया और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि जैव विविधता केवल पर्यावरण का विषय नहीं है, बल्कि मानव जीवन, स्वास्थ्य, भोजन, जल, जलवायु और आर्थिक विकास से भी गहराई से जुड़ी हुई है। प्रत्येक वर्ष इस दिवस के लिए एक विशेष थीम निर्धारित की जाती है, जिससे किसी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों पर वैश्विक ध्यान केंद्रित किया जा सके। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह हमारे भोजन, औषधियों, वस्त्रों और अनेक आवश्यक संसाधनों का मुख्य स्रोत है। खेतों में उगने वाली फसलें, परागण करने वाली मधुमक्खियां, औषधीय पौधे और समुद्री जीव सभी मानव जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहारा प्रदान करते हैं। यदि पेड़ पौधे ना हो तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। यदि नदियां और जंगल समाप्त हो जाएं तो जलवायु असंतुलित हो जाएगी। प्रकृति का प्रत्येक जीव पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाता है। यहां तक कि एक छोटी सी चींटी और एक साधारण तितली भी पर्यावरण के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कोई विशाल वृक्ष या शक्तिशाली पशु। भारत जैव विविधता की दृष्टि में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर पश्चिमी घाट के घने जंगलों, राजस्थान के रेगिस्तान, सुंदरबन के मैनग्रोव वनों और असम के वर्षा वनों तक प्रकृति के अनेक अद्भुत रूप देखने को मिलते हैं। भारत में हजारों प्रकार की वनस्पतियां, पक्षी, पशु और औषधीय पौधे पाए जाते हैं। भारतीय संस्कृति में भी प्रकृति को पूजनीय माना गया है। हमारे यहाँ नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है, वृक्षों की पूजा की जाती है और पशु पक्षियों के प्रति दया और करुणा का भाव सिखाया जाता है। यह परंपरा हमें यह समझाती है कि प्रकृति केवल उपयोग की वस्तु नहीं है, बल्कि सम्मान और संरक्षण की भी अधिकारी है। वर्तमान समय में जैव विविधता गंभीर संकट का सामना कर रही है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, शहरीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन ने पर्यावरण को गहरा नुकसान पहुंचाया है। वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण अनेक जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। नदियों और समुद्रों में फैलता प्रदूषण जल जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। आधुनिकता और विकास की अंधी दौड़ में मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले वर्षों में हजारों जीव जंतु और पौधों की प्रजातियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं। ऊंची इमारतें, बड़े उद्योग और तकनीकी प्रगति तभी तक उपयोगी हैं जब तक पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित है। यदि जंगल समाप्त हो गए तो वर्षा का चक्र प्रभावित होगा, तापमान बढ़ेगा और प्राकृतिक

0: आपदाएं अधिक होने लगेंगी। इसलिए विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जैव विविधता संरक्षण केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति छोटे छोटे प्रयास करे तो प्रकृति को सुरक्षित रखा जा सकता है। हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, जल और ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए तथा प्लास्टिक के उपयोग को कम करना चाहिए। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कचरे का सही प्रबंधन भी आवश्यक है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देकर बच्चों और युवाओं में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जा सकती है। आज के युवाओं की भूमिका जैव विविधता संरक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। युवा पीढ़ी यदि जागरूक होगी तो भविष्य सुरक्षित होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा केवल तकनीक और आधुनिकता तक सीमित न रहे, बल्कि प्रकृति से भी जुड़े। एक पौधा लगाना, पक्षियों के लिए पानी रखना, जल की बर्बादी रोकना या दूसरों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करना भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिवर्तन का आधार बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हमें आत्मचिंतन का अवसर प्रदान करता है। यह दिन हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हम आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और सुंदर पृथ्वी दे पाएंगे। पृथ्वी केवल मनुष्यों की ही नहीं, यह उन असंख्य जीवों की भी है जो इस धरती के समान अधिकारयुक्त निवासी हैं। इसलिए हमें प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की भावना को अपनाना होगा। अंततः यही कहा जा सकता है कि जैव विविधता पृथ्वी की आत्मा है। इसके बिना जीवन नीरस, असंतुलित और असुरक्षित हो जाएगा। प्रकृति और मानव एक दूसरे के पूरक हैं। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हमें यही संदेश देता है कि धरती की हरियाली, नदियों की निर्मलता, जंगलों की शीतलता और जीवों की विविधता को बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए हम संकल्प लें कि जैव विविधता दिवस को केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण के जन आंदोलन के रूप में मनाएं और ऐसा भविष्य बनाएं जहां विकास भी हो और प्रकृति भी मुस्कुराए।
1: दोस्तों चलिए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, अब तक हमने बातें की इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर। अब हम चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता के महत्व के ऊपर।
4: कई बार लोग सोचते हैं, अगर कोई एक पेड़, एक कीड़ा या एक चिड़िया गायब हो भी गई तो मेरा क्या नुकसान है, मैं तो अपनी आलिशान जिंदगी जी रहा हूँ, है ना। हमें लगता है कि हम इस दुनिया के VIP गेस्ट हैं, जबकि सच यह है कि हम इस कुदरत के बनाए जाल यानी इकोसिस्टम का एक छोटा सा धागा हैं। चलो इसे थोड़ा जेंजी स्टाइल में समझते हैं। एडिथ, तुमने कभी जेंगा गेम के बारे में सुना है क्या?
3: हाँ बिल्कुल, वो लकड़ी के ब्लॉक्स वाला टावर जिसमें से एक एक ब्लॉक निकालना होता है। पर प्रज्ञा, उस बायोडाइवर्सिटी से क्या लेना देना है भला?
4: देखो, हमारी बायोडाइवर्सिटी भी वही जेंगा टावर है। हर एक पेड़, हर एक मधुमक्खी, कीट, पशु सब उस टावर का एक एक ब्लॉक है। हम इंसान क्या कर रहे हैं, अपनी सहूलियत के लिए एक एक ब्लॉक खींच रहे हैं। हमें लगता है कि टावर तो खड़ा ही है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा एडिथ, जब कोई एक आखिरी ब्लॉक निकालेगा और पूरा का पूरा टावर धड़ाम से गिर जाएगा।
3: बिल्कुल सही कहा तुमने प्रज्ञा, जब वो टावर गिरेगा तो नुकसान किसी और का नहीं, सीधे हमारा होगा। आज शहरों का हाल ही देख लो, जो कुदरत हमें मुफ्त में साफ हवा देती थी, आज हम अपने ही घरों में बंद होकर सांस लेने के लिए एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं। मतलब सोचो, अब सांस लेने के लिए भी हमें मंथली बिजली का बिल और मशीन का खर्चा उठाना पड़ रहा है।
4: यह कितनी बड़ी विडंबना है ना, हम प्रोग्रेस के नाम पर पेड़ काटते गए और अब हजारों रुपए की मशीनें लगाकर ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता दोस्तों कि कोई महंगी मशीन कुदरत की उस ताजी और शुद्ध हवा की बराबरी कभी कर

0: कर पाएगी।
1: और सिर्फ हवा ही क्यों, हमारी नदियां जो कभी इस देश की लाइफलाइन हुआ करती थी, आज वो गंदे नालों में तब्दील हो रही है। नदियों का पानी इतना दूषित हो चुका है कि वाटर प्यूरिफायर के बिना हम पीने का पानी की कल्पना भी नहीं कर सकते।
0: सही कहा एडिथ, पहले लोग नदियों के किनारे सुकून ढूंढने जाते थे और आज वहाँ से गुजरते हुए हम नाक पर रुमाल रखते हैं। हम भूल रहे हैं कि जब नदियाँ मरती हैं तो उनके अंदर की पूरी एक्वेटिक लाइफ भी मर जाती है, और जब वो मरती है तो पानी को साफ रखने का जो नेचुरल सिस्टम है वो पूरी तरह से ठप हो जाता है। लोग नहीं जानते कि हमारी 80% दवाइयाँ जंगलों से आती हैं, हमारा खाना, हमारी इकॉनमी सब इसी डाइवर्सिटी पर टिकी है, लेकिन हम तो हवा और पानी जैसी बेसिक चीज़ों को ही दाव पर लगा चुके हैं।
1: एग्जैक्टली प्रज्ञा, दोस्तों बायोडाइवर्सिटी कोई लग्जरी नहीं है, यह हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है।
0: ज़रा सोचो, अगर मधुमक्खियाँ और तितलियाँ पोलिनेशन करना बंद कर दें तो फसलों में अनाज और फल उगना बंद हो जाएंगे। हमारी मिट्टी को उपजाऊ रखने से लेकर नदियों के पानी को साफ रखने और जो ऑक्सीजन हम और आप इस वक्त ले रहे हैं, इस सब के पीछे प्रकृति की एक पूरी वर्कफोर्स 2400 घंटे बिना सैलरी के काम कर रही हैं। हमें बस इसे तबाह नहीं करना है।
1: प्रज्ञा, अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हम यूथ को क्या कर सकते हैं?
0: देखो, हमारे द्वारा उठाए गए कुछ छोटे छोटे कदम भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसे अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं और ऐसे में हम अपने छत या बालकनी पर पक्षियों के लिए पानी का कटोरा रख सकते हैं। इस छोटे से स्टेप से ना जाने कितने पक्षियों की जान बच सकती है।
1: सच में प्रज्ञा, ये कटोरे में पानी रखने वाला स्टेप तो बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमें प्लास्टिक को अपने लाइफ से पूरी तरह अनफॉलो कर देना चाहिए। हमेशा अपने पास एक कपड़े का थैला रखें। अगर हम युवा पॉलीथीन को नो कहेंगे तो सोचिए हमारी प्रकृति को कितना फायदा होगा।
0: हाँ, और साथ ही हम यूथ अगर पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड की जगह अपने लोकल मार्केट से सीजनल फल और सब्जियां खरीदेंगे तो इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और इससे हमारे लोकल किसानों और उनके खेतों की बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट मिलेगा।
1: दोस्तों पानी की हर एक बूंद कीमती है, इसलिए आप ब्रश करते समय, बर्तन धोते समय या गाड़ी साफ करते समय पानी खुला ना छोड़ें। नदियों को साफ रखने की शुरुआत घर के नल को वक्त पर बंद करने से होती है।
0: दोस्तों, हम रील्स पर तो नेचर लव दिखाते हैं, अपने पोस्ट पर नेचर वाले एस्थेटिक फिल्टर्स लगाते हैं, लेकिन अब वक्त है रील से रियल लाइफ में नेचर लव को उतारने का। आप अपने बर्थडे पर या किसी भी खास मौके पर एक दूसरे को पौधे गिफ्ट करें और इन पौधों को लगाने के साथ साथ एक बच्चे की तरह उसकी देखभाल भी करें। ये आपके सच्चे बेस्ट फ्रेंड्स साबित होंगे।
1: ये काफ़ी अच्छा आइडिया है प्रज्ञा, इस बार मैं भी अपने बर्थडे पर एक पौधा लगाऊंगी और उसकी देखभाल भी करूंगी।
0: बर्थडे सेलिब्रेशन का इससे अच्छा आइडिया कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, हमें रील्स और मीम्स के ज़रिए लोगों को बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक करना चाहिए। जब यूथ किसी चीज़ को ट्रेंड बना देता है ना, तो पूरी दुनिया उसे फॉलो करती है। तो चलो इस ग्रीन लाइफस्टाइल को ही नया ट्रेंड बनाते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों अब वक्त हो चला है प्रोग्राम के सबसे ज्ञानवर्धक सेगमेंट का, इतिहास में आज का दिन।
0: बिल्कुल एडिथ, चलो वक्त का पहिया घुमाते हैं और जानते हैं 22 मई इतिहास के कैलेंडर में क्यों है खास।
1: प्रज्ञा, शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत के निर्माता और भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाने वाले राजा राममोहन राय से। उनका जन्म आज ही के दिन यानी 22 मई 1772 को बंगाल प्रेसिडेंसी के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। उन्होंने सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ जंग लड़ी और समाज को एक नई सोच दी। आज का दिन उनके उसी जज्बे को सलाम करने का है।
0: एडिथ, अब जो मैं बताने जा रही हूँ ना, वो दुनिया के सबसे पॉपुलर जासूस से जुड़ा है।
1: जासूस? कहीं तुम शेरलॉक होम्स की बात तो नहीं कर रही हो?
0: बिल्कुल सही गेस किया तुमने। 22 मई 1859 को मशहूर स्कॉटिश लेखक और चिकित्सक सर आर्थर कोनन डॉयल

0: बेल का जन्म हुआ था, जिन्होंने दुनिया को शेरलॉक होम्स जैसा कल्ट और एवरग्रीन जासूसी किरदार दिया।
1: शेरलॉक होम्स तो मेरा भी ऑल टाइम फेवरेट है। दोस्तों, 22 मई 1972 को सिलोन ने अपना नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर श्रीलंका रखा और खुद को एक रिपब्लिक यानी गणराज्य घोषित किया।
0: वहीं 22 मई 1990 को उत्तरी यमन और दक्षिणी यमन का मर्जर हुआ था और वे दोनों मिलकर एक देश बने थे, जिसे आज हम यमन गणराज्य के नाम से जानते हैं।
1: दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं करेंट अफेयर्स की। ग्लोबल वाटर समिट 2026 में यूटिलिटी ऑफ द ईयर श्रेणी में दुनिया की शीर्ष 5 वैश्विक जल उपयोगिता में शामिल होने वाली भारतीय संस्था बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड स्वाग बोर्ड बनी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल प्रदान किया। यह सम्मान 20 मई 2026 को रोम स्थित FAO हेडक्वार्टर्स में दिया गया। यह सम्मान खाद्य सुरक्षा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में योगदान के लिए दिया गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन के राम मोहन नायडू ने झारखंड के रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बिरसा मुंडा के स्टैचू और विशेष फीचर वॉल का उद्घाटन किया। यह फीचर वॉल झारखंड की ट्राइबल कल्चर ट्रेडिशंस और बिरसा मुंडा के ऐतिहासिक उलगुलान आंदोलन को दर्शाती है। इसका उद्देश्य हवाई अड्डे को केवल ट्रेनिंग ट्रांजिट सेंटर नहीं बल्कि स्थानीय संस्कृति और विरासत के प्रतीक के रूप में विकसित करना है। दोस्तों, बातें तो आपसे और भी करनी थी, पर क्या है, वक्त का थोड़ा तकाजा है। फिर मिलेंगे ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक अपनी दोस्त प्रज्ञा
1: और एडिथ
0: को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम श्रमिक लोक।

0: नमस्कार जोहार, आप सभी साथियों का कार्यक्रम श्रमिक लोक में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश्वर और मेरे साथ हैं महिमा। महिमा, आपको भी मेरी ओर से नमस्कार।
1: नमस्कार योगेश्वर, और तमाम साथियों को भी मेरी ओर से नमस्कार और जोहार। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और इस गर्मी के मौसम में अपना विशेष ध्यान रख रहे होंगे।
0: स्वास्थ्य का ध्यान रखना तो बेहद जरूरी है, क्योंकि गर्मी के मौसम में आप अपना जितना ध्यान रखेंगे उतना ही अच्छा है। इसीलिए कोशिश करें कि पानी की कमी बिल्कुल ही ना हो, हाइड्रेटेड रहें और सीधी धूप से बचें।
1: इसके साथ साथ नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी, बेल का शरबत, आम पन्ना का सेवन करें।
0: तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी सहित दूसरे मौसमी फल खाएं, जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। खाने में तैलीय मसालेदार भोजन से दूरी बनाकर रखें।
1: बिल्कुल, और साथ ही आप कोशिश करें कि सुबह 11 बजे से दिन के 3 बजे तक, 4 बजे तक बाहर जाने से बचें, और अगर ज़रूरत पड़ भी जाए तो अपने साथ धूप का चश्मा, सिर पर स्कार्फ या टोपी लगाकर ही जाएं।
0: आप सभी इस देश के मजबूत आधार हैं, इसीलिए आपको अपना ध्यान देना जरूरी है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो कार्यस्थल पर बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे।
1: बिल्कुल, और स्वास्थ्य की बातें तो हो गई, अब

0: हम आपको बता दें साथियों कि आज फिल्म संगीत को नई पहचान देने वाले राम लक्ष्मण की पुण्यतिथि भी है। हम अपने कार्यक्रम श्रमिक लोक के माध्यम से उन्हें शत शत नमन करते हैं।
1: पता है महिमा, राम लक्ष्मण की जोड़ी ने बॉलीवुड के कई फेमस गीतों को संगीत दिया है। उनकी जोड़ी, उनकी दोस्ती भारतीय सिनेमा में हमेशा याद की जाती है। राम लक्ष्मण मतलब विजय पाटिल और सुरेंद्र की जोड़ी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी राम लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में ही किया था।
0: बिल्कुल यही नहीं, आज के दिन ही जब विजय पाटिल का निधन 2021 में हुआ था, तब भारतीय सिनेमा ने एक महान संगीतकार जोड़ी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था।
1: इनकी दोस्ती की मिसाल हर कोई देते थे। जब 1976 में राम यानी सुरेंद्र का निधन एजेंट विनोद साइन करने के तुरंत बाद हो गया था, तब से विजय पाटिल ने अपने दोस्त की याद को अमर रखने के लिए जीवन भर ही राम लक्ष्मण नाम से संगीत का देना जारी रखा।
0: और आज जब दोस्त दोस्त में लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे की ओर वे देखना भी नहीं चाहते, ऐसे समय में राम लक्ष्मण की दोस्ती दोस्तों को याद जरूर से करना चाहिए और ऐसी दोस्ती भी निभानी चाहिए।
1: बिल्कुल महिमा, क्योंकि इनकी दोस्ती ने एक से एक बढ़कर संगीत दिया है। दिल दीवाना बिन सजना के, कबूतर जा जा गाने तब से आज तक लोगों के दिल में अमिट छाप छोड़ दी है।
0: बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं, हम आपके है कौन फिल्म के दीदी तेरा देवर दीवाना, पहला पहला प्यार है, मायने मायन गाने तो आज हर शादी में गाए ही जाते हैं।
1: बिल्कुल, पता है महिमा, 1999 में आई फिल्म हम साथ साथ हैं के गाने और धुन तो मुझे इतने पसंद हैं कि मैं बहुत गुनगुनाता रहता हूँ। इसमें जो गाना है मैया यशोदा, ये हमारी भारतीय संस्कृति को लोगों तक पहुँचाने का काम भी करता है।
0: इनकी जोड़ी ने ना सिर्फ हिंदी फिल्मों में संगीत दिया है, पर इसके साथ साथ मराठी सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा में भी अपने शानदार संगीत से दर्शकों के बीच काफी लोकप्रियता हासिल की है।
1: बिल्कुल, राम लक्ष्मण की जोड़ी ने 150 से अधिक फिल्मों में अपने संगीत से चार चांद लगा दिया है। कहा जाता है कि इनकी जोड़ी को यह नाम मशहूर मराठी अभिनेता और निर्माता दादा कोंडके ने दी थी।
0: राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बारे में अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय प्रोडक्शन को आज हर कोई जानता है।
1: बिल्कुल।
0: और राष्ट्रीय प्रोडक्शन में दिए गए उनके संगीत ने इस प्रोडक्शन को एक नया जीवन दान दे दिया और इनकी प्रसिद्धि इतनी अधिक हो गई कि इस बैनर के स्थायी संगीतकार के रूप में राम लक्ष्मण को रखा गया था।
1: हम कह सकते हैं कि भारतीय शादियां इनके गीत संगीत के बिना बिल्कुल अधूरी है।
0: बिल्कुल,
1: भारतीय सिनेमा इनके योगदान को कभी नहीं भूल सकता। फिर से हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से इन्हें सत सत नमन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हुए सुनते हैं इनके दिए गए संगीत का यह गीत।

0: चलिए, गाना तो बहुत ही मनमोहक रहा और
1: बिल्कुल,
0: काफी आनंदित भी रहा।
1: और दिल को छू लेने वाला संगीत
0: बिल्कुल
1: भी।
0: बिल्कुल। महिमा, कभी आपने सोचा है कि तितलियां हैं जो रंग बदलना भूल जाए, कोयल
1: छोड़
0: गाना छोड़
1: दे,
0: दे, पेड़ पौधे हमेशा रुठ जाए, तो हमारी जिंदगी कैसी होगी?
1: योगेश्वर मैं ही आपके सवाल का उत्तर दे देती हूँ। और आपने कहा कि तितलियाँ अगर रंग बदलना भूल जाए, कोयल गाना छोड़ दे, तो कैसा होगा? हमारी जिंदगी जो है ना, वो बिल्कुल बेरंग हो जाएगी और खामोशी छा जाएगी।
0: बिल्कुल जी हाँ, सभी की जिंदगी की खूबसूरती में कमी आ जाएगी, इसलिए ही तो जैव विविधता संरक्षण करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है।
1: और अगर आसान शब्दों में कहें तो जैव विविधता का मतलब है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवन की विविधता, पेड़ पौधों, सूक्ष्म जीव, पशु पक्षियों और इंसानों के बीच की समझदारी पूर्वक तालमेल।
0: पर आज के समय में हम इंसान विकास की दौड़ में इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं कि प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब गर्मी को ही देख लीजिए, मौसम के बीच संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया है।
1: बिल्कुल,
0: विकास जरूरी है, पर जैव विविधता का संरक्षण भी बहुत ही जरूरी है।
1: आपने बहुत बड़ी बात कही कि विकास जरूरी है पर साथ ही जैव विविधता का संरक्षण भी। और आज तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी है। साथियों, आइए हम आज के दिन प्रण करें कि इसके संरक्षण में अपना योगदान जरूर देंगे। जैव विविधता के बारे में और अधिक जानने के लिए आइए हम सुनते हैं एक वार्ता, स्थानीय प्रयास, वैश्विक प्रभाव, जैव विविधता संरक्षण का नया मंत्र। वार्ताकार है रश्मि श्रीवास्तव।
2: जरा एक पल के लिए सोचिए, यदि एक सुबह हम उठें और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई न दे, यदि नदियों का जल स्वच्छ ना रहे, यदि धरती पर हरियाली की जगह केवल धुआं और सूखा दिखाई दे, तो क्या हमारा भविष्य सुरक्षित रह पाएगा? प्रकृति केवल हमारी आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की पहचान है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियां और जंगल, ये सभी मिलकर जीवन का वह सुंदर संगीत रचते हैं जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। लेकिन आज यही जैव विविधता संकट में है, और इस संकट का समाधान किसी एक देश, सरकार या संस्था के पास नहीं, बल्कि हम सबके छोटे-छोटे प्रयासों में छिपा है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात करेंगे, स्थानीय प्रयास, वैश्विक प्रभाव, जैव विविधता संरक्षण का नया मंत्र। तो आइए जुड़िए हमारे साथ इस प्रेरणादायक यात्रा में, जहां एक छोटा कदम भी पूरी पृथ्वी के भविष्य को बदल सकता है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह असंख्य जीवों का घर है। यहाँ छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर विशाल वृक्ष और बड़े बड़े वन्य जीव तक सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रकृति का यही संतुलन पृथ्वी को सुंदर और जीवन योग्य बनाता है, लेकिन आज यही संतुलन खतरे में दिखाई दे रहा है। बढ़ता प्रदूषण, जंगलों की कटाई, जल संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हमें लगातार चेतावनी दे रही हैं कि यदि हमने समय रहते कदम नहीं उठाए तो भविष्य कठिन हो सकता है। इसलिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि जैव विविधता आखिर है क्या। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव तथा उनके प्राकृतिक आवासों की विविधता। यह केवल जंगलों तक सीमित नहीं है, हमारे खेत, तालाब, नदियां, पर्वत, यहाँ तक कि हमारे घरों के आसपास के पेड़ पौधे भी जैव विविधता का हिस्सा हैं। जैव विविधता हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें भोजन, औषधियाँ, स्वच्छ हवा, पानी और अनेक प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। मधुमक्खियां फूलों का परागण करती हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, नदियां जीवन देती हैं और जंगल वर्षा चक्र को संतुलित बनाए रखते हैं। यदि यह संतुलन बिगड़ता है तो मानव जीवन भी प्रभावित होता है। आज दुनिया भर में जैव विविधता गंभीर संकट का सामना कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों के अनुसार हजारों प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण अनेक जीवों का प्राकृतिक आवास समाप्त हो रहा है। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ने नदियों और मिट्टी को

जैव विविधता संरक्षण का मुख्य संदेश है स्थानीय प्रयास वैश्विक प्रभाव। यह थीम हमें यह सिखाती है कि पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत हमारे घर मोहल्ले गांव और शहर से होती है। जब स्थानीय लोग अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। हमारी संस्कृति ने हमेशा प्रकृति को पूजनीय माना है। आवश्यकता केवल उस भावना को पुनः जागृत करने की है। और यदि हम झारखंड की बात करें तो यहाँ की संस्कृति और परंपराएं प्रकृति के बेहद करीब रही हैं। यहाँ के आदिवासी समुदाय सदियों से जंगलों नदियों और पहाड़ों को पूजनीय मानते आए हैं। सरहुल जैसे त्योहार प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक हैं। गांवों में सरना स्थल केवल धार्मिक स्थान नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण की मिसाल भी है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग पेड़ों को काटने से पहले प्रकृति से अनुमति लेने जैसी परंपराओं का पालन करते हैं। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन दाता है। जब किसी क्षेत्र में जंगल काटे जाते हैं तो वहां केवल हरियाली कम नहीं होती बल्कि मिट्टी का कटाव बढ़ता है। वर्षा कम होती है और जल स्रोत सूखने लगते हैं। जब नदियां प्रदूषित होती हैं तो केवल पानी ही खराब नहीं होता बल्कि मछलियां पक्षी और पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। स्थानीय तालाबों और कुओं का अतिक्रमण या उपेक्षा जल संकट को बढ़ाता है। आज कई शहरों में भूजल का स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो भविष्य में पानी के लिए संघर्ष बढ़ सकता है। आज शहरों में तेजी से कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं, पेड़ों की जगह बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं। इससे हीट आइलैंड प्रभावित होता है, यानी शहरों का तापमान आसपास के क्षेत्रों से अधिक हो जाता है। अधिक बिजली की खपत होती है, स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं और अंततः ऊर्जा संकट के रूप में सामने आती हैं। ऐसे ही जब पेड़ों की संख्या कम होती है तब प्रकृति की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता भी घट जाती है। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग तेज होती है। जंगलों के खत्म होने से वर्षा चक्र प्रभावित होता है, मिट्टी का कटाव बढ़ता है, सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती हैं। इसका प्रभाव केवल स्थानीय किसानों पर नहीं बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ता है। स्थानीय समुदायों के पास प्रकृति संरक्षण का वर्षों पुराना पारंपरिक ज्ञान होता है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के कारण यह ज्ञान भी धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। प्रकृति में हर जीव की अपनी भूमिका होती है। यदि कोई एक प्रजाति समाप्त हो जाए तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है। जैसे मधुमक्खियां की संख्या कम होने से परागण प्रभावित होगा, परागण कम होने से फसल उत्पादन घटेगा, इसका असर खाद्यान्न और मानव जीवन दोनों पर पड़ेगा। इस प्रकार एक छोटी सी स्थानीय समस्या वैश्विक खाद्य संकट का कारण बन सकती है। कई बार लोग सोचते हैं कि अकेले उनके प्रयास से क्या बदलाव आएगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े परिवर्तन छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। यदि हर परिवार एक पौधा लगाए, हर बच्चा पानी बचाने का संकल्प ले, हर नागरिक प्लास्टिक का उपयोग कम करे तो करोड़ों छोटे प्रयास मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज कई स्कूलों में बच्चे एक छात्र एक पौधा अभियान चला रहे हैं, कई गांव वर्षा जल संचयन कर रहे हैं, कई शहरों में लोग मिलकर झीलों और तालाबों की सफाई कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि जागरूक समाज किसी भी चुनौती का समाधान कर सकता है। भारत में प्रकृति संरक्षण की परंपरा बहुत पुरानी है। पवित्र उपवन यानी सैक्रेड ग्रोव्स इसका सुंदर उदाहरण है। ये ऐसे जंगल होते हैं जिन्हें धार्मिक आस्था से जोड़कर संरक्षित किया जाता है। इन क्षेत्रों में पेड़ काटना वर्जित माना जाता है। ऐसे ही झारखंड का प्रसिद्ध सरहुल एवं कर्मा पर्व प्रकृति और पेड़ों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इस पर्व में साल वृक्ष की पूजा की जाती है और प्रकृति से समृद्धि की कामना की जाती है। यह परंपरा बताती है कि आदिवासी संस्कृति प्रकृति

0: के साथ संतुलन बनाकर जीने की शिक्षा देती है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में शुरू हुआ चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण का ऐतिहासिक उदाहरण है। गांव की महिलाओं ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनसे चिपक कर विरोध किया। इस आंदोलन ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि जंगल केवल लकड़ी नहीं बल्कि जीवन का आधार है। ऐसे ही महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में देवराई की परंपरा है। इन जंगलों को देवताओं का निवास मानकर संरक्षित किया जाता है। यहाँ पेड़ काटना और शिकार करना निषिद्ध माना जाता है। भारत की संस्कृति में प्रकृति को सदैव पूजनीय माना गया है। इसी परंपरा का एक अत्यंत प्रेरणादायक उदाहरण है बिश्नोई समाज। राजस्थान में रहने वाला यह समुदाय सदियों से पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। बिश्नोई समुदाय विशेष रूप से खेजड़ी वृक्ष और काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय परंपराएं केवल विरासत नहीं बल्कि भविष्य को बचाने का मार्ग भी हैं। भारतीय संस्कृति में तुलसी, पीपल और बरगद जैसे वृक्षों की पूजा की जाती है। इन परंपराओं के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है, क्योंकि ये वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के किसान पहले मिश्रित खेती और जैविक खाद का उपयोग करते थे। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती थी और अनेक प्रकार की फसलें सुरक्षित रहती थी। यह परंपरा जैव विविधता संरक्षण का महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत के कई हिस्सों में नदियों, तालाबों और कुओं की पूजा की परंपरा रही है। यह परंपरा हमें जल संरक्षण और स्वच्छता का महत्व समझाती है। साथ ही साथ वन महोत्सव के माध्यम से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भी संदेश है। आज आधुनिक खेती के कारण पारंपरिक बीज धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, लेकिन कई स्थानीय समुदाय बीज बैंक बनाकर पुराने बीजों को संरक्षित कर रहे हैं। यह केवल खेती को बचाने का प्रयास नहीं बल्कि जैव विविधता की रक्षा का महत्वपूर्ण कदम है। पारंपरिक खेती मिट्टी को सुरक्षित रखती है, रासायनिक प्रदूषण कम करती है और स्थानीय जलवायु के अनुकूल होती है। आइए हम सब मिलकर विकल्प रहित संकल्प लें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, जल और ऊर्जा की बचत करेंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे, स्थानीय जीव जंतुओं और पौधों की रक्षा करेंगे, प्रकृति का सम्मान करेंगे, जैव विविधता की रक्षा करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, हरी भरी और सुरक्षित धरती देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि स्थानीय प्रयास ही वैश्विक परिवर्तन की सबसे मजबूत नींव है।
1: स्थानीय प्रयास, वैश्विक प्रभाव, जैव विविधता संरक्षण का नया मंत्र, इस विषय पर वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे रश्मि श्रीवास्तव। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब अपने साथियों को बताते हैं एक ऐसी योजना के बारे में जो आपके स्वास्थ्य और इस देश की समृद्धि और विकास के लिए बहुत ही जरूरी है।
2: और मैं समझ रही हूँ आपका इशारा कि किस ओर है। आप बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत योजना की।
1: आपने बिल्कुल सही कहा महिमा, आयुष्मान भारत योजना श्रमिक साथियों के लिए बहुत ही कल्याणकारी योजना है। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, जो भारत के करोड़ों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक वरदान है।
2: बिल्कुल, और जब हमारे साथी इतनी मेहनत करते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है। कई बार हमारे साथी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, आर्थिक सहायता उस समय कहीं नजर नहीं आती। ऐसे विपरीत परिस्थितियों के लिए और उस समय आयुष्मान भारत योजना बनाई गई है,
1: जिसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज शामिल है। अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले की जो दवाइयां हैं और जांच है, और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का जो खर्च है, इस योजना के तहत कवर किया जाता है।
2: साथियों, सभी इस योजना का लाभ जरूर लें। और आप इस योजना से अगर नहीं जुड़े हैं तो आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, पोर्टल पर जाकर लॉगिन करें, सारी जानकारियां भरें, ई केवाईसी पूरी करें। वेरिफिकेशन के बाद अप्रूव्ड होने के बाद आप कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: साथियों, आयुष्मान कार्ड बहुत ही जरूरी है। इस तरह
2: गीत संगीत भी बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही हमने साथियों को बता दें कि स्वास्थ्य जो है वो बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है।
1: रही बात बच्चों की, तो जब बच्चों को सही पोषण मिलेगा तो उनका शारीरिक विकास होगा, पढ़ाई लिखाई में वे आगे बढ़ेंगे, मानसिक विकास भी होगा।
2: सही पोषण के लिए बच्चों को संतुलित आहार, वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जैसे सभी पोषक तत्व शामिल होने चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा महिमा। और साथियों, इसीलिए आप अपने छोटे बच्चों का बचपन बनाएं पोषक तत्वों के साथ।
2: और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, अपने दोस्त महिमा
1: और योगेश्वर को दे इजाजत।
2: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोक। ये आकाशवाणी कराची केंद्र है। शाम के 6 बज चुके हैं। आइए सुने अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बैठक की। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त 2026 को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के साथ एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ एवं डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची भी जारी की जाएगी, जिसे सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रांची में इस्कॉन द्वारा आयोजित श्री हरिकृष्ण उत्सव में शामिल हुए और कीर्तन श्रवण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस्कॉन से उनका गहरा जुड़ाव रहा है और संस्था समाज हित में सराहनीय कार्य कर रही है। राज्यपाल ने इस्कॉन से जनजातीय समाज को भी अधिक से अधिक जोड़कर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। पाकुड़ पहुंचे झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय प्रसाद ने व्यवहार न्यायालय और मंडल कारा का निरीक्षण कर न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और बंदियों से बातचीत की। उन्होंने मंडल कारा में हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आयोजित जागरूकता शिविर में बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल मजदूरी और पोक्सो कानून पर लोगों को जागरूक किया गया। हजारीबाग के बरही प्रखंड कार्यालय में शुक्रवार को प्रखंड स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कम वर्षा की संभावना को देखते हुए किसानों के लिए आकस्मिक योजना और वैकल्पिक फसलों पर चर्चा हुई। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वरीय वैज्ञानिक कृष्ण प्रकाश ने किसानों को कम अवधि वाली फसलों की खेती अपनाने की जानकारी दी। जमशेदपुर में पर्वत और नदी संरक्षण विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर के पर्यावरणविद, जल विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन में प्रस्तावित भारतीय पर्वत निरंतरता एवं सुरक्षा अधिनियम 2026 पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने पर्वतों को जल संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन की आधारशिला बताया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बारी।

0: गाछ लगाऊ पर्यावरण स्वच्छ बनाऊ
1: कार्यक्रम सुनू या सब भाई बहन मन के हमर बट्टे बहुत बहुत जोहार और शांति बहन रोर के भी बहुत बहुत जोहार
0: जोहार दादा तब बताओ कैसा हालचाल है
1: एकदम एकदम बहुत बढ़िया है और देखो एखन बहुत जोर गर्मी लागे के शुरू हो जा रहे कुछ दिन पहले जब बरखा पानी आलक नहीं शांति बहन उगर में तो निशान जाड़ नियर बुझात रहे लेकिन एखन दो चार दिन से बहुत जोर गर्मी लागे के शुरू भेजा है
0: हाँ दादा अरे खन देखो कि इतने गर्मी पड़े के लायक है कि घर से निकले के एकदम बलाय हो जा है और कोनो काम धंधा में भी मन स्वांग नहीं लगे लायक है एकदम मन मन तनी दूसरे बेचैन जैसा लागे के लायक है और तनी कुन बगरा खान पान भी हो जाए से पाचन भी ढंग से नहीं हो पारे के लायक है तो जे भी छोट मन है छुआ मन है या बड़ बुजुर्ग मन है ओहे मन के बड़ा कर्म परेशानी और गर्मी तो है कि केखो नहीं चीने ला वो तो सब कर ले है लेकिन अगर घर से बाहर निकले के लाएगी तो छाता मन सूती गमछा मन और ठंडा पानी मन धर के ही निकलू अपन सुरक्षा के संगे ही निकलू
1: एकदम अलबत बात के कहली भाई एकदम सुपट कहती कि जब हमारे मन के कोई भी काम कर अगर जरूरत है तबे घर से बाहर निकलो नहीं तो ऐसा करे है कि बिहान बिहान बेरा कोनो काम के करे कर उपाय करू चाहे सांझ बेरा दिन में निकले कर कोशिश करे के रखे एखन बहुत ज्यादा गर्म हवा चलत है और लू कर कारण बनेला लू मार दे नहीं तो बहुत जल्दी हमारे मन कर तबियत खराब हो जाला उकर में पानी कर कमी हो जाला शरीर में तो हमारे मन के कोशिश करे के चाहिए कि पानी भरपूर मात्रा में पानी पी लो तले घर से बाहर निकलो और संगे संगे जरूरे उपाय कहली कि माथा में हमारे मन के कोनो न कोनो की चीज के गमछा उमझा के लेके चले के चाहिए बहुत बढ़िया रही कि छाता लेके चलो ये सब उपाय हमारे मन के जरूर से जरूर करे के चाहिए और बहुत काम है तबे घर से बाहर निकलो
0: और सांझ बिहान के ही निकले कर कोशिश करे एखन कर बेरा में जिस तरह से मौसम में ते तापमान बढ़ जा है तो बड़ा परेशानी है सब कर ले काम करवाइयो ले घर में रहको वाला मान ले
1: एकदम ठीक कहा थी लेकिन का कहब शांति बहन हमरे मन खेतीहर ही हमरे मन के तो बिहान सांझ निकले के पड़ेला अब एखन बहुत किसान मन देखो गर्मा खेती करत है नी गर्मा खेती में घर से बाहर निकले के पड़ी रोदों में काम करे के पड़ेला तो उसन बेरा में हमरे मन के बगरा से बगरा पानी पिए के छूछा पेट रहे के नखे देखो कहल जाए ला नहीं कि हमरे मन के बहुत मेहनत तो करके पड़ेला लेकिन अगर वो मेहनत में बगरा अगर हमरे मन के आमदनी हुआ थे तो काम करे में भी बेस लागेला तो किसान मन जीवट हैं लागल रहे ना और नवा नवा तकनीक से भी आप खेती बाड़ी करे शुरू कर दे हैं शांति बहन तो तनी सन बेस लागेला कि अगर रौदो से कथे तेकरो में किसान मन मेहनत करत हैं
0: और देखो किसान मन स्वस्थ रही तभी तो अपन पसीना के खेत में गैर सके ना काले की मेन है उमन कर स्वस्थ एक रहे अब बगरा से बगरा पानी पिए है अपन जीव स्वांग के स्वस्थ रखे है और अपन खेत में काम करके अनाज के उगाए है ये कर ले है कि देखो कि आजकल है कि एखन तो गर्मी कर सीजन है तो खरीफ फसल आवेक्स कर शेखर में है कि खेत बाड़ी मन के तो एखन किसान मन के तैयार करके भी रखे है एखन हार जोत के माटी के ऊपर करे है उकर अंदर जे भी कीटाणु मन है कीटाणु कर कीड़ा मन है खर पतवार मन है एखन ये धूप में वो सूखी सड़ी और नाश हुई तो ऊपर से है कि हमारे की किसान मन अगर खेती बाड़ी कर रहे वो बेरा बेस से उपज हुई बगरा उपज हुई तो इकर ले बेस है
1: एकदम सही कहा थी लेकिन देखो ये सब तो हमारे मन कर जे परंपरा से चलते आवत है से सब तो है ही है लेकिन अब हमारे मन के नी नवा सोच कर तहत हमारे मन के खेती बाड़ी भी करे है शांति बहन जैसे देखो अगर कोनो नवा काम अगर उड़े नहीं करते तो आमदनी भी बगरा नहीं होगी अगर पारंपरिक खाली हमारे मन जैसे कि अगर दूध कर अगर हमारे मन करत थी अगर हमारे मन गाय पोसी दूध बेची ला खाली दूध बेच के हमारे मन ज्यादा पैसा नहीं कमा सकीला उकर में हमारे मन का कर सकीला तो पनीर बनाए लो पनीर बेचू रो रे ओकर अलावे हुए बहुत सारा वो दूध कर जे प्रोडक्ट है से तैयार कर सके ला उत्पाद है सके और उके बाजार में अगर उड़े अगर बेचत थी तो उकर से बगरा कमाई हुआ थे तो ई हमरे मन के नवाचार अपना एक पड़ी नवा तकनीक हमरे मन के अपना एक पड़ी अब जैसे बहुत किसान मन के देखब कि उमन मशरूम कर उत्पादन करे ना नी तो मशरूम के बेच के रोड़े बगरा कमाई नहीं कर सकेला लेकिन अगर उकर से जे और भी जे उत्पाद बनत है जैसे बिस्कुट भी बनत है बहुत मन के देखब कि चिप्स तैयार करे ना उकर से
0: तो हमरे घर दन कर तो कौन कौन किसान मन है कि मुर्गी मन बतख मन तो पोसबे कर है हाँ। लेकिन संगे संगे मधुमक्खी मन के भी राख है जैसे कर से है कि मधुरस मन निकलेला और है कि का है ना
1: हाँ, तो एकदम सही कहा थी कि जो मधुमक्खी पालक किसान है उमन के अगर मोम उत्पादन से भी अगर जोड़ देवल जाए तो देखो मधुमक्खी का रस भी बेचत हैं, जे मधु रस ऐसे के भी बेचत हैं, इन्हें मोम कर भी उत्पादन हुआ थे। तो हमार कहे कहे मतलब कि खेती और उकर से जे जुड़ल उत्पाद है सेकर से अगर हमरे मन जुड़ के काम कर थी तो हमरे मन कर आमदनी बगरा हुआ थे। अब जैसे मड़ुआ बेच के रूरे कतना कमाब, लेकिन मड़ुआ कर जे नवा जे उत्पाद है जैसे उकर से बिस्किट बनत है, उकर से लड्डू तैयार करत हैं, तो वो अधिक दाम में बेचायला। लड्डू है कि देखब रूरे बाजार में कम से कम 100 रुपया में 4 गो 5 गो ईसन बेचायला, तो अधिक दाम में बेचात है। तो हमरे मन के खेती कर संगे संगे का करे के चाहिए नहीं कि उके उद्योग कर दर्जा देवे के चाहिए, उद्योग बटे हमरे मन के अपन ध्यान के लगाए के चाहिए। तब देखब कि रोड आमदनी भी बगरा हुआ थे, खेती बाड़ी भी करूँ, खेती बाड़ी करना जरूरी है, लेकिन संगे संगे हमरे मन के उकर जे उत्पाद है सेकर बटे भी हमरे मन के जाए के चाहिए। शांति बहिन, तब हमरे मन मजबूत किसान बनब। और सरकार कर भी ध्यान है कि किसान कर आमदनी कैसे दुगुना हो, तो हमरे मन यह तरीका से कर सकेला। किसान तो मदद सरकार तो मदद करते है, लेकिन उकर संगे संगे हमरे मन के भी अपन दिमाग लगाए के आगे बढ़ना है। माने पारंपरिक तरीका से खेती करू, लेकिन थोड़ा सा उकर में हमरे मन के नयापन लाने जरूरी है। किसान
0: नगद बात हाँ, जो भी हमारे किसान भाई बहन मन सुनत हो भी मन एक बात के अपनावी और अपन दिनचर्या में लावे
1: एकदम। करत भी है बहुत किसान मन, अब नवा तकनीक से खेती बाड़ी करे शुरू कर दे है।
0: तो दादा हमरे मन कार्यक्रम का आगे बढ़ाएला, तो हमरे मन एगो रिझ रंग भी करीला, तो नागपुरी लोकगीत है जिके गाहे देवदास विश्वकर्मा और संगी मन।

0: तो बड़ा नगद गीत रहे, देवदास विश्वकर्मा और संगी मनकर गावल रहे। और शांति बहिन देखो, हम जैसन की रोड़े भी तखन कहत रहनी कि खरीफ कर महीना आवेक वाला है, खरीफ फसल का सीजन आवेक वाला है, तो इकर ले इखने से किसान मन तैयारी करे शुरू कर दे हैं। और जरूरी भी है, जब रोद पड़े लानी तो उबेरा अगर बढ़िया से जुताई अगर हो जाते तो माटी उलट पलट जब हो लानी तो माटी भीतरे बहुत ऐसा जे कीट कीट बन रहे ना, जे फसल के नुकसान करे वाला है, वो मन भी ऊपरे आए जाए ना तो उकर नुकसान होएला और फसल बढ़िया होएला। सेले पहले है से किसान मन जोत कोड़ शुरू कर देवे ना और फसल कर तैयारी शुरू कर देवे ना।
1: तो चलो इकरे में विस्तार से चर्चा करेला कि खरीफ आए से पहले खेत का तैयारी कातारी करे है, और इके बतात है डॉक्टर परवेज आलम अरेकर से भेंट कर है कृष्ण जीवन पौराणिक।
2: किसान साथियों नमस्कार, जैसा कि हम जानते हैं कि तपती गर्मी के बाद मानसून की आहट सुनाई देने लगी है और इसी के साथ शुरू होने वाला है खरीफ का सीजन। चाहे धान हो, मक्का हो या दलहन, अच्छी पैदावार के लिए केवल बीज बो देना काफ़ी नहीं है, उससे पहले खेत को तैयार करना सबसे ज़रूरी कदम है। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज आलम, एसोसिएट प्रोफेसर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। इनसे हम जानेंगे कि इस बार खरीफ की फसलों के लिए आप अपने खेतों को स्मार्ट तरीके से कैसे तैयार करें ताकि लागत कम हो और मुनाफा ज़्यादा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब आपको नमस्कार है हमारे कार्यक्रम में।
3: नमस्कार और जोहार किसान भाइयों।
2: डॉक्टर साहब आप हमारे श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि खरीफ सीजन की शुरुआत में किसानों को सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
3: देखिए बहुत सही मुद्दा आपने उठाया है कि जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे किसान भाई भी जानते हैं
2: जी,
3: कि हम अपने खेत से साल भर जो है खेती करते हैं। साल भर का मतलब हुआ कि
2: सालों भर
3: मतलब खरीफ में भी लेते हैं, उसके बाद रबी में भी खेती करते हैं
2: जी,
3: रबी के बाद कुछ किसान भाई सब्जी लगाते हैं, है ना, गर्मा खेती भी करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो मिट्टी है उसको हम लोग सालों भर काम पे लगाए रहते हैं
2: जी,
3: लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा मिट्टी जो हमको हमेशा सालों भर अनाज उत्पादन करके दे रहा है, इसका स्वास्थ्य का भी जांच होना चाहिए
2: जी, जी।
3: या इसको भी कुछ आराम की ज़रूरत है, या इसको भी कुछ इस तरह का हम करें कि ताकि हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है ये कम ना हो। क्योंकि अगर आप ऐसे समझिए कि अगर आपकी मिट्टी सालों साल आप खेती कर रहे हैं, ठीक है,

0: और आपका धीरे धीरे मिट्टी का उपजाऊ क्षमता जो है वो कम होने लगा।
1: जी
0: तो लास्ट में क्या होगा, कुछ साल के बाद, कुछ वर्षों के बाद आप देखेंगे कि आप उतना ही सारा इनपुट डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छे बीज का प्रयोग कर रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, लेकिन उत्पादन आपको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो अब खराब होने चला है।
1: जी
0: तो इस स्वास्थ्य को बीच में हमको बचा के रखने की ज़रूरत है, और ये बिल्कुल सही समय है कि हम मिट्टी के स्वास्थ्य को कैसे बचाएं, ताकि हमारा जो आने वाले जो खरीफ सीजन में हम फल लगाएं, जो पौधे हम लगाएं, जो भी खेती करें, वो मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हमको दे।
1: जी तो गर्मियों में गहरी जुताई का खरीफ की फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके फायदे क्या हैं, सो बताइए।
0: हाँ, अब है कि इसी क्रम में हम आगे कहना चाह रहे हैं कि जो किसान भाई को हमने सलाह दिया आपके माध्यम से कि मिट्टी का सेहत को अच्छा रखना है,
1: जी
0: है ना, मिट्टी को बीमार नहीं होने देना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि खेत का साल में एक बार कम से कम गहरी जुताई करें।
1: जी
0: और वो गहरी जुताई करने का जो समय, उचित समय है, वो अभी है, है ना?
1: जी जी
0: अब है कि गहरी जुताई से मतलब क्या होता है, मतलब कितना जुताई, कितना दूर तक हम जुताई करें जिसको हम मान लें कि ये गहरी जुताई हुआ। क्योंकि आप देखेंगे कि किसान भाई जब धान या मक्का या कोई भी फसल लगाते हैं तो उस समय भी खेत की जुताई होती है।
1: जी
0: है ना, तो ये जुताई जो है 4 से 5 इंच की जुताई होती है और ये गहरी जुताई में नहीं आती है, ठीक है? तो गहरी जुताई हम तब कहेंगे कि कम से कम 10 इंच से लेके 1 फुट तक
1: जी
0: नीचे अगर हम जा रहे हैं, उस स्थिति में हम कहते हैं कि ये गहरी जुताई किस श्रेणी में आएगा। अब फिर अगला प्रश्न ये दिमाग में आता है कि भाई इतना ज़्यादा अगर गहरी जुताई करना है तो हम कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे हम गहरी जुताई कर सकते हैं,
1: जी
0: है ना? क्योंकि किसान के पास जो देसी हल है या हमारे पास जो ट्रैक्टर में लगने वाला पीछे जो हल लगता है,
1: जी
0: उससे अधिक से अधिक 4 से 5 इंच ही जुताई कर सकते हैं, है ना? तो इससे आप गहरी जुताई नहीं कर सकते, इससे आपको फिर दूसरा मशीन आपको लेना पड़ेगा, उसका नाम है मोल्ड बोर्ड प्लाव,
1: जी
0: है ना? तो ऐसे समझिए कि ये प्लाव जो है ऐसा काम करता है कि जो मिट्टी को कम से कम 1 फुट नीचे जा करके इस मिट्टी को गहरे ढंग से जोतता है और साथ में साथ जो नीचे की मिट्टी है उसको ऊपर ले आता है और ऊपर की मिट्टी को नीचे ले आता
1: जी।
0: है ना? तो इसको हम बोलते हैं गहरी जुताई। और इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो जिस पर्पस के लिए आप करना चाह रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए करना चाह रहे हैं, वो उद्देश्य आपका सफल होगा।
1: तो इससे क्या फायदा है गहरी जुताई से?
0: हाँ, आप देखिए, अब तो हमारे कहने के हिसाब से किसान भाई ने गहरी जुताई कर लिया,
1: जी
0: आपने भी बता दिया,
1: जी
0: लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई गहरी जुताई करने से लाभ क्या है, है ना?
1: जी जी
0: देखिए, गहरी जुताई जब करते हैं तो क्या होता है, मैंने कहा ना कि मिट्टी को नीचे से ला करके ऊपर छोड़ता है, ऊपर वाले मिट्टी को नीचे दबाता है।
1: जी जी
0: तो साल भर खेती करने के दौरान अगर जितने भी खर पतवार के जो बीज हैं, जो कीड़े मकोड़े के जो अंडे लार्वे हैं, है ना
1: जी,
0: वो सब मिट्टी में उलट पुलट हो जाते हैं, ठीक है? उलट पुलट हो गए, जब उलट पुलट हो गए तो क्या होगा, वो सब वहीं पर खत्म
1: हो जाएंगे।
0: तो एक तो इससे ये होता है कि जब आप गहरी जुताई के बाद जब खेती करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत ज्यादा खर पतवार या बहुत तरह का बीमारी ऐसे ही नहीं आएगा।
1: जी
0: पहला फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये है कि आप जब 1 फीट के मिट्टी को जब आप जोत रहे हैं तो वहां तक की मिट्टी क्या हो गई, हल्की हो गई,
1: जी
0: है ना? तो हल्की होने से क्या लाभ है, हल्की होने से ये लाभ है कि जो भी आप फसल वहां लगाएंगे उसका जड़ जो है बहुत आसानी से नीचे जा जाएगा।
1: जी जी
0: तो आपको ये पता है कि जड़ जितना आसानी से नीचे जाएगा उतना अधिक मात्रा में उर्वरक वो अपने पौधों के लिए खींच सकता है, पानी को खींच सकता है, और आप देखेंगे कि जो पौधे का हेल्थ है

0: वो बहुत अच्छा होता है और अल्टीमेटली पैदावार बढ़ता है,
1: जी
0: है ना। दो हो गया। तीसरा, गर्मी के शुरुआत में हम कह रहे हैं कि गहरी जुताई करिए, और इस जुताई को हम कह रहे हैं कि जब तक वर्षा मानसून आ नहीं जाता है तब तक आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, है ना
1: जी।
0: यानी कि 1.5 से 2 महीना जो है आप वहाँ पर उसको हम छोड़ने के लिए कहते हैं। इससे क्या लाभ है? इससे ये लाभ है कि जो भी प्री मानसून का पानी या मानसून का पानी जब खेत में पड़ेगा तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है किसान के खेत का पानी उसके खेत के नीचे जाएगा
1: जी,
0: है ना। और जब नीचे जाएगा तो मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो अधिक अच्छी होगी। तो ये सब फायदे होते हैं गहरी जुताई करने से। और हम आपके माध्यम से किसान भाई को सलाह दे रहे हैं कि कम साल में एक बार, ना हो सके तो कम से कम 2 साल 3 साल में एक बार तो जरूर करना चाहिए ताकि आपका मिट्टी का सेहत अच्छा बना रहे
1: जी। अब बात आती है उर्वरक प्रबंधन
0: जी।
1: तो किसान तो गहरी जुताई कर लिए, अब इसमें ये बताएं कि खेत में गोबर की खाद या हरी खाद का उपयोग किस प्रकार और कितनी मात्रा में किया जाना चाहिए।
0: लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि हम कहते हैं कि भाई इसमें हरी खाद को आप जरूर डालिए। तो हरी खाद में क्या आता है? हरी खाद में आता है ढैंचा।
1: ढैंचा,
0: ढैंचा
1: जी जी।
0: तो ढैंचा को क्या करना है कि गहरी जुताई करने के बाद अगर थोड़ा सा नमी, अभी आप देख रहे हैं ना बारिश हल्का हल्का हो जा रहा है,
1: जी जी,
0: है ना। तो इस तरह का नमी अगर आपको मिलता है तो ढैंचा को खेत में ऐसी छींट दीजिए, जितना आपके पास है उसको छींट दीजिए खेत में
1: जी।
0: तो आप देखेंगे कि 10-15, 1 महीना, 40 दिन होते होते ढैंचा का फसल जो है कम से कम 1.5 फीट का 1 फीट का हो जाएगा, है ना
1: जी जी,
0: ढैंचा का फसल। और जब ये फसल तैयार हो गया तो जब आप धान का खेती करने जाएंगे उस समय जब आपका पानी खेत में, आप तो रोक के रखे हैं पानी
1: जी,
0: तो पानी के साथ ढैंचा को उसी में जोत देना है।
1: अच्छा,
0: है ना। ढैंचा को मिट्टी के साथ पानी के साथ जोत देना है और उसको फिर वहां सड़ने छोड़ देना है, ठीक है। तो 1 सप्ताह 10 दिन में आप देखेंगे कि ढैंचा का जो फसल जो आप जो अपने मिट्टी में जोत दिए थे वो एक अच्छा खाद बन गया वहां पे
1: जी।
0: इससे ये फायदा होता है कि मिट्टी का संरचना भी काफी सुधर जाता है, मिट्टी में नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ता है और मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। तो दो बातों का ध्यान जरूर रखें कि हरी खाद ढैंचा का प्रयोग करें, है ना, ये बहुत आसानी से हर जगह मिलता है और इसको लेके आप उसको खेत में जोत सकते हैं।
1: किसान भाई अतिरिक्त आय के लिए कौन सा कृषि संबंधित कार्य करें?
0: हाँ देखिए, ये भी आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपको, हम लोग को भी पता है कि देखिए किसान के खेत में अभी फसल नहीं है
1: जी,
0: है ना। अभी फसल नहीं है तो उनका जीविकोपार्जन कैसे चलेगा, है ना। पैसा तो कुछ चाहिए कमाने के लिए। तो उसके लिए हम किसान भाई को ये सलाह देना चाहेंगे कि देखिए झारखंड सरकार का जो गांव में जो रोड होता है, है ना, और रोड के बगल में किसान का खेत होता है, ठीक है
1: जी,
0: और किसान का खेत और रोड के बीच में कुछ जमीन ऐसी होती है जिसको गैर मजरूआ जमीन बोलते हैं
1: जी जी,
0: है ना। तो उस जमीन पर अभी आदमी को चाहिए कि छोटा छोटा गड्ढा का निर्माण करें, है ना। तो गड्ढा का निर्माण जब करेंगे तो उसमें लागत लगेगा, पैसा लगेगा, है
1: जी।
0: तो किसान अगर उसमें जाकर के मेहनत करता है तो उसको कुछ ना कुछ पैसा डेली मिल जाएगा, ठीक है। अब आप ही पूछेंगे कि छोटा गड्ढा 4 फीट बाय 4 फीट का हम बनाने बोल रहे हैं, मान लीजिए एक गड्ढा, तो इसका क्या जरूरत है, इससे क्या फायदा है
1: जी।
0: तो इससे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप गांव में इस तरह का जहां जहां रोड है, आप जरा कल्पना करके देखिए, वहां वहां साइड में अगर आप दोनों साइड में इस तरह का छोटा छोटा गड्ढा बनाते चले जाते हैं गर्मी भर,
1: गर्म मंजूरवा जमीन में,
0: और जब बरसात शुरू होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक उस गड्ढे में पानी जमा होगा
1: जी,
0: जमा होगा ना। तो पानी तो आपके पास स्टोर करने का जगह मिल गया, जमा करके रखने का जगह मिल गया। अब जब झारखंड में आप देखते हैं कि फसल लगाने के बाद अपलैंड में धान लगा लिए और उसके बाद 15-20 दिन के बाद वहां पर सुखाड़ पड़ने लगता है, है ना
1: जी,
0: पानी नहीं रहता है। यहाँ अपलैंड धान की भी मैं बात कर रहा हूँ, अक्सर अपलैंड धान जो है आप देखेंगे कि एक महीना का जब धान होता है तो उस समय वहाँ पानी का समस्या होने लगता है, अगर बीच में वर्षा रुक गई तो
1: जी।
0: तो उससे बचने के लिए ये जो गड्ढा हम बनाए हैं और यहाँ जो पानी जमा है, इस पानी को आप चाहें तो वहाँ पर अपने फसल को बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं
1: जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर परवेज आलम जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को खरीफ के मौसम में खेत की तैयारी करने के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: धन्यवाद और जोहार किसान भाइयों।
2: बहुत बढ़िया जानकारी होला कि खरीफ फसल में जो अखन आवे वाला है समय उगर में हमारे मन खेत कर तैयारी कैसे कर सकेले, डॉक्टर परवेज आलम बतात रहे और इनकर से बतियात रहे कृष्ण जीवन पौराणिक। और शांति बहन देखो बहुत बढ़िया जानकारी होलक और किसान मन के कितना अच्छा सलाह देलें कि हमरे मन के हरा खाद कर प्रयोग करना है, खास करके ढैंचा कर। और बहुत किसान मन देखो अपन खेत में लगात भी हैं और इकर जो प्रयोग कर विधि बता लें डॉक्टर साहब, बड़ा बढ़िया बात की बता लें कि भाई उके पहले है से खेत में लगा दो और जब पानी आवत है रोड खेत में पानी बचा के राखी तो संगे उके जोत दो और 10 दिन बाद देखब कि उ गल के बढ़िया खाद का रूप ले लेवी। तो उकर से का हुई कि माटी में नेत्रजन कर मात्रा बढ़ेला और माटी कर जो उत्पादन है जो स्वास्थ्य है से बढ़िया हो जाला और उकर में कोई भी फसल अगर रोपत थी तो उकर से उत्पादन भी रुके बढ़िया हुआ थी। बहुत बढ़िया जानकारी देलें और इकरे संगे खेती बाड़ी कर बेरा तो हेरा सिरा लग और बेरा हो गलक
3: हमारी दुनिया। तो आज हमारी दुनिया कार्यक्रम में एक बार फिर से
2: स्वागत करना है। जोहार है भाई। और देखो आज कर दिन में हमरे मन्नी हर हफ्ता युवा सभा करीला और देखो युवा सभा कहे कर मतलब है कि नवा जे भी जानकारी हमरे मन कर युवा भाई बहन मन वास्ते है उमन चलते हमरे मन खास कार्यक्रम करीला, बढ़िया गीत गोविंद रहेला, बढ़िया बढ़िया जानकारी रहेला। तो भाई देखो हमरे मन कर समाज के आगे लेगे में, हमरे मन कर देश के आगे लेगे में शांति बहन युवा मन कर योगदान बहुत बगरा रहेला,
3: बहुत बगरा रहेला। काले की युवा मन ही देश का रान शान है के युवा मन ही सशक्त रहेला, उमन में नवा नवा विचार आवेला रोज प्रतिदिन। अगर उमन गलत डहर में जाबे तो इकर से हमरे घर परिवार समाज कर सब कर नुकसान होवी। तो युवा मन ले भी रंग रंग कर कार्यक्रम कर आयोजन करल जाएला, युवा मन के शिक्षित करल जाएला। और देखो आजकल का है कि दादा कि युवा मन तनिक उन तनाव में है कि गलत कदम उठाए।
2: एकदम ठीक कहा थी। और सबसे बड़ समस्या अगर युवा मन में देखब नहीं तो आज कर जो छुआ मन है उनमें हम देखिला कि नशा कर जो उमन में आदि हो जाए ना, ये सबसे बड़ समस्या है शांति बहिन। और ये हमारे मन कर जो युवा शक्ति है से के घून तरी धीरे धीरे चरे के लाई है, जिसे घून लागे ला नी कोनो लकड़ी में तो रुको ऊपर से पता नहीं चली
3: लेकिन आज
2: के आज के एको दिन वो ट्वीट के गिर जाएला। तो इसने हमरे कर समाज में जे युवा मन में आज का देखब नहीं कि नशा धीरे धीरे उमन के चरक शुरू हो जाए।
3: और देखो दादा कि नशा है कि जे युवा मन है उमन दो तरीका से करे, एगो हो गेला कि खुशी में और एगो है कि
2: कोनो तकलीफ अगर हो गेला तो ऊपर।
3: लेकिन खुशी वाला बात तो समझ में आवेला लेकिन जे तनिकुन गम वाला रहेला उमन डिप्रेशन में चल जाए ना, वो हावी हो जाएला नशा उमन में। तो नशा है कि उमन के नहीं करे है, उमन के सकारात्मक सोच के साथ अगर कोई काम नहीं बने लायक है तो ऐसा नहीं कहे सोचे है कि हमर से होवी नहीं, उनके सकारात्मक सोच के साथ रखे है और अपन मेहनत के आगे बढ़ाए है और मेहनत से ही जे सोच है वो कर पावी और अपन जे भी लक्ष्य के पूरा कर पावी। और देखो नशा है कि
2: देखो नशा कर बारे में कहल जाए नी कि वो नाश कर जहर हके शांति बहिन है नी, इसलिए नशा अगर करे थी तो पूरे समाज के खत्म कर देवेला, गोटा घर परिवार बर्बाद हो जाला, कई ठो घर में तो झगड़ा झंझट सुरे सुनते रहो। तो इसलिए नशा कभी भी कोई भी रूप में अच्छा नहीं मानल जाएला, तो चाहे वो छोट हो चाहे बड़ हो समाज के अगर प्रदूषित करे में कोई अगर सबसे बड़ भूमिका अगर निभाएला तो नशा है। इसलिए तो कहल जाएला कि नशा नाश कर जहर हो गेला, तो जहर के हमारे मन के पसराए के न के जहर से कोड़ी के भगाए देवे के।
3: और देखो एक जन नशा करे ना पूरा परिवार उकर से ये रहे
2: प्रभावित
3: हो कि कैसे हमर परिवार का सदस्य नशा से मुक्ति पाए। तीकर ले तो सरकार अनेकों उपाय भी लगा है नशा मुक्ति केंद्र मन है उकर में जाओ, चाहे परिवार कर एक अच्छा तालमेल बनी उकर से भी है कि वो मनुष्य नशा के प्रति

0: अग्रसित ना हो,
1: नहीं ठीक है कहा थी।
0: परिवार में अगर अच्छा बात विचार मेल मिलाप बनी, अपन बात के बेस से रख पावी, तो उकर से है कि वो तनाव में नी जाए और गलत कदम नहीं उठाए।
1: हाँ हाँ ठीक है कहा थी। अब देखो कोई अगर मान लो नशा करत है तो ऊपर से हमरे मन के माने बहुत बुरा व्यवहार करे के नखे, ऊपर से मार पीट करे के नखे, उके हीन भावना से देखे के नखे। नहीं तो जैसे जैसे हमरे मन ऊपर में तनाव अगर ज्यादा देव अपनी तो और धीरे धीरे नशा बटे जाए। तो हमरे मन के ऐसा अपन घर कर माहौल के बनाए के है कि ऊपर में ज्यादा हमरे मन के तनाव नखे देवे, उके बड़की समझाए के है बुझाए के है कि भाई इकर से घर भी बर्बाद हुआ थे और ऊपर शरीर भी बर्बाद हुआ थे। कई धाव हो वेला कि जब बड़ मन नशा करे ना तो छोट छोट छुआ मन भी देखा देखी शुरू हो जाए ना, तो घर भी बर्बाद होएला। तो उसके समझाना है, प्रेम से समझाओ तो धीरे धीरे वो नशा से उकर ध्यान भटके शुरू हो जाएगा। देखो आज सबसे बड़ नशा अगर कहब नहीं तो नशा पान कर संगे संगे देखब कि मोबाइल कर भी है बहुत आदमी मन आदि होते जाते हैं। ये कितना घंटों घंटा आदमी मन बेकार में मोबाइल देख के बिताए देते हैं, उकर से कोनो फायदा हुआ तो नखे।
0: जेकर से है कि ना आँख कर नुकसान होवत है, मस्तिष्क भी ढंग से काम नहीं करे लायक है, तो इकर से है कि हमरे मन के कोई भी चीज के सेवन करे लायक ही तो सीमित से करो, और कहल भी जायला आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज जहर होवेला।
1: एकदम एकदम सुपोर्ट का थी रोरे।
0: तो यही ले नशा के हमरे मन के दूर करे है, और इकर ले हमरे के सही सोच के साथ आगे बढ़े है।
1: एकदम भाई। और युवा में हर चीज करे कर क्षमता है। अगर कोनवे चीज की अगर ठान लेते नहीं कि हम की काम के करे है तो युवा करके दिखाई दे, तो ये नशा कोई बड़का चीज ना लगे। अगर आज कर युवा अगर सोच लेते कि हमके एकदम अपन समाज के बढ़िया रखे के है, साफ सुथरा रखे के है, तो देखो काल हमरे मन का समाज बदल जाए। और देखो समाज से वो कहल जाएला नहीं कि एक एक कदम आगे में आदमी आगे बढ़ेला, नहीं तो बहुत दूर तक चल जाएला। इसने अगर समाज बदलत है तो हमरे कर गाँव बदली, गाँव बदली तो हमरे कर शहर बदली, शहर बदली तो देश बदली। देखब कि हमरे मन कर जे देश है रोज दिन आगे बढ़त है, विकसित देश कर धीरे धीरे करीब पहुंचते जाते। तीकर में खाली एक आदमी का योगदान नहीं होएला, कहे ना नहीं कि जब मैराथन चलेला, मैराथन देखो अपनी कि ऊकर में एक ठो आदमी भागेला नहीं, संगे संगे बहुत आदमी मन भागे ना, दूर में जाए के एक ठो खड़ा रहेला, तो इन्हें से अगर दौड़ते जाते तो उके थमाए देवेला, वो फिर भागे शुरू करेला, तो धीरे धीरे वो लक्ष्य के पाए लेवेला। तो हमरे मन के भी मैराथन दौड़ में हमरे मन के बढ़े के, एक ठो आदमी कर प्रयास से नहीं हुई, सबकर प्रयास से हुई। और देखो यह तो खुशहाल हमरे का झारखंड संस्कृति जो है कितना बढ़िया संस्कृति है कि हमरे मन एक साथ मिल के रही लानी। जब अखरा में कहे ना नहीं कि अखरा में कोई देखैया नहीं हुए ना, सब हुआ एक सहयोगी कर भूमिका में रहे ना, सब संगे जोड़ाए ना, नाचे ना, डेगे ना, गीत गोविंद करे ना, बाहर सुंदरी तबे तो सुंदरी हमरे कर झारखंड कर है। तो यह सुंदरी हमरे मन के समाज कर बनाए है, और तबे होवी जब हमरे मन ईसन जे नशा है जे हमरे मन के धीरे धीरे खोखला करते जाते, और जेर के हमरे कर का कहने के ग्रते जाते, धीरे धीरे घुन्नी और सिराते जाते, तो इके हमरे मन के सिरवाए है, नशा के हमरे मन के सिरवाए है, नशा बटे हमरे मन के जाए के नखे। नहीं तो हमरे कर धीरे धीरे जीव सवांग के पूरा समाज के गाँव के धीरे धीरे का करनी के ग्रते चल जाये, हर एक दिन पता चली पूरा धराशाई हो गेलक, गिर गेलक, समाज बर्बाद हो गेलक।
0: तो सेले हमरे के नशा से बाइच के रहे है,
1: हाँ हाँ,
0: और अपन जे भी लक्ष्य है उके पूरा करे है।
1: हाँ तो शांति बहन बड़ा दिन बाद जरूर से भेंट होए लानी, तो इसने हमरे मन कर गोइठ निकलते रहे लानी, नवा नवा बात फूटते रहे ला।
0: हाँ दादा, तो चलो एक हाँ। कटी के रीज रंग भी हो चाहिए।
1: हाँ हाँ,
0: तो एगो गीत के सुनवाईला, नागपुरी लोकगीत जिके गा है इग्नेश कुमार और संगीमन।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: तो शांति बहन, चलो एक ठो कलाकार हैं जे कि घोड़ा नाच से जुड़ल कलाकार हैं और ये बहुत बढ़िया कलाकार जयप्रकाश राय हैं। इनकर से करल बातचीत के हमरे मन सुनत थी, इनकर से बतिया हैं
7: कृष्ण जीवन पौराणिक।
8: कार्यक्रम सुनो या भाई बहन मन के जोहार है। हमरे कर झारखंड राइज यहाँ नाना बरन कर कवि और कलाकार मन कर सृजन होलक और इकरे संगे सृजन होलक जयप्रकाश राय कर। और जयप्रकाश राय आज हमर संगे हैं जे झारखंड कर प्रसिद्ध लोक नृत्य घोड़ा नाच कर मंझल कलाकार हैं। जयप्रकाश भाई, सबसे पहले हमरे बटलेर और के बहुत बहुत जोहार है।
9: जोहार सब सुनू या भाई बहन मन के भी, हमर बटले हृदय से जोहार है।
8: तो रौरे अपन परिचय दे दो।
9: हमर नाम जयप्रकाश राय है, गाँव पोस्ट सकरा है, थाना मांडर, जिला रांची।
8: जयप्रकाश भाई, झारखंड कर माटी कर खुशबू ई नाच में तो महकेला। जब रौरे अपन कमर में लकड़ी और कपड़ा कर बनल घोड़ा के बांध के नगाड़ा ढाक कर थाप में थिरकीला, तो देखोया मन कर नजर भी नहीं हटेला। रौरे ई कला के जीवंत राई संस्कृति के मान के बढ़ाई ही। आज हमरे रौरे से ई कला कर बारीकी से और सफर कर बारे में जानब। तो ये बताओ कि घोड़ा नाच कर शुरुआत कहिया और कब से होला?
9: हाँ, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। आज से 5-6 साल पहले जब यहाँ अमरेकर झारखंड में, चाहे तो उड़ीसा में, चाहे तो पुरुलिया में, जब नाच शुरू होलक छऊ नाच कर से उके देखा देखी उ छऊ नाच सब बटे फैल गेलक। अब फलल से हमरेकर गांव बटे भी आलक। तो हमरेकर गांव में पांडे दुर्गानाथ राय जे आकाशवाणी में कार्य भी कर लें, ये अपने आप में संपूर्ण रूप से कलाकार हैं जे अपन ज्ञान बुद्धि से ये नाच कर सृजन कर लें, ताकि छौ नाच तो करते रहें, संगे संगे देख लें कि गांव कर आदमी मन के कैसे अच्छा से अच्छा लोक नृत्य देखाऊ। तुकरे में अपन से बांस कर टटरी से चार चीर फाड़ के बना ले घोड़ा के, और उकरे आधार से नाच भी कर ले, उकर ताल मात्रा की बता ले, और बड़ा बढ़िया से नाच सिखा ले, और सब कोई के देखावो करत रहे, और उकरे से प्रेरणा लेके उनकरे से सीख के हम आज उनकर जो परंपरा उनकर चलत रहे से के आज तक ले हम भी निभा थी।
8: तो चलो, प्रेरणा और के तो बहुत बढ़िया मिललक। का इकर रूपरेखा पहले है जैसन है कि कोनो में अखन बदलाव होलक?
9: हाँ, अखन तो बहुत बदलाव आ जाए। सबसे पहले जब हमर नाना साहेब इकर नाच करत रहे तो अपन हाथ से बांस कर बांस के चीर चीर के और तट्टी बना के उकर बढ़िया से कागज पत्र डाल के रंगीन कागज के डाल के बनात रहे, और जे थोड़ा सा वजन भी हो जात रहे। तो हमर जब परियालक, हम के जब ग्रहण कर ली वो नाच के सीख ली, तो हमारे दिमाग में आलक कि इके कैसे कैसे माने पोर्टेबल बनाल जाए, माने 2-3 खंड में के करके तो के हम बना ली चदरा कर टीन से काट के और बनवा ली, और अपन हाथ से के तैयार करके उकर में कपड़ा डाल के बना ली, जे खन सब जगह में से उपलब्ध हो जाए, ले जाए के लिए आसानी हो जाए, और जब तैयार करूँ तो तैयार हो जाए।
8: तो घोड़ा नाच में का बाजा के बजावल जाए?
9: विशेष करके तो ढाक, नगेरा, सहनाई और झुनकी, इकर विशेष साज यह है। एखन कर दौर विषण आ जाए है कि सब बटे देखा थी कि अंग्रेजी बाजा जे कहा थी, पियानो है, ऑर्गन है, कीबोर्ड है, उकरों से आदमी इके बजा के नाच सके ना, नचवाए ना।
8: तो ये घोड़ा नाच जो है ये गीत प्रधान है या ताल प्रधान?
9: हाँ, नाच जितना भी होवे ला नी उकर में ताले कर महानता रहेला, ताले कर प्रधानता उकर रहेला, जब ताल नहीं बजे तो नाच में कैसे।
8: तो रे घोड़ा नाच के कहाँ कहाँ देखा है?
9: हाँ, इकर सौभाग्य हमके बहुत जगह मिललक, खास करके अनेकों जगह हम नाच के देखा ली है, कर ली है, लेकिन जहाँ जहाँ विशेष रूप से आपके सम्मानित कर लाए हैं, सम्मान पत्र मिल रखू के हम बता दो थी। सबसे पहले हमके पटना में एक बार सौभाग्य प्राप्त होलक, जोन खन हमारे कर शिक्षा मंत्री रहे करमचंद भगत जी, हैं से खन वो अपन वर्ष हमारे के सबको के ले गए और हुआ हमारे मन के कर्म गाइड के कर्म कर पूजा कर लें, और जितना मंत्री मन रहे सब कोई के बुलाए के हमारे उनकर नाच के प्रस्तुत कर कर सौभाग्य मिललक, जबकि हम उनके देखा ली।
8: तो घोड़ा नाच में कौन ऐसा गीत या ताल है जेकर से कि मने रौरे घोड़ा नाच के दिखाई ले?
9: इकर विशेष रूप से ताल कर निर्माण कर ले हमारे नाना साहेब जे ढाक ढोल नगेरा में बाजे ल। हाँ, तो इसे तो इसने बता के नहीं पा रहा।
8: हाँ,
9: उधर में जब ताल रही, ढोल माजर रही, तबे बता पा रहा। हाँ, ताल है, ताले से नाच हो गया।
8: अच्छा,
9: असल है नाच कर संगे ताल, ताल जैसन बाजी तो इसने नाच कर रखो।
8: अच्छा,
9: विशेष रूप से हम एक बात बताए चाहिए कि जब यहाँ 2005 में हमरे कर महामहिम सैयद सिप्तेरजी रहे राज्यपाल, सेखन आपन बटले हमरे मन के सौभाग्य मिललक कि आपन हियाँ राज्यपाल भवन में हमरे के दिखाई कर मौका मिललक, उकरों से हमरे देखा ली तो बड़ा खुश होले और सम्मानित कर ले हमके।
8: तो ये नाच के रौरे अपने जगन रखी कि औरों मन के सिखाई?
9: हम बहुत जगन देखा ली और उकरे आधार से हमारे गाँव का लड़का मन जो है इच्छुक हो है ना, उमन के हम सिखा के ट्रेन कर ली है, कम से कम 5-6 आदमी के तो हम सिखा ली है बढ़िया से।
8: तो कार और इस नाच के बढ़ावा देवे ले कुछ कहे चाहिए?
9: हम तो सरकार बटले चाहिए कि
8: सरकार बटले,
9: हाँ सरकार बटले है, मांग करी ले, चाहे जितना भी हमरे कर हियाँ का नाच है, चाहे पैका हुए, मर्दानी झूमर हुए, चाहे नटुआ हुए, जे तरह का नाच है, घोड़ा नाच है, सबके बढ़ावा देवे ले सरकार बटले, हमरे कर कुछ मदद मिले चाहिए, और इकर एक विशेष संस्था जोड़ के बनाए के हमरे मन के आगे बढ़ावा है, तो हमरे कर झारखंड कर संस्कृति जब बाँची, यह हम कामना करी ले कि ईसन करूँ।
8: तो ताल का तो और बात करवे कर ली, तो ताल कर संगे संगे तनी कुना अगर गीत भी हो जाए तो बहुत बढ़िया है,
9: खास करके घोड़ा नाच पर्व तो ईसन विशेष से बनल रखे है, दूसर दूसर गीत मन तो है।
8: हाँ,
9: तू के चाहवा तो सुनाए सके?
8: हाँ, सुनाओ।
9: हाँ, अपन एक रचना, एक समय में झारखंड आंदोलन हमारे चल रहे, झारखंड का मांग करत रही, सेखन

0: देवे चाहिए।
1: हाँ, हम अपन सुनवैया भाई मन के यह कहले कि हमारे कर झारखंड के संस्कृति है, जे यहाँ कर लोक नृत्य है, लोक गीत है, लोक वाद्य है, उके संजो के राखे कर हमारे मन के एखन बहुत दरकार है। एखन देखत ही इकर में बहुत तरह के विकृति आवत है। हाँ, नागपुरी हो के तनी तनी चल जाते, भोजपुरी बटे तो कभी चल जाए दूसर बटे। हाँ, थोड़ा सा हमरे मन के संजोए के राख ले, अपन जो यहाँ का ठेठ नागपुरी है उके हमरे के बचा के राखे है, जे यहाँ कर मूल राग रागिनी है, इकर जे ताल है, एखन बांसुरी कहो, सारंगी कहो, ढोल मंदिरा, ये सब कर मांग हमरे मन के राखे के चाहिए और उकरे से हमरे मन कर गीत बजा के बढ़ाए चाहिए। सब भाई बहन मन के यह कहब कि अपन संस्कृति के बचा ले, हमरे के आगे आके पड़ी।
0: घोड़ा नाच में कतना आदमी कर दरकार रहेला?
1: इकर में बजवैया कर संगे संगे अगर एक घोड़ा है तो एक तो रहबे करवे।
0: हाँ हाँ,
1: तीन दो तीन तो घोड़ा है तो तीन ले, सब ले दे करके उड़के 10-15 आदमी कर जरूरत पड़ेला। हम तो बहुत जगह देख ली है, जैसे राजस्थान में हुआ घोड़ा नाच कर रहे ना।
0: हाँ,
1: लेकिन वो बिल्कुल घोड़ा बना लाए उकरे में ढुक गए।
0: हाँ,
1: और नाच कर रहे तो उखे सोच के हमार नाना साहेब कर लें कि नहीं ईसन बनाओ कि लागे कि बैठल ही।
0: हाँ
1: वो खड़ा ही से नहीं बुझाए, लेकिन एकदम देखुया के लागे कि हाँ सचमुच में ही घोड़ा में बैठल है। हाँ, का बढ़िया एकदम कपड़ा लत्ता पिंध के, मोजा जूता लगा के ईसन बैठल है, ताकि देखुया के बुझाते कि सचमुच में कोई आदमी बैठ के नाच करत है।
0: हाँ, वो तो हम देखी कि जैसे पीठ में बैठल है।
1: हाँ,
0: और दोनों करे गोड़ जो है से,
1: हाँ,
0: जूता जो है से,
1: हाँ, लागल है।
0: हाँ, तो उके कैसे बनावे ले रहो?
1: उके हम उहे तो असल कर खासियत हाँ, है, खूबी उकरे में है कि इतना श्रृंगार करके उके बनाल जाए ले, वो तो नकली घोड़ रहे ले।
0: हाँ, हाँ,
1: लेकिन उके हमरे मन इतना बढ़िया से सजाई ले ताकि देखुया के ई ना बुझाए कि नकली है कि असली है, आदमी के देखते बुझाया जा लगे क्या बढ़िया घोड़ा में बैठल है और डांस करत है। इकर खासियत ये है और वह चलते झारखंड में इकर विशेष रूप से प्रसिद्धि मिललक खाली इकर सपरावा और इकर नाच कर।
0: तो ये नाच के देखो धीरे धीरे तो अभी नाच लुप्त तो होते जाते।
1: हाँ,
0: अब तो देखे में कहीं नहीं मिलत है,
1: बहुत कम
0: ये जो नाच है लुप्त तो हुआ थे। और इखन जो कलाकार मन है जे इखन सिरजल है,
1: हाँ,
0: मन के कुछ कहे चाहे ले नाच कर भी
1: एकदम विशेष रूप से हम ये कहला।
0: हाँ,
1: कि नाच के बचा के रखे के लिए रोड़ मन आगे आऊ, जे हम जाना थी जे के हम सीख ली है उकरे उड़ के सिखाब और बनाए सुनाए के रोड़ मन के ट्रेंड करके रोड़ मन कहीं पर भी के दिखा सकेले, ताकि हमरे कर झारखंड कर संस्कृति जे बाँचल रहे। हम तो विशेष रूप से यह अनुरोध कर सब भाई बहन मन देखुया मन से।
0: जयप्रकाश भाई, और बात के सुन के ई लगल कि कलाकार के खाली नाच दिखाए के नहीं रहेला, बल्कि अपन पुरखा मनक विरासत के बचाए कर एक बड़ जिम्मेवारी भी रहेला का।
1: बिल्कुल।
0: और आज कर चमक धमक वाला युग में भी रौरे मन घोड़ा नाच के संजोय के राखी, ई हमर समाज ले बहुत बड़ गौरव कर बात है। और सरकार और समाज के भी ई कला के आगे बढ़ाए के लिए सोचे के चाहिए। तो रौरे अपन कीमती समय निकाल के हमरे संग ई जानकारी के साझा कर ली, और ई कला ऐसने थिरकते रहे और नवा पीढ़ी भी इकर से सीख लेवे। जाते जाते एक बार फिर से जोहार
1: रौरे मन सब सुनुया भाई मन के, फिर से हमर बटले भी जोहार।
2: भाकपा माओवादी के भाइयों और बहनों, सरकार आपके पुनर्वास के लिए लगातार प्रयासरत है, अतः आपसे आग्रह है कि वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुए सही निर्णय लेकर मुख्यधारा में लौट आइए। भयमुक्त जीवन का आनंद अपने परिवार के साथ लीजिए। साथियों, समय रहते विचार कीजिए और मुख्यधारा में लौट आइए। साथियों, आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जल, जंगल, जमीन की रक्षा मात्र हिंसा से ही हो सकती है? इतने सालों की प्रयास के बाद क्या हमारा आदिवासी समाज सुरक्षित हो पाया? आज सैकड़ों पूर्व माओवादी साथी हिंसा को पीछे छोड़कर समाज के बीच एक अत्यंत गरिमापूर्ण और कुशल जीवन बिता रहे हैं। प्रशासन आपकी सुरक्षा और गोपनीयता की 100% गारंटी देता है। हिंसा और कठिनाइयों का जीवन जोड़े और अपनों के पास लौट आए।

0: मुख्यधारा में आने के उपरांत आपको पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यधारा में आने के बाद आपको जेल जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी और आपकी सहायता की जाएगी। मुख्यधारा में आने के बाद आपको सारी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। स्वरोजगार के लिए भी आपको उचित अवसर प्रदान किए जाएंगे। पुनर्वास हेतु कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 9863475217। नंबर एक बार फिर नोट करें 9863475217।
1: तो शांति बहन हमरे मन कर जाय कर बेराब हुई गलग तो जाते जाते बता थी कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालकर लगे तब चले चाहिए जोहार।

0: ये आकाशवाणी कराची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची होगी प्रकाशित। झारखंड समावेशी आजीविका योजना से अति गरीब परिवारों को मिलेगा सशक्तिकरण। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, राज्य का समावेशी विकास मॉडल बना राष्ट्रीय उदाहरण। जेटेट की क्षेत्रीय भाषा सूची में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को शामिल करने के मुद्दे पर उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लंबी चर्चा, नहीं बन सकी सहमति। राज्य की खराब बिजली व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जताई चिंता। हजारीबाग में लंबे शटडाउन के विरोध में बिजली कार्यालय पहुंचे विधायक। और जापान में आयोजित होने वाले महिला अंडर 18 एशिया कप के लिए घोषित भारतीय हॉकी टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ियों का हुआ चयन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बैठक की। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त 2026 को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के साथ एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ एवं डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची भी जारी की जाएगी, जिसे सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 23 मई से 2 सप्ताह तक अनमैप्ड मतदाताओं की सूची सभी मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित की जाएगी और संबंधित मतदाता बीएलओ से संपर्क कर मैपिंग करा सकते हैं।
5: वर्तमान 2024 का मतदाता सूची में किन किन मतदाता का नाम है उनका SAR तथा 2003 का मतदाता सूची का नाम से मैपिंग करना एक महत्वपूर्ण विषय है। SAR प्रोसेस में कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट उनका डिक्लेरेशन फॉर्म का साथ में देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। झारखंड में अभी तक लगभग 75% मतदाता का मैपिंग हो गया। सभी अनमैप्ड मतदाता का सूची 23 तारीख से सभी झारखंड में सभी बूथों पर वो प्रकाशित होगा। किसी का नाम अनमैप्ड होगा तो तुरंत आपका BLO से संपर्क करते हुए उनका नाम का मैप करेंगे सुनिश्चित करें।
4: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि राज्य में अति गरीब एवं वंचित परिवारों के सशक्तिकरण के लिए झारखंड समावेशी आजीविका योजना की शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि झारखंड का समावेशी विकास मॉडल अब पूरे देश के लिए उदाहरण बन चुका है और भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने का निर्णय लिया है। योजना के तहत अगले चरणों में राज्य के हजारों अति गरीब परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में भोजपुरी, मगही, मैथिली और

0: अंगिका को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल करने के मुद्दे पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। इस मामले को लेकर आज हुई 5 मंत्रियों की हाई लेवल कमेटी की बैठक में फैसला नहीं हो सका है। बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं के मौजूदा भाषा पैटर्न, विशेषकर पार्ट 2 के नियमों पर गंभीर चर्चा हुई। अब इस पूरे भाषाई विवाद पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले पर निर्भर माना जा रहा है। झारखंड में उच्च शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने को लेकर आयोजित 2 दिवसीय कुलपति सम्मेलन में शोध, रोजगार उन्मुखी शिक्षा, तकनीकी बदलाव और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान शिक्षा विभाग के सचिव राहुल पुरवार ने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके।
1: राजकीय विश्वविद्यालय विधेयक पास हुआ है, उसको आगे इम्प्लीमेंट करना है अपने अपने विश्वविद्यालयों में। राज्य सरकार की वेलफेयर की स्कीम्स हैं जो हमारे छात्रों के लिए हैं, उन सब के बारे में बताना है, सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी क्षमता वृद्धि हो सके, वो कम्पीट कर सकें देश के अन्य अच्छे कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों के कंपेरिजन में।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रांची में इस्कॉन द्वारा आयोजित श्री कृष्ण उत्सव में शामिल हुए और कीर्तन श्रवण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस्कॉन से उनका गहरा जुड़ाव रहा है और संस्था समाज हित में सराहनीय कार्य कर रही है। राज्यपाल ने इस्कॉन से जनजातीय समाज को भी अधिक से अधिक जोड़कर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ऊर्जा विभाग को पत्र लिखकर राज्य की खराब बिजली व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के बीच जनता अनियमित बिजली आपूर्ति, लो वोल्टेज और ट्रांसफार्मर खराब होने की समस्या से परेशान है तथा सरकार से तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की है। इधर हजारीबाग में 10 घंटे से अधिक बिजली कटौती से नाराज हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि लगातार बिजली कटने से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
2: शटडाउन का जो इनका टाइम पीरियड रहता है, उन्होंने सिर्फ 1 से 1.5 घंटा 24 घंटा में शटडाउन लेने का बात कहे हैं कि 22 घंटा हम लोग बिजली देंगे। कहीं कहीं मेंटेनेंस के नाम पे बहुत सारा कमियां है, पेड़ उड़ का उसको भी ध्यान में देने को कहा गया है। तो हर तरह का आश्वासन नहीं मिला है, नहीं तो रोज हम आएंगे। अगर रात में आज लाइट कटेगा तो हम GM साहब के घर में हम जाने वाले हैं, ये भी बता दे रहे हैं। जब जब लाइट कटेगा उनके घर के बाहर बैठे मिलेंगे, उनको ये भी बोल के आया।
0: जमशेदपुर में पर्वत और नदी संरक्षण विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर के पर्यावरणविद, जल विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने कहा कि पर्वत भारत की पहली आधारभूत संरचना है और इनके बिना नदियों तथा पर्यावरण का अस्तित्व संभव नहीं है।
3: आज का दिन जैव विविधता दिवस है। पहाड़ और नदियाँ दोनों जैव विविधता का स्रोत है। जलीय जीवों की रक्षा नदियाँ करती हैं और पहाड़ों पर अन्य जीवों की रक्षा पहाड़ करते हैं। और आज तक नदियों की सुरक्षा संरक्षण के लिए कोई कानून नहीं है, पहाड़ों के सुरक्षा संरक्षण के लिए कोई कानून नहीं है, तो ये सम्मेलन आज उसी कानून बनाने के प्रारूप पर विचार करेगा।
0: हीट वेव को देखते हुए रांची सदर अस्पताल में विशेष हीट स्ट्रोक वार्ड बनाया गया है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश कुमार सिंह ने कहा कि फिलहाल हीट स्ट्रोक के मामले कम हैं, लेकिन अस्पताल पूरी तरह तैयार है।
4: कल थोड़ा टेम्परेचर निश्चित रूप से ज्यादा था, अभी जो देख रहे हैं उसमें हीट स्ट्रोक वाली संख्या काफी कम है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जहां तक तैयारी की बात है, उससे संबंधित जो भी जिस चीज की जरूरत है वो सारी व्यवस्था सदर अस्पताल में कर दी गई, इसलिए मरीजों को किसी भी तरह का हीट स्ट्रोक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
0: और अब मौसम का हाल। मौसम केंद्र रांची ने पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, कोडरमा और सरायकेला खरसावां जिलों में अलर्ट जारी किया है।

0: मौसम विभाग के अनुसार अगले एक से तीन घंटों के भीतर इन क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश होने की संभावना है। साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। रांची के धुरवा स्थित बंगीय सांस्कृतिक परिषद विद्यालय में 15 दिवसीय रांची जिला ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। शिविर में मलखंब, योग, खो खो, कबड्डी, आत्यापात्य और बैडमिंटन के बेसिक कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जापान में होने वाले महिला अंडर 18 एशिया कप के लिए घोषित भारतीय हॉकी टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। हॉकी झारखंड ने इसे राज्य की हॉकी परंपरा और सरकारी प्रशिक्षण व्यवस्था की बड़ी उपलब्धि बताया है। गौरतलब है कि भारत अपना पहला मुकाबला 30 मई को मलेशिया के खिलाफ खेलेगा, जबकि टूर्नामेंट 29 मई से 6 जून तक जापान में आयोजित होगा। नोएडा में आयोजित 11वीं नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ी रुद्रांश शर्मा ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने रुद्रांश को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची होगी प्रकाशित। झारखंड समावेशी आजीविका योजना से अति गरीब परिवारों को मिलेगा सशक्तिकरण। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, राज्य का समावेशी विकास मॉडल बना राष्ट्रीय उदाहरण। जेटेट की क्षेत्रीय भाषा सूची में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को शामिल करने के मुद्दे पर उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लंबी चर्चा, नहीं बन सकी सहमति। राज्य की खराब बिजली व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जताई चिंता। हजारीबाग में लंबे शटडाउन के विरोध में बिजली कार्यालय पहुंचे विधायक। और जापान में आयोजित होने वाले महिला अंडर 18 एशिया कप के लिए घोषित भारतीय हॉकी टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ियों का हुआ चयन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे देवघर संवाददाता।
1: देवघर में बच्चों को खेल की भावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेडियम निर्माण की ओर गति बढ़ गई है। सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार से जमीन उपलब्ध करने और सहयोग करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संसाधन उपलब्ध कराए तो देवघर में आधुनिक स्टेडियम का काम शुरू हो सकता है। उन्होंने बताया कि खेल को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अपने मद का पूरा राशि देने की बात कही है।
2: 500 करोड़ का जो है बड़ा स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाऊंगा जिसमें फुटबॉल खेलेंगे, उसी में सांसद जी का पूरा उपयोग आप ही के विधानसभा में।
1: वहीं दूसरी तरफ देवघर में गर्मी में पेयजल और बिजली की किल्लत न हो इसके लिए नगर निगम बहुत तेजी से काम कर रहा है। मेयर रवि महतो ने कहा कि पंप हाउस की मरम्मत और पुनासी डैम से जलाशय की व्यवस्था देवघर में की जा रही है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो।
3: पानी की समस्या तभी दूर हो सकता है जब पुनासी जलाशय पूर्ण तरह से जो है चालू होगा। उसी कार्य जो देनी थी उसको कार्य को हम तेजी में कर दिए हैं। एनओसी का कुछ प्रॉब्लम था, एक मिल चुका एनओसी नहीं मिला, उसको लेकर के भी हम लगे हुए हैं। और फिलहाल अभी जो सप्लाई पानी चल रहा है हमारे नदी से उसमें हम समय समय पर पानी पुनासी से छोड़वा करके नदी में पानी ला करके शहर में जलापूर्ति कर रहे हैं। और बिजली को लेकर के मेगा पावर जो कम मिल रही थी उसमें भी हम लोग जीएम से सीएमडी से बात करके उसको भी अभी फिलहाल वर्तमान में हम पहले से ठीक कर दिए हैं। बिजली बिल का काफी गड़बड़ी का शिकायतें आ रही थी, कैंप के माध्यम से उसका भी समाधान हमने किया और कर भी रहे हैं। हमारे पास संसाधन की थोड़ी कमी है नगर निगम में, उस जितनी संसाधन है उसमें हम लोग लगे हुए हैं कि हमारे शहर कैसे साफ सफाई रहे। हमारा धार्मिक स्थल है, यहाँ पे सभी जगह से हमारे यहाँ पूजा करने के लिए व्यक्ति आते हैं, उनको स्वच्छ वातावरण में बाबा का दर्शन करें।
1: वहीं देवघर को धार्मिक सर्किट से जोड़ने की दिशा में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। एनएचआई के महाप्रबंधक विजय कुमार ने बताया कि देवघर बासुकीनाथ और गिरिडीह के मधुबन सहित कई धार्मिक स्थलों को एक सर्किट के रूप से जोड़ा जा रहा है, जिसके कारण सड़कों की चौड़ीकरण सहित कई तरह के कनेक्टिविटी पर विशेष काम किए जा रहे हैं।
4: अभी इंडिया में हम लोग रिलीजन सर्किट बना रहे हैं, ये वो रूट्स होंगे जिसपे कि जो पवित्र धाम है हमारे, जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं या बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं या जो जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं, उन सब का जो पवित्र तीर्थ स्थान है उस सब को भी कनेक्ट करने की बात चल रही है, जिसके लिए हमारा एनएचआई भी उसमें सहयोग दे रहा है। जैसे देवघर बासुकीनाथ है, ये बाबा धाम और बाबा बासुकीनाथ इन दोनों जगहों को जोड़ता है। इसके अलावा बिहार में भी बौद्ध सर्किट बन रहा है जिससे राजगीर और सारनाथ वगैरह सब जुड़ रहे हैं। इसी तरह से पारसनाथ को भी जोड़ने का भविष्य में योजना बनाई जा रही है। अभी बासुकीनाथ धाम में कांवड़िया पथ अलग से बना रहे हैं जो 3.5 मीटर चौड़ी है और बासुकीनाथ देवघर से सटाकर बनाया जा रहा है।
1: भीषण गर्मी के बावजूद देवघर में श्रद्धालुओं की भीड़ जारी है। प्रशासन ने मैना धाम, बासुकीनाथ, नंदन पहाड़ और नौलखा मंदिर में पेयजल शेड और मेडिकल कैंप की व्यवस्था कर दी है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। संथाल में इन दिनों गर्मी की छुट्टी के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है और उन्हें बेहतर सुविधा मिले इस ओर जिला प्रशासन लगा हुआ है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
0: अभी आप सुन रहे थे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

ये आकाशवाणी कराची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा। आज आप सुनेंगे हो भाषा में।

हो भाषा में अभी आपने सुना कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुने प्रायोजित

0: பார்க்கிறோம் சஹியா.
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड, स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार है।

0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का सहिया रेडियो कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोता भाई बहन को चंपा मुनि का जोहार। इस कार्यक्रम में हम आपको जन स्वास्थ्य से जुड़ी अहम जानकारियों से अवगत कराते हैं। आज के अंक में हम खास चर्चा करेंगे सामुदायिक स्तर पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं, स्वास्थ्य कार्यक्रमों और चिकित्सा सेवाओं को पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाने वाली सहिया बहनों और उन्हें मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के बारे में, जिससे राज्य भर के सहिया बहनों का मनोबल व आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इससे जुड़ी हर जानकारी आपसे साझा करने में हमारा साथ दे रही हैं हमारी पूर्णिमा बहन। जोहार पूर्णिमा बहन।
1: आपको भी जोहार चंपामणि दीदी। आपकी बात में हम यह जोड़ना चाहते हैं कि प्रोत्साहन राशि से सहियाओं का मनोबल और आत्मविश्वास ही नहीं बढ़ता, बल्कि उनकी क्षमता और उत्साह में भी बढ़ोतरी होती है। सहियाओं को अपने कार्य क्षेत्र में स्वास्थ्य से जुड़ी हर काम के मुताबिक प्रोत्साहन राशि दिए जाने का मकसद यही है कि सहिया बहनें सामुदायिक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाएं, काम में उनकी रुचि बढ़ती रहे, उन्हें आर्थिक मजबूती मिले और वे जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में सहायता करें।
0: पूर्णिमा बहन, हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी जरूरी है कि अलग अलग प्रकार के 39 कार्यों के लिए सहियाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सहिया बहनों की सक्रियता के कारण अब समाज के लोग भी स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक हो रहे हैं।
1: चंपा मुनि दीदी, यह कार्यक्रम हमारे श्रोताओं के साथ साथ राज्य भर की सहिया बहनें भी सुनती हैं। इसलिए हमें उन तक सहिया प्रोत्साहन राशि के प्रावधान के बारे में अन्य जरूरी जानकारियां पहुंचाने के लिए सहिया कार्यक्रम की राज्य समन्वयक अकय विंज जी से जरूर मिलना चाहिए, ताकि उनसे मिली जानकारी हमारे श्रोताओं और सहिया बहनों के काम आए।
0: पूर्णिमा बहन, बहुत बढ़िया सुझाव है, शुभकाम में देर नहीं, चलिए अकय विंज जी से मिल ही लेते हैं।
1: जोहार अकय दीदी, लगता है कि हम सही समय पर पहुंचे हैं कि आपसे भेंट हो गई।
2: आओ पूर्णिमा, बहुत दिनों बाद आई हो, जरूर कोई बात होगी।
1: अकय दीदी, असल में आज हम सहिया रेडियो के श्रोताओं को सहिया प्रोत्साहन राशि और उसके उद्देश्य के बारे में जागरूक कर रहे हैं। इसी बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहते हैं, ताकि श्रोता भी जान सके।
2: पूर्णिमा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बताओ क्या जानना चाहती हो मुझसे।
1: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को यह बताएं कि सहियाओं को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है और उसकी शुरुआत कब हुई।
2: देखिए, मैं झारखंड में सहिया के इतिहास को दोहराना चाहूंगी कि 2005 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आया, लेकिन उससे पहले 2003-04 में ही सहिया कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड में हो चुकी थी, जो कि उरमांझी, अनगढ़ा और चुरचू ब्लॉक जो हजारीबाग का है, वहाँ पर ये कार्य चल रहा था। और जब 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई, तो आशा कार्यकर्ता के रूप में सहियाओं को रखा गया और सहिया कार्यक्रम आरंभ हुआ। सहिया का अर्थ ही है सुख दुख की साथी, और जब हम आशा का फुल फॉर्म देखते हैं तो वो जो आशा है वो एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है। वो स्वास्थ्य के कार्यकर्ताओं के लिए एक वो एक्टिविस्ट के रूप में है। तो शुरुआत में 2003

0: अलग अलग गतिविधियों के लिए कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान हुआ और आज ये प्रोत्साहन राशि न सिर्फ गतिविधियों के लिए है पर सहियाओं की बैठकों के लिए भी आरंभ की गई है, जिसमें JSY है, RCH के जो काम है उसके लिए है, बीमारियों के लिए है और गैर संचारी बीमारियों के भी उत्प्रेरण और कार्यों के लिए सहिया को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
1: अब यह बताएं कि सहियाओं को प्रोत्साहन राशि देने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्या सहियाओं को हर महीने प्रोत्साहन राशि मिलती है?
0: चूंकि सहिया हर महीने कार्य करती हैं, तो सहियाओं को हर महीने प्रोत्साहन राशि मिले इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया बनाई गई है और SOP के माध्यम से जिलों से लेके गांवों तक पहुंचाया गया है कि सहिया अपने कार्यों को जो महीना भर वो कर रही है उसका विवरणी लेके महीना के अंत में लगभग 24 से 26 तारीख के बीच में क्लस्टर बैठकों में जाती हैं अपने प्रतिवेदन अपने रजिस्टर को लेके सहिया रजिस्टर को लेके जिसमें वो अपनी गतिविधियों को लिखती हैं और उस रजिस्टर के माध्यम से सहिया साथी अपने क्लस्टर की 15 सहिया का जो कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि है उसका आकलन करके एक सूची बनाती है और सहिया साथी और BTT के माध्यम से ये पूरा जो प्रपत्र बनता है भुगतान के लिए प्रोत्साहन राशि का वो ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर को दिया जाता है और ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के माध्यम से संचिका बढ़ा करके ब्लॉक अकाउंट मैनेजर के माध्यम से राशि सहिया को जो दी जाती है उसकी प्रोत्साहन राशि वो कैश नहीं दिया जाता है वो चेक नहीं दिया जाता है परंतु ये DBT के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर जिसमें सहियाओं का आधार नंबर इंगित होता है और अब जो सिंगल नोडल एजेंसी है उसके माध्यम से DBT के प्रोसेस से सहिया को प्रोत्साहन राशि का भुगतान हर माह किया जा रहा है।
1: सहिया बहनों को किन-किन कार्यों के लिए प्रोत्साहन राशि मिलती है? थोड़ा इस बारे में भी बताएं।
0: जैसे मैं जब आपने सबसे पहला सवाल किया था उसमें बताया था कि हमने शुरुआत की मातृ स्वास्थ्य मृत्यु मातृ स्वास्थ्य से शिशु स्वास्थ्य से क्योंकि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य था कि मातृ मृत्यु दर को कम करना शिशु मृत्यु दर को कम करना और प्रजनन दर को संतुलित करना और इसी के परिवेश में हम जो बोलते हैं RMNCH+N मतलब रिप्रोडक्टिव मतलब प्रजनन स्वास्थ्य एम मतलब मेटरनल स्वास्थ्य मातृ स्वास्थ्य न्यूट्रिशन न्यूबॉर्न बच्चे शिशु नवजात बच्चे किशोरों के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं पोषण से संबंधित जो कार्यक्रम चल रहे हैं जैसे कुपोषण उपचार केंद्र में भी सहयोग करके लेके जाती है। इसके साथ साथ जो TB पेशेंट्स को चिन्हित करना उनको रजिस्टर करना उनको दवाई दिलवाने में सहिया को पैसा मिलता है मलेरिया का दवाई के लिए फाइलेरिया का दवाई खिलाने में सहिया को पैसा है। उसके बाद जो कुष्ठ रोग है कुष्ठ रोग को चिन्हित करने में कुष्ठ रोगियों को दवाई खिलाने में सहिया को पैसा है और अब तो गैर संचारी रोग जो अब हमारे बीच में है जैसे डायबिटीज है हाइपरटेंशन है कैंसर है तो इसके लिए सहिया CBAC फॉर्म भरती है उसमें उसको पैसा है। उसके साथ साथ सहिया बैठकें करती हैं जैसे माँ बैठक मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन जो धात्री माताओं के साथ स्तनपान के लिए सहिया बैठक करती है PLA बैठक है उसके लिए सहिया को पैसा है। सर्वे करती हैं डोर टू डोर सर्वे उसके लिए उन्हें पैसा है और उसके साथ साथ जो सामुदायिक गतिविधियां करती हैं जिसमें उनको विभिन्न रजिस्टर भरने होते हैं और विभिन्न बैठकों में जाना होता है उसके लिए एक मुश्त सामुदायिक गतिविधि के लिए 2,000 रुपया है। बहुत जगह लोग सोचते हैं कि सहिया को सिर्फ 2,000 रुपया मिलता है ये नहीं बात है ये गलत धारणा है। 2,000 रुपया सामुदायिक गतिविधियों का है 300 रुपया ANC का है 300 रुपया JSY का है। ऐसे अगर हम देखते हैं तो कोई भी सहिया एक महीने अगर वो बेहतर काम करती है तो वो लगभग 5,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि अपने लिए पाती है।
1: राज्य भर में सहिया बहनों को प्रोत्साहन राशि दिलाने के लिए अस्पतालों में सहिया हेल्प डेस्क से किस तरह की मदद मिलती है?
0: सहिया हेल्प डेस्क जो जिला अस्पतालों में बनाया गया है उसका उद्देश्य ना सिर्फ केवल पेशेंट लोगों को जो उस अस्पताल में आते हैं मार्गदर्शन

0: दिलाना है, परंतु एक और उद्देश्य है कि जो हमारी सहिया बहनें जिले अस्पताल तक पहुंची हैं और उनको बहुत बार जो अपने प्रखंड में काम करती हैं, प्रखंड में अगर वो डिलीवरी के लिए लोगों को लेके आती हैं तो उसका पैसा मिल जाता है, परंतु कोई जब जटिल प्रसव होता है और उस समय में महिला को लेके वो जिला अस्पताल में आती हैं और उस समय उसका पैसा नहीं मिला या किसी कारण से कोई पैसा रुक गया, तो सहिया हेल्प डेस्क में आकर के सहिया अपना जो ग्रीवांस है वो रख सकती हैं, वहाँ के रजिस्टर में लिख सकती हैं और जिसको कि हॉस्पिटल मैनेजर और डीपीसी हर महीने देखते हैं और फिर उनके भुगतान की प्रक्रिया को फिर पूरी की जाती है ताकि उनका जो पैसा रुका हुआ है वो उनको मिल सके। तो इस तरह से सहिया हेल्प डेस्क सहिया के प्रोत्साहन राशि भुगतान में भी जो अवरोध होता है उसमें मदद करता है।
1: अब एक और ज़रूरी सवाल यह है कि अगर किन्हीं कारणों से सहियाओं को समय पर प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाई हो, तो वे उसे कैसे प्राप्त कर सकती हैं?
0: पहली बात तो जैसे मैंने बताया कि सहिया हेल्प डेस्क है, वहाँ पे जाके वो कर सकती हैं। दूसरा है कि वो 104 जो हमारा टोल फ्री नंबर है वहाँ पर भी अपना शिकायत रख सकती हैं कि हमारा एक महीने से भुगतान नहीं हो पाया। तीसरा है कि अपने क्लस्टर मीटिंग में भी वो बात कर सकती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सहिया का क्लेम होता है लगभग 4-5 गतिविधि के लिए और उसको पैसा सिर्फ 2 गतिविधि का मिलता है और 2 बाकी रह जाता है, तो ऐसे समय में पुनः क्लस्टर बैठक में वो सहिया साथी को अपने प्रपत्रों को दिखा करके पुनः उसका क्लेम कर सकती है। साथ ही हर एक सहियाओं के पास में, मैं जो राज्य कार्यक्रम समन्वयक हूँ, मेरा फोन नंबर है कि अगर जरूरत पड़े कि कोई भी आपके पास शिकायतें हैं तो आप डायरेक्ट हमारे साथ भी बात कर सकते हैं फोन के माध्यम से, ताकि हम लोग उनके शिकायतों का निपटारा कर सकते हैं। और अब तो मैं बताना चाहूंगी कि बहुत जल्दी सभी सहियाओं को टैब मिल रहा है और सहिया ऐप के माध्यम से वो अपनी गतिविधियों को कर पाएंगे और उसमें वो दिख जाएगा कि उन्होंने जो काम किया है उसके लिए उनका इनवॉइस बन के आएगा कि हर एक सहिया को कितना पेमेंट हर महीने होना है और वो उसको क्लेम कर सकते हैं। और उस ऐप को हम डैशबोर्ड के माध्यम से जिला में और स्टेट में भी देख सकेंगे कि किस सहिया को कितना पैसा भुगतान हुआ और कितना पैसा बाकी है, ताकि हमारी सहिया जो दिन रात मेहनत करके समाज की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, उनको सही समय में उनके इज्जत के साथ पैसा मिल सके।
1: अकेमिन जी, आज आपने सहिया प्रोत्साहन राशि के बारे में जो इतनी उपयोगी जानकारियाँ हमारे साथ साझा की है, वह सीधे हमारे श्रोताओं और सहिया बहनों तक पहुँची है। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो बहन, हमारे श्रोताओं और सहिया बहनों को सहिया प्रोत्साहन राशि के बारे में विस्तार से जानकारी मिल गई। इससे अच्छी बात और क्या होगी?
1: चंपा मुनि दीदी, एक और बढ़िया बात यह है कि सहिया सहायता निधि के माध्यम से सहिया बहनों को स्वास्थ्य शिक्षा में आगे की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है।
2: आप ठीक कह रही हैं पूर्णिमा बहन। इसके साथ ही असाध्य रोग होने पर इलाज के लिए भी सहियाओं को गंभीर बीमारी योजना के तहत निर्धारित सहायता राशि दी जाती है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलती है।
1: सही बात है दीदी। अब श्रोता भाई बहन को बता दे कि आप स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर फोन कर सकते हैं।
2: तो प्यारे श्रोता भाई बहन, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे जन स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तो अब हमें दीजिए इजाजत। जोहार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड, स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकार है।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सहिया। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 8 बज रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत कर रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।
5: हर

फिल्मी गीतों के प्रोग्राम रजनीगंधा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज से, बोल आनंद बख्शी के तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। फिल्म का नाम आया सावन झूम के।

आरजू। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और इस गीत को संगीत से सवारा था अनु मलिक ने। आवाज थी अलका याग्निक की।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे ये नगमा, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने। फिल्म थी मेरी हमसफर और इस गीत को गाया था लता मंगेशकर और मुकेश ने। और आइए अब चले कार्यक्रम के आखिरी गीत की तरफ, जिसे हमने लिया है फिल्म बागबान से। शब्दकार समीर, संगीतकार आदेश श्रीवास्तव। इस गीत में आवाजें आप सुनेंगे उदित नारायण और अलका याग्निक की।

इसी गीत के साथ ही दोस्तों फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा अब खत्म होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त रौनक जहां के साथ। नमस्कार, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।

0: सुर्खियों में
1: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी और आज की चर्चा का विषय है साइप्रस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, सुदृढ़ होते द्विपक्षीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर गुलशन सचदेवा इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर सचदेवा, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: शुक्रिया।
1: प्रोफेसर सचदेवा, साइप्रस के राष्ट्रपति श्री निकोस क्रिस्टोड्यूलिडेस भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। ऐसे समय में जब भारत और यूरोपीय संघ 2027 तक की शुरुआत तक अपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं, साइप्रस इसमें क्या भूमिका निभा सकता है, विशेष रूप से तब जबकि वर्तमान में वह यूरोपियन संघ परिषद का अध्यक्ष है।
2: ये उनकी जो यात्रा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो ईयू प्रेसिडेंसी की यूरोपियन काउंसिल की वो 6 मंथ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है, उसमें हर 6-6 महीने के बाद वहां पे जो है नया कंट्री जो है उसका प्रेसिडेंसी कंट्री बनता है। तो अभी इस साल के पहले 6 महीने की प्रेसिडेंसी साइप्रस के पास है, तो उसका मतलब यह है कि जितनी भी मीटिंग्स वहां पे यूरोपीय संघ की जो होती है वहां पे काउंसिल पे, उनकी जो अध्यक्षता है उन मीटिंग्स की, सब वो प्रेसिडेंसी कंट्री करता है। और उसका हर प्रेसिडेंसी कंट्री अपना एक एजेंडा लेके आता है कि मैं इस 6 महीने के अंदर ये चीजें जो है वो कोशिश करेंगे उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक। तो वैसे तो ये रूटीन मैटर है, हर 6-6 महीने में कंट्री जैसे बदलते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमारे संबंध हैं वो यूरोपीय संघ के साथ बहुत ही प्रगाढ़ हुए हैं पिछले कई सालों में। और अभी हमने देखा था जब जनवरी में भारत में यूरोपीय संघ और भारत की जो समिट मीटिंग हुई थी, उसके बाद से नया रोड मैप हमारा 2030 का उनके साथ उसको अपनाया गया है। और जैसा आपने कहा कि मुक्त व्यापार जो बात है ट्रेड एग्रीमेंट की, उसके नेगोशिएशंस कंप्लीट हो गए हैं, फॉर्मेलिटीज वहां पे चल रही हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी है उसको क्रियान्वित किया जाए और उसमें जो भी प्रेसिडेंसी कंट्री है निश्चित तौर से उनका एक रोल रहता है, उसको थोड़ा आगे पुश जल्दी कर सकते हैं, तो उसमें साइप्रस भी अपनी भूमिका उसमें अदा कर सकता है। मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री का भी दौरा भी था यूरोप का, जिसमें 4 यूरोपीय देशों में गए थे, उसमें भी अपने संबंध है, द्विपक्षीय संबंध है उन देशों के साथ आगे बढ़ाए हैं। और उसी कड़ी में मुझे लगता है ये जो अभी साइप्रस के राष्ट्रपति डोलिडिस का यहाँ पे जो दौरा है, उसी की श्रृंखला में मुझे लगता है कि एक एक देश के साथ हम बिल्कुल अपने संबंध प्रगाढ़ करते जा रहे हैं। और आपको याद होगा पिछले साल प्रधानमंत्री भी साइप्रस का दौरा करके 2025 में वहाँ पे आए थे, तो संबंध काफी करीब हुए हैं पिछले कुछ सालों में।
1: प्रोफेसर सचदेवा, इससे पहले कि मैं आपसे अपना अगला प्रश्न पूछूं, आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत साइप्रस की मित्रता और भारत ईयू एफटीए में साइप्रस की भूमिका के बारे में क्या कहा।
3: भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा। आज जब भारत और यूरोप अपने संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं, तो साइप्रस इस समय न केवल यूरोपियन यूनियन काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है, बल्कि भारत और पूरे यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट गेटवे के रूप में उभर रहा है।
1: प्रोफेसर सचदेवा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस संयुक्त प्रेस वक्तव्य में एक और घोषणा की कि भारत और साइप्रस अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक ले जाने का उन्होंने निर्णय लिया है और अगले 5 वर्षों में साइप्रस में भारत में होने वाले निवेश को दुगना करने का लक्ष्य रखा है। चलिए पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
3: फ्रेंड, साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं।
1: तो प्रोफेसर सचदेवा, जैसे भी हमने प्रधानमंत्री को सुना और हम भी बात कर रहे थे कि दोनों देशों ने इन्वेस्टमेंट का जो लक्ष्य है उसको दुगना करने का एक निर्णय लिया है और जो हमारे द्विपक्षीय संबंध है उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर

0: एलिवेट करने का जो उन्होंने एक निर्णय लिया है, इन दोनों ही फैसलों पर आप क्या सोचते हैं?
1: इनफैक्ट ये एक काफी सोची समझी नीति मुझे लगता है भारत की है यूरोप के प्रति, जो काफी अभी बिल्कुल उभर कर आ रही है। आप जानते हैं कि हमारा यूरोपीय संघ के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2004 से है, और पहले हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कुछ बड़े देशों के साथ होती थी, जैसे फ्रांस के साथ थी, जर्मनी के साथ थी, और यूके जब उनका हिस्सा होता तो उनके साथ थी। वो साझेदारी अभी भी है। पिछले कुछ सालों में हमने कई और देशों के साथ पार्टनरशिप किया स्ट्रेटेजिक, जैसे इटली के साथ किया, ग्रीस के साथ किया, पोलैंड के साथ किया, और अभी जब प्रधानमंत्री वहां गए थे तो दो और पार्टनरशिप्स को, नीदरलैंड्स को, स्वीडन को भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील किया। उसी कड़ी में अभी ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइप्रस के साथ है उसको भी एलिवेट किया गया है, और उसके साथ डिफेंस का एक नया रोड मैप भी इनके साथ तैयार किया गया है। क्योंकि यूरोपीय संघ के अंदर यह है कि कॉम्पिटेंसीज कुछ चीजों की जो है यूरोपीय संघ के पास है, बाकी चीजों की, क्योंकि सब अलग अलग इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्रीज हैं, तो उन सब चीजों की बात आप उस देश के साथ कर सकते हैं। तो हम यूरोपीय संघ के साथ बात कर रहे हैं, उनके साथ हमारी साझेदारी है, अलग अलग जो इम्पोर्टेंट देश हमको लगता है उनके साथ हम अपने रिलेशंस को एलिवेट कर रहे हैं। और जैसे इंडिया नॉर्डिक समिट में था तो हमने एक समूह के साथ भी वहां पे उनके साथ अलग से बातचीत कर रहे हैं। तो क्योंकि साइप्रस जो है हालांकि एक छोटा सा टापू है, छोटा सा देश है, लेकिन भारत की दृष्टि में मुझे लगता है क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री पिछले साल भी गए थे वहां पे और अभी वहां के राष्ट्रपति यहाँ पे हैं और इस रिलेशनशिप को अपग्रेड किया गया है, इसका मतलब यह है कि हम सामरिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक जगह पे स्थित हैं और मेडिटेरेनियन के अंदर इसका काफी बड़ा रोल हो सकता है। और जिस तरीके से निवेश की बात है, क्योंकि वहां के जो नियम कायदे कानून है मॉरिशस की तरह काफी खुले हैं, उसकी वजह से वहां से निवेश चाहे वो साइप्रस का हो चाहे दूसरे देशों के व्यापारी हो, वो भी साइप्रस के थ्रू काफी निवेश दूसरे देशों में करते हैं। तो उसी का कारण है कि काफी निवेश वहां से, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा हमारे टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से साइप्रस है, और अगर उनके साथ हमारे रिश्ते और मजबूत होते हैं और एक पूरा अच्छा प्लान बनता है तो निश्चित तौर से वहां से निवेश और भारत की तरफ अधिक आ सकता है। और साइप्रस जो हमारा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो एक गलियारा की हम बात करते हैं कनेक्टिविटी के लिए, उसके लिए भी जो साइप्रस है काफी भूमिका अदा कर सकता है भारत और यूरोप को जोड़ने के लिए, क्योंकि वो ऐसी स्ट्रेटेजिक जगह पे है जहां पे मेडिटेरेनियन के अंदर है और अफ्रीका के देश भी वहां से बहुत दूर नहीं है और पश्चिम एशिया के देश भी वहां से पास हैं। तो इसलिए मुझे लगता है सोची समझी नीति के मुताबिक भारत ने इनके साथ अपनी रिलेशंस को अपग्रेड किया है।
0: इससे पहले कि बातचीत को आगे बढ़ाएं, सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों के बारे में क्या कहा।
2: रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: तो प्रोफेसर सचदेव, जैसे भी हमने सुना प्रधानमंत्री को कि रक्षा और सुरक्षा दोनों की जो उन्होंने बात कही, डिफेंस कोऑपरेशन की दोनों देशों के बीच में बात कही, तो आज दोनों देशों के बीच में एक काउंटर टेररिज्म पर भी एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के लिए भी एक एमओयू साइन हुआ है। साथ ही दोनों देशों ने डिफेंस कोऑपरेशन के लिए भी एक रोडमैप तैयार किया है 2026 से 2031 तक के बीच में। तो भारत साइप्रस संबंधों के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में रक्षा और समुद्री सुरक्षा इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
1: एक तो ये है क्योंकि पूरी दुनिया का, जैसा आप जानते हैं, वातावरण काफी तनावपूर्ण है और क्योंकि साइप्रस का अपना एक तनावपूर्ण हिस्ट्री रही है, और तीसरी बात यह है क्योंकि जैसे यूक्रेन का युद्ध अभी चल रहा है और उसके चलते यूरोप के जितने भी देश हैं और साइप्रस भी उसका हिस्सा है, तो उसमें पूरे का पूरा आप देखते हैं कि जो सुरक्षा का जो प्रबंधन है पूरे यूरोप के अंदर, उसके अंदर बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। और ट्रांस अटलांटिक जो पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ और काफी जो नेटो के देश हैं यूरोप के अंदर उनकी भी, उसमें भी एक तरीके का तनाव, एक तरीके की थोड़ी दिक्कतें उसमें आ रही हैं। तो उसमें पूरे यूरोप के अंदर एक तो यह है कि अपनी सुरक्षा को, अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी ऑटोनॉमी को, उसको बढ़ाने के लिए सुरक्षा को और खासतौर से डिफेंस जो इंडस्ट्री को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और अभी कुछ महीने पहले वहां पे एक वो जो व्हाइट पेपर पूरा यूरोपीय संघ ने जो निकाला था अपने डिफेंस के लिए, उसमें ये कहा गया था कि

0: आने वाले सालों में 2030 तक यूरोप के पूरे देश मिलके 800-900 बिलियन यूरो और ज्यादा डिफेंस के ऊपर खर्च करेंगे। तो हम देखते हैं कि अभी जैसे प्रधानमंत्री पहले भी गए थे वहां पे चार देशों में जैसे मैंने कहा, और जर्मनी और फ्रांस के साथ भी हमारे अच्छे सुरक्षा संबंध बड़े हैं पहले डिफेंस के, तो उसमें जो पूरी नई पूरा डिफेंस इंडस्ट्री वहां पे जो पूरा बढ़ रहा है, काफी उसके अंदर निवेश हो रहा है। और भारत की हमारी जो है अपनी एम्बिशन है कि एक मेक इन इंडिया के अंदर हमारा डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, डिफेंस इंडस्ट्री को हम मजबूत कर रहे हैं, और काफी अभी पिछले कुछ सालों में निर्यात भी हमारा डिफेंस से हुआ है। तो ये पूरा एक प्लान है जिसके अंदर हम उसको साइप्रस को अलग करके भी देख सकते हैं, और पूरे यूरोप के साथ जो है हमारा जो संबंध, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला, उसी पूरे संबंध के अंदर व्यापार की बात, निवेश की बात, तकनीक की बात और ग्रीन ट्रांजिशन की बात तो कर दें, लेकिन साथ में अभी सुरक्षा और डिफेंस एंड सिक्योरिटी वाला जो मामला है ये भी एक बहुत अहम मुद्दा उभरता हुआ आ रहा है। और ये जब हम देखते हैं कि जब साइप्रस के राष्ट्रपति भी यहाँ पे हैं, तो एक हमने पूरा रोड मैप पूरा डिफेंस कोऑपरेशन का वो साइप्रस और भारत के बीच में 5 साल के लिए वो भी एक पूरा तैयार किया है। और आतंकवाद के प्रति तो दोनों देशों की पहले से ही एक जैसी सोच रही है, और क्योंकि वो भी उससे जूझते रहे हैं पहले, तो इसलिए जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म है उसका भी मुझे लगता है कि द्विपक्षीय संबंधों के प्रति भी और भारत के जो संबंध यूरोपीय संघ के उसके अंदर भी इन दोनों के आने से काफी मजबूती मिलेगी।
1: जी
0: तो ओवरऑल संबंध है वो पूरा यूरोप के साथ हमारा संबंध है। जब वो 2004 में जब यूरोपीय संघ को साइप्रस ने ज्वाइन किया था,
1: जी
0: तो वो एज ए डिवाइडेड साइप्रस वहां पे उन्होंने ज्वाइन किया था, उसके बाद फिर वो जो है यूरो जोन का भी हिस्सा बन गए हैं। तो जो यूरोपीय संघ की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर भी काफी अच्छी भूमिका वो निभा रहे हैं, क्योंकि अब भारत को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो उनकी चिंताएं भारत समझता है कि हमारी चिंताएं हैं, और क्योंकि तो उनकी जो स्ट्रेटेजिक पोजिशन है उसका फायदा भारत भी लेना
1: जी
0: चाहता है, इसलिए प्रधानमंत्री ने सुरक्षा और कनेक्टिविटी और ये सब बातें को
1: जी
0: आगे बढ़ाने के लिए इसको पूरी रणनीतिक साझेदारी हमारी उनके साथ बन रही है।
1: एक आखिरी सवाल आपसे प्रोफेसर सचदेव है, भारतीय बिजनेसेस हैं जो यूरोप तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं, उसके लिए तो ऑफकोर्स हम बात कर रहे हैं कि साइप्रस एक लॉन्च पैड के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा, बट इसके अलावा अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण एक वाइडर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन खाड़ी और उत्तरी अफ्रीका के बाजारों के लिए एक आधार के रूप में और लॉजिस्टिक हब के रूप में साइप्रस कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है भारतीय बिजनेसेस के लिए?
0: नहीं, भारत के बिजनेस देखिए ऑलरेडी वहां पे काफी हमारा जैसे निवेश वहां से आ रहा है, काफी भारतीय वहां पे बसे भी हुए हैं, और अभी जैसे प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में ये भी कहा था कि हम जो मोबिलिटी और माइग्रेशन के
1: जी
0: एग्रीमेंट है और सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के बारे में भी बात काफी आगे बढ़ चुकी है, तो उसके बारे में भी कुछ समझौते जल्दी होने की उम्मीद है। उसका मतलब ये है कि दोनों सरकारें ये कोशिश करेंगी कि जो भारतीय वहां जाते हैं, वहां काम करते हैं, उनके लिए भी काफी सुविधा हो जाए कि वो आराम से वहां पे जा पाएं और अपने व्यापार को वहां पे स्थापित कर पाएं और दोनों देशों के बीच में संबंध वो बढ़ाएं। और इसीलिए क्योंकि पूरे जो जैसे आपने कहा कि जो उनकी भौगोलिक जो स्थिति है, वो हालांकि हर देश जैसे यूरोप में भी होता है अपने आप को कहता है कि हमारी भौगोलिक स्थिति अच्छी है, तो आप उसको एज ए गेटवे आप यूरोप के मान सकते हैं। चाहे आप इटली में गए थे तो इटली के प्रधानमंत्री वो कहती थी कि आप यहाँ से इंडियन ओशियन एंड मेडिटेरेनियन जो सी है दोनों का मिलाप
1: जी
0: होता है, तो इंडो मेडिटेरेनियन जो बनता है। इसी तरीके से दूसरे देश भी कहते हैं, फ्रांस की
1: जी
0: भी, सब देशों की अपनी अपनी स्थिति है, लेकिन इसकी एक क्योंकि खास भूमिका है यूरोप के अंदर, और जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन इस वक्त इस पूरे इलाके में है, उसके अंदर मुझे लगता है भारत के लिए उसकी जो स्थिति है उसके साथ अच्छे संबंध बनाना, अच्छे संबंध हमारे हैं उनके साथ, लेकिन उन संबंधों को और आगे इंस्टीट्यूशनलाइज करना और उनको प्रगाढ़ बना के उसको आगे बढ़े, तो उसमें दोनों देशों के लोगों का फायदा होगा, हमारे लिए सुरक्षा की दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से
1: जी
0: भी, और वैसे भी यूरोपीय संघ के अंदर उनके साथ मिलकर काम करने के लिए अच्छा मुझे लगता है मौका मिलेगा।
1: प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, आप आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और अपने विचार साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
1: श्रोताओं, आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 हो चुके हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
3: भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी।
4: समाचार विस्तार से
5: भारत और साइप्रस के बीच आतंकवाद रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
6: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में
7: श्री मोदी ने कहा
6: और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
7: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
8: Discussions focused on enhancing cooperation.
9: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
8: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
7: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
10: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
7: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड्स ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 100,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्रिशा शर्मा के संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्रिशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्रिशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्रिशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और

0: टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उनपे का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इम्पोर्टेंटली बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए, तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
0: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और कुबरुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरका फोर्स तश्कील देने से इत्तेफाक किया है। दोनों

0: 19वां रोजगार मेला मुल्क भर में 47 मुकामात पर मुनक्किद होगा। 9 तकर्रुरशुदा उम्मीदवार जिन्हें मुल्क भर से मुंतखब किया गया है मुख्तलिफ वजारतों और महकमों को ज्वाइन करेंगे, जिनमें रेलवे, दाखिली उमूर, सेहत और खानदानी बहबूद और आला तालीम के महकमे के अलावा दीगर कई दूसरे महकमे शामिल होंगे। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी और बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बना देगी जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। जनाब शाह नई दिल्ली में आज सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ के इन्वेस्टिचर तकरीब और रुस्तमजी मेमोरियल लेक्चर से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने बताया कि स्मार्ट बॉर्डर तसव्वुर के तहत तमाम नौईयत की टेक्नोलॉजियों को मरबूत करके अगले बरस तक सरहदों की सिक्योरिटी का एक ऐसा ग्रिड तामीर करने की जानिब काम जारी है जिस पर हमला करके कामयाबी हासिल कर पाना नामुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि वजारत जल्द ही स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट मुतारिफ कराएगी जो ड्रोन्स, रेडार्स, जदीद तरीन कैमरों और दीगर नई टेक्नोलॉजियों से लैस होगा। वजीर दाखिला ने बताया कि जैसे ही इस स्कीम का आगाज होगा सरहदी हिफाजती फोर्स का काम खातिर खा हद तक आसान और मजबूत हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को साइबर खतरात, हाइब्रिड नौईयत के जंगी सामान और ड्रोन से मुतालिक चैलेंजों से निमटने के लिए नई हिकमत अमली को अपनाना लाजमी है।
2: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद्य बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: वजीर दाखिला ने कहा कि नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत का यह अज्म है कि वो न सिर्फ दरअंदाजी को रोके बल्कि दरअंदाजी करने वाले फर्द वाहिद की भी शनाख्त करे और उसे निकाल बाहर करे और आबादी में गैर फितरी तब्दीली किसी हाल में भी मुमकिन न होने दे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा के चांदीपुर में आज मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक की कामयाबी के साथ आजमाइश की गई। वजारत दिफा ने बताया कि ये आजमाइश तमाम कार्रवाई जाती और तकनीकी पैमानों पर खरी उतरी। ये आजमाइश स्ट्रेटेजिक फोर्स कमान के तहत की गई। ये कामयाब आजमाइश की अलामत है और मुल्क की कम अज कम भरोसेमंद दिफाई सलाहियत पर एतमाद को मजीद तकवीत देती है। अग्नि एक मुख्तसर दूरी का सतह से सतह पर वार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जो भारत के कलीदी मिसाइल प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मुल्क में ही तैयार किया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में बच्चों के टीकाकारी प्रोग्राम को फरोग देने के लिए काबुल को बीसीजी, टेटनिस और डिफ्थेरिया वैक्सीन से मुतालिक 20 टन अहम साजो सामान फराहम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने कहा कि इस साजो सामान की मजीद खेप भेजी जाएगी। नई दिल्ली ने सेहत के शोबे में अफगानिस्तान के अवाम की मदद करने के अपने अज्म का इरादा किया है। भारत की कौमी शाहराओं से मुतालिक अथॉरिटी एनएचएआई ने टनल इंजीनियरिंग, स्लोप स्टेबिलिटी और सलाहियत साजी में जदीद कंसल्टेंसी मदद के लिए नॉर्वे के नॉर्वेजियन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट एनजीआई के साथ मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराओं की वजारत ने अपने बयान में बताया कि ये इश्तराक भारत की कौमी शाहराओं के आलमी पैमानों के मुताबिक रख रखाव और फरोग के तई एनएचएआई के अहद की अक्कासी करता है जहां जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और कुदरती आफात के जोखिम से निमटने की एनजीएआई की बैन अवी सतह पर तस्लीम शुदा महारत को बरूए कार लाया जाएगा। मफाहमतनामे के तहत दोनों इदारे कुदरती आफात के खतरे को कम करने से मुतालिक तहकीक और तरक्की के इकदाम में एक दूसरे का तआवुन करेंगे। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग 26 मई को नई दिल्ली में होगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की दावत पर ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वजीर खारजा तोशिमित्सु मोटेगी और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि वज़राए खारजा गुज़श्ता साल 1 जुलाई को वाशिंगटन डीसी में हुए तबादला ख्याल की बुनियाद पर खुले और आजाद भारत बहरुल काहल के क्वाड विजन पर गौर खोज करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल नूरलान यर्मबिकाइफ के साथ मुलाकात की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने शंघाई ताउन तंजीम के इकदामात और सरगर्मियों के साथ साथ आलमी और इलाकाई मामलों पर भी बातचीत की। وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں برکس ینگ ڈپلومیٹک فورم اور سفارتی اداروں کے

सरबराहान के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने इस्तेहकाम, इख्तिरा, तावुन, पायदारी और आलमी पेशरफ्त में शराकतदारी के ब्रिक्स के मौजूदात पर अपने ख्यालात का तबादला किया। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में एक और अहम मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम का नाम मनीषा संजय हवलदार है और ये महाराष्ट्र के शहर पुणे के सेठ हीरालाल सराफ प्रशाला में काम कर रही है। सीबीआई ने बताया कि ये नीट यूजी 2026 इम्तिहानात के अमल में शामिल रही है और इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक एक्सपर्ट के तौर पर मुकर्रर किया था। जांच एजेंसी ने बताया कि मुलजिम को फिजिक्स के सवालनामे तक मुकम्मल रसाई हासिल थी। सीबीआई ने इत्तला दी है कि उन्होंने नीट यूजी 2026 इम्तिहान के फिजिक्स मजमून से मुतालिक कुछ सवालात साथी मुलजिम मनीषा मंधारे को शेयर किए थे, जिसे इस महीने की 16 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख में एक दिन की तौसी करते हुए इसे 24 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले जवाबी पर्चों की कॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख कल तक थी। हुकूमत ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते दर्जे हरारत की वजह से बिजली की खपत अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। बिजली की वजारत ने कहा कि कल दिन के वक्त बिजली की सबसे ज्यादा खपत 270.82 गीगावाट रही, जिसने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अहम वजारतों और सरकर्दा सनती एसोसिएशनों के अहलकारों के साथ आज एक मीटिंग की सदारत की, जिसका मकसद मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने की गरज से हिकमत अमली तय करना था। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में जनाब गोयल ने बताया कि हुकूमत सनत के साथ गहरे रवाबित के साथ काम करने के तई पुरज्म है। भारत के दो कोहे पैमा अरुण कुमार तिवारी और संदीप माउंट एवरेस्ट पहाड़ की चढ़ाई से उतरते वक्त अपनी जान गंवा बैठे। नेपाल के सयाहत के महकमे के हकाम ने बताया कि ये दोनों दुनिया की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी सर करने के बाद नीचे उतर रहे थे। बताया जाता है कि अरुण और संदीप चोटी से नीचे आते वक्त बहुत थक चुके थे और गाइड की हर मुमकिन कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। मणिपुर में आसाम राइफल्स ने कल और आज बिरादरियों तक रिसाई की सिलसिलेवार आउटरीच पहल का इनेकाद किया। इन सरगर्मियों का मकसद नौजवानों को तालीम को अपनाने, करियर के इंतखाब से मुतालिक पूरी वाकफियत हासिल करने और सभी शुरका को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने की तहरीक देना था। हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक्वामी स्टेडियम में जारी आईपीएल क्रिकेट मैच में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए 256 रन का निशाना दिया है। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और कुब्रुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरका फोर्स तश्कील देने से इत्तफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक्तिसादी तआवुन को फरोग देने की गरज से कई माहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बना दिया जाए जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन साजो सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच जारी है। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने 256 रन का निशाना दिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: was discussed and how is energy security being addressed at the political and diplomatic front?
1: On the political and diplomatic front, India is addressing energy-related matters in a very, very active manner. India is very proactive in this regard. Our Prime Minister has pushed for alternative fuels and energy self-reliance, which would be a critical strategy to shield economies like India's from geopolitical vulnerabilities like the Middle East conflicts and choke point disruptions. So by reducing massive import bills, this approach builds macroeconomic resilience, curbs carbon emissions, and ensures sustainable long-term national security in an increasingly volatile global energy landscape.
0: Speaking about alternative fuel and energy supplies, a coal gasification scheme has been announced to the tune of 37,000 crore rupees. It is a step in the right direction. How is this actually going to benefit consumers in the country? Because they would be the hardest hit by what's happening with the West Asia crisis.
1: Government's 37,500 crore surface coal gasification scheme is a game changer for India's self-reliance because it would drive the shift of domestic coal into high-value synthetic gas and chemical products. This shift aggressively curbs India's heavy reliance on imports for vital commodities like LNG, urea, ammonia, and methanol, while unlocking the value of vast domestic reserves. This initiative is fundamentally significant to India's energy security and the Atmanirbhar Bharat goals through several concrete pathways eradicating import dependencies. India currently imports over 50% of its LNG and 20% of its urea, as also 100% of its ammonia, 80-90% of its methanol. So by converting domestic coal into syngas, this scheme targets India's massive national gasification goals and directly replaces these foreign sourced critical chemicals and fuels.
0: Let's now hear what Union Minister Ashwini Vaishnav had to say on coal gasification.
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने. भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है. करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है. तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था. उसका फैसला लिया गया है और बहुत ही सामयिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है. कोल गैसिफिकेशन की स्कीम, उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं. तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है.
0: There is also an appeal by Prime Minister on taking measures as we took during the COVID-19 pandemic.
3: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है. आप देख रहे हैं इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं. वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है. युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है. देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा. हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी हो. जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा.
0: Prabhu Dayal ji, why are we on a war footing right now?
1: Our Prime Minister urged citizens to restrain their consumption of petrol, diesel and gas. And this serves as a clear indicator of a high-stakes economic emergency triggered by external geopolitical shocks. So the Prime Minister's appeal to treat fuel conservation as a national duty

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे यादों से भरा खास प्रोग्राम सुनहरी यादें।

प्रोग्राम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। चलिए दोस्तों, यादों के सफर में आज हम आपको लिए चलते हैं जहां चंद खूबसूरत गाने आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आज की इस ढलती हुई रात को करते हैं सुनहरी यादों के नाम। आगाज कर रहे हैं आनंद बख्शी के बोल से, तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फिल्म है आप आए बहार आई।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म थी आप आए बहार आई। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसे रचा है मजरू सुल्तानपुरी ने, आवाज लता मंगेशकर की, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म है पत्थर के सनम।

इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी रांची और हम बोल रहे हैं मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें अपनी दोस्त रौनक जहां के साथ।

मन की आंखें। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। गीत था साहिल लुधियानवी का और इस गीत को गाया था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। आइए बढ़ते हैं अगले नगमे की तरफ। गुलशन बाबरा के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन, गायक कलाकार मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित। फिल्म है फांसी।

गौहर कानपुरी का नगमा रचा हुआ अभी आप सुन रहे थे, जिसकी तर्ज बनाई थी उषा खन्ना ने। फिल्म थी दादा और इस गीत में आवाज थी येसुदास की। और अब सुनिए आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में, गीत हसरत जयपुरी का, संगीत शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम आरजू।

आरजू फिल्म किसी गीत के साथ ही श्रोताओं, प्रोग्राम सुनहरी यादें अब खत्म होता है। अगली मुलाकात तक के लिए अपनी दोस्त रौनक जहां को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज के कलाकार हैं सविता रॉय। इनसे आज आप सुनेंगे राग नंद में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है, द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। संगत करने वाले कलाकार हैं, हारमोनियम पर हैं गायत्री चक्रवर्ती और तबले पर हैं श्यामानंद झा। तो आइए सुने शास्त्रीय संगीत।

अभी आप सुन रहे थे राग नंद में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध थी, द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध थी। कलाकार थी सविता रॉय। संगत करने वाले कलाकार थे, हारमोनियम पर थी गायत्री चक्रवर्ती और तबले पर थे श्यामानंद झा। इसी के साथ ही आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। रात के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंक विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स

और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कल सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।